कृष्णानं चौकिया चंडे गुंगे जुगो जुग अटल परम का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी सिखा दा मन नीमा मत उच्चे मत पत दा रखे आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दातार जिया श्री ननकाना साहेबान अते होर गुरुद्वारे गुर धामा दे जनातों पंथ नो भी छोड़िया गया है खुले दर्शन।

साहिब जी महाराज आप जी दे हाजूर शब्द चौंके आनंद साहिब जी की अरदास पुल चुप माफ करनी सच्चे पातशाह जी जना जना गुरमुखा प्रेमिया वालों कड़ाहा प्रसाद भेटा किया गया है तिना दी अरदास समूह संगत पहलिया दी अरदास सतगुरु जिया सरबत साध संगत अपने दरों करों सिखे सिदक पुरुषां नाम दान बख्शना शुभ भावनावां पूरिया करनिया आप जी दे हाजूर कड़ाहा प्रसाद दी देग हाजर है दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरतौण दी आग्या बख्शां सुख होवे नाम चेते आवे सिखां पढ़दे सुणदे सरबत लाहे बंद होवन नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत दा

आकाशवाणी की सिंधी सर्विस आए 9870 किलोहर्ट्ज से तय खासा आए आकाशवाणी की सिंधी सर्विस न्यूज ऑन एयर ऐप एंड डीटीएच ते पर ॿुधी सघंदा आहियो। असांजो प्रोग्राम जो आगाज़ थी चुको आहे तफ़सील कुझु मित्रनि थोरी देर में अवां भगत कलाम जन जो मिठो आवाज़ ॿुधंदा तंहिंखां पोइ अवां रीटा शाणी खां हिकु नंढी तकरीर उनवान आहे जेकी ॾिठो मूं ॾिठो ऐं पोइ कुझु फिल्मी नगमा पेश कंदा। इहा अथई प्रोग्राम जी विचूर। हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे। हीअ रचो त भगत कलाम जन जो मिठड़ो आवाज़ ॿुधूं।

0: सर्व भगत काराम जनजो सदाबार आवास उद्रे हा हे आकाशवाणी जी सिंधी सरसाय हेर पेश आहे नोरी तकरीर तकरीरकारा रीता शिवानी उन आहे जेकी डिठो मूं डिठो
1: मुंहिंजी इहा ख़ुशकिस्मती आहे जो मां प्रोफेसर मंघारा मलकानी जी भाइटी आहियां असीं भाउर भेनर नंढे हूंदे खां वठी पंहिंजे चाचे खे दादो मंघो करे छॾींदा हुआसीं पहिरीं डिसंबर 1980 में दादे जो मुंबई शहर में इंतकाल थियो हो उन खां टे हफ़्ता अॻु दादो मूं वटि पुणे में रहियल हो संदसि पुणे जे महीने जे क़याम में जेके ॻाल्हियूं थियूं हुयूं मां उन्हनि मां किन जो बयान हिते करियां

दादी जी उम्र उन वक्त 85 साल हुई। सनी अक्टूबर जी रात दादो मुझे सौट के मानू से गड डेकन क्वीन में लथो। गाड़ी कलाक लेट हुई ए थको टुटो पो हो। ये भी लगो जन तो संदस लिंग सुतजी व्या हुआ। मां हुन जो हथ पेंजे हथ में झले मोटर ताई वठी आयस। मेज ते डिनर खाण वक्त मु महसूस कयो तो दंदन न होण सबब दादा के खाण में चंगी तकलीफ थी रही हुई। भाजन जे टिक्के के चबाड़े खाई न थे सघियो। उन वक्त ही मु फैसलो करे वरतो त बे दिन खां मां कहड़ो खाधो रधाईंदस। रोटी खाण खां पोए ड्राइंग रूम में ओभारू लहवारियूं करण वेठासीं। कुमार मुझे पुट खा प्रोफेसरन ए संदन पढ़ाने के तरीकन के बारे में सवाल पुछण लगो ए पोए ओस्तो चई वेठो रीटा मुझो एकड़ो कम कजे। मुखे हिते जीना नामान जी पिक्चर जरूर देखारजे। मु हुन जे बारे में अखबारन ए रिसालन में काफी कुछ पढ़ियो आहे पर हुन के स्क्रीन ते दिसण जो अञा वच कोन मिलियो अथम। मु इहो चाचो त दादे की ज़ीनत अमान जी फिल्मी तोड़े जाती जिंदगी जी काफी मालूमात हुई ए उन मामले में हु बिल्कुल अप टू डेट हो। बेडी सुबह जो मुझो हथ जले बाग जो मुआइनो करण हलो। किथे किथे किन बूटन ए गुलन जा नाला पे बुधाई। उन वक्त इहो भी बुधायाई त हु कंहिं वक्त पुणे जे एग्रीकल्चरल कॉलेज में शागिर्द हो। दादा जिस्म में झूठ थी चुको हो। शायद दंदन जे अदम मौजूदगी जे करे गिज़ा घट वञण सबब या शायद वडी उम्र सबब शरीर तमाम ज़ईफ थी चुको होस। हलण महल बदन लरज़ंदो होस तब तकड़ो तकड़ो हलंदो हो। संदस बेडरूम में ग्राउंड फ्लोर ए फर्स्ट फ्लोर जे विच में हो जिते पहुचण लाइ 12 ॾाका चढ़ना पवंदा आहिनि पर टिप टिप ते टप टप करे हलियो वेंदो हो। हलंदे हलंदे थाबा खाईंदो हो। हिकु कदम हली अधु कदम पुठियां वेंदो हो पर मां पुठियां जे मदद करण लाइ हथ वधाईंदी हुअसि त इनकार कंदो हो। रोज शेव करण जी अहिड़ी आदत हूंदी हुअसि जो जेसि ताईं ॾाढ़ी न लाहींदो हो पियो मुंझंदो हो। हर का शइ पंहिंजी सही जॻहि ते रखण जी आदत अहिड़ी त पुख़्ती हुअसि जो कॾहिं का बि चीज़ हिते हुते नज़र कान ईंदी हुई। संदस ब्लेड ए रेज़र उघण जे अंदाज़ खे ॾिसी मां त वाइड़ी थी वेंदी हुअसि। पियो उघंदो हो सुकाईंदो हो ऐं पॉलिश कंदो हो। संदस मुखड़े जी मिठड़ी मुर्क ऐं ॻाल्हाईंदे ॻाल्हाईंदे खिलण जो अंदाज़ असुल विसरेमी नथो। हिकु ॾींहुं बितेरे जो 2 बजे मूं वटि आई। मूं वटि कुर्बानी पिक्चर जी वीडियो कैसेट आई आहे। शाम जो वापसि करणी आहे। दादा खे ज़ीनत ॾेखारी अथई न त वठी हलीस। ज़ीनत जो नालो ॿुधी दादा त वठी टिपो ॾिनो वरना उहो त सन सुम्हण जो वक़्तु हो। पर अॼु ॻाल्हि निराली हुई। ॾाढे ध्यान ऐं शौक़ विचां पिक्चर ॾिठाई पर पोइ शिकायत कयई स्क्रीन ॾाढो नंढो आहे। पूरी तरह सां मां ज़ीनत खे ॾिसी कोन सघियुसि। पहिरीं राति जे हिकु वेले खाराइण खां पोइ मां सम्झी वई हुअसि त दादा खे कहिड़े नमूने जो खाधो ॾियणु घुर्जे। सुबुह जो नेरनि ते पॉरिज या कॉर्नफ्लेक्स खीर सां। ॿियूं शयूं जेके मां खेसि ॾींदी हुअसि से हुयूं नरम बेदो, कना निकतल डबल रोटीअ जा स्लाइसिस, कोणी खिचड़ी, ॾुध, सूप, दाल, भाॼियुनि जी रस ऐं केलो। ॾुध ऐं केलो ॿिन्ही वेलनि ते ख़ुशीअ सां खाईंदो हो। उहे ॿई शयूं मिलियसि त ॼण त अलाह मिलियुसि। हिकड़ी सुबुह जो दादा खे सचे गिह जी लोली ऐं माखी ॾिना। ॾिसी ख़ुशीअ में भरिजी चई अरे कोकी ऐं माखी मूंखे त ॾाढी वणंदी आहे। उन खां पोइ हर रोज़ नेरनि ते कोकी ठहंदी हुई। हिकड़े ॾींहुं खीर थी ठाराए ॾिसी खिलंदे चई तूं त मूंखे खारे छॾींदीअ। दादा जशन वासवाणीअ सां गॾजण जी मर्ज़ी ज़ाहिर कई। फैसलो इहो बीठो त 8:30 बजे शाम जो जीअं दादा जशन सत्संग मां उथंदो त असीं ॿाहिरि गॾबासीं। दादा जशन दादे मंखे खे ॾाढे प्यार ऐं कुर्ब सां गॾियो ऐं चयई तव्हां अचण जी तकलीफ़ छो कई
मुख्य न्यापो मोकलो हा त मां अहां

पहुची वञा हा। ॿिन्ही वॾा वॾा भाकुर पाता ऐं हिक ॿिए खे पेरे पिया। दादा जशन जॾहिं ॿुधायसि त पाण दादा जो शागिर्द रही चुको हो, खेस झूनी यादगिरियूं ॾियाराए ॿुधायो त फलाणो अंग्रेज़ी किताब तव्हां मूंखे कराचीअ में पाढ़ियो हो, त दादा न रुगो गदगद थियो पर अजब विचां अखियूं फाटी वियसि ऐं चवण लॻो, मार मुंहिंजो गुरु, मुंहिंजो शागिर्द। दादा जशन असांखे वॾे दादा साधू टीएल वासवाणी जे समाधीअ ते वठी हलियो। ॿाहिरि निकितासीं खे त दादा जशन पट ते वेही दादा जे जुतीअ जा धागा ॿधण जी कोशिश कई। दादा बेहद शर्मसार थियण लॻो ऐं हथ जोड़े दादा जशन खे वेनती करण लॻो, महिरबानी करे ईअं न करियो, न त मां हितां भॼी वेंदो साव। दादा जशन न रुगो असांखे मोटर ताईं उमाणण आयो पर पंहिंजे शिष्यनि सां गॾु मोटर जे पुठियां गेट ताईं पंध बि आयो। दादा हथ जोड़े अलविदा कई। उन गॾिजाणीअ खां दादा अहिड़ो त मुतासिर थियो जो घर पहुचण खां पोइ अधु कलाक कुर्सीअ ते चुपचाप अचंभे में वेठो रहियो। ॼण त सुन लॻी वई हुअसि। रखी रखी मूंखे भुड़कंदो ॾिठो, एॾो हलीम, एॾो निहठो, मुंहिंजे जुते जा थे धागा बनाई। दादा जशन में कात मणिया आहे, जंहिंसां मुंहिंजो मुखा मेलो अॼु थियो आहे, मूं हुनखे चवंदो ॿुधो। दादा जी इहा हिकु आदत हूंदी हुई त जॾहिं बि ताजुब थींदो होसि या का ॻाल्हि सम्झ में न ईंदी हुअसि त पंहिंजो साॼो हथु मथे खणी पंज आङड़ियूं फैलाए हथ सां सुवाल पुछंदो हो। साॻी रीत उन राति बि सुवाल करे रहियो हो। महाबलेश्वर वठी वञण लाइ मूं ड्राइवर जो बंदोबस्तु कयो। जंहिं सूरत दादा जहिड़े पीर मर्द खे पाण सां वठी वञी रही हुअसि, सोचियुमि त छो न पंहिंजे सस खे बि, जंहिंखे पिण महाबलेश्वर सां ख़ासि दिलि हुई, पाण सां वठी वञा। असां चाहियूं थिए त सुबुह जो सवेल ई मूं ऊंधाई निकिरी वञू। मूंखे ॾिसी वाको करे चयई, रीटा सुबुह जो सवेल ई निकिरी हलंदासीं, महाबलेश्वर में जेकी थींदो उनखे ॾिसी वठिबो। ऐं दादा ॿारनि वांगुरु खिले ॾिनो। दादा जी अहिड़ी सादगीअ ते मूंखे बि खिल अची वई। ॿिन्ही सुबुह जो अंधेरे में निकिरी पियासीं। कुमार त ड्राइवर सां वञी अॻी सीट वालारी, पाण सां पंहिंजा वॾेरा खयां हुअमि, ससु ऐं चाचो, सो मूंखे पुठी सीट ते ॿिन्ही जे विच में सैंडविच थियणो पियो। महाबलेश्वर जे गवर्नमेंट हाउस जे वीआईपी सूट्स में असीं वञी लथासीं। सारो ॾींहुं घुमियासीं, घटियासीं महाबलेश्वर जे पहाड़ी नज़ारनि सां दादा पंहिंजा नेण ठारिया। दादा उत्साह में भरिजी जोश भरे लहिजे में वॾे वाके सां चवण लॻो, मां कंहिं बि शख़्स सां शर्त ॿधण लाइ तयारु आहियां त केस पॉइंट महाबलेश्वर जी बहितरीन पॉइंट आहे, मां चैलेंज थो करियां। पर उते चैलेंज क़बूल करण वारो, शर्त ॿधण वारो या बहस करण वारो को हो ई कोन। ऐं दादा जी मथे हवा में उछलियल मुक हेठ अची वई। सुबुह जो नेरनि लाइ मेज़ ते वेठा हुआसीं ऐं मूं वेठे वेठे ॿ सिठूं लिखी वरितियूं ऐं दादे खे ॾेखारियूं। लाचारीअ खां तूं भॻवान बचाइजे, मोहताजीअ खां अॻु जग मां उथारजे, बसि आग बबूला थी वियो। जे मूंखे ॾिसी थी कविता लिखी, केरु थो चवे त मां लाचार आहियां। मौत जी ॻाल्हि उन सां कबी आहे जो मरण वारो हूंदो आहे, मां मरण वारो थोरी आहियां। शाह साहब जी आयत, जीअणा अॻे जे जिया, जुग जुग शाल जीअन, उहो मोटे कीन वरन, मरना अॻे जे हुआ। यादि करे चुप थी वियसि ऐं वरी मौत ऐं ॿुढापे जी ॻाल्हि भुलजी बि ज़बान ते कान आंदमि। चंद घंटनि में फोन ज़रिए टीहनि जोड़नि खे दावत ॾेई घुरायमि। ड्राइंग रूम ऐं डाइनिंग रूम में महिमान वेहिजी विया। गुलोसी राणी संगीत जी चङी मौज मचाई ऐं दादा जीअं त पछाड़ी जे ॾींहनि में ॿुधण जी ताक़त विञाए वेठो हो, राग न ॿुधंदे तारियूं वॼायूं। उहो हिकु ड्यूट गानो हो जेको सुशी आहूजा गुलोसी राणीअ सां गॾु ॻायो हो। सोनी सलोनी मुंहिंजी जान, तूं थी अची या मां अचां, सभु खिली खिली ऊंधा थींदा पिया विया। ऐं दादा राग पूरे थियण खां पोइ पंहिंजी तकरीर में चयो, मूं अल्फाज़ त कोन ॿुधा पर ॿिन्ही कलाकारनि जे ॻाइण जे अंदाज़ मां इहो अंदाज़ो लॻाए सघियुसि त राग रोमेंटिक हो। कहिड़ी न ख़ुशीअ जी ॻाल्हि आहे जो अॼु मां पंहिंजे मौसीक़ी उस्ताद चंदी राम जे पुट खे ॻाईंदो ॾिसी रहियो आहियां। 8 नवंबर दादा जे रुख़्सत जो ॾींहुं हो। 17 तारीख़ ॾियारी हुई। मुंहिंजो सौटु सुंदरू बॉम्बे मां अची चुको हो खेस वठी अचण लाइ।

0: जे आराम कुर्सी ते वेठो आहे। आनंद विचां पंहिंजो मथो कुर्सी जे पुठिते टेके नीम खुलियल अखरियुनि सां ॾींहनि जे झिरमिर ॾांहुं वेठो निहारे। मुंहिंजे मन में हिक खिन लाइ हिकु वीचार उथे थो। जीअं जीअं दन जा मेला हिन बेबका ज़िंदगीअ में अहिड़ो मौको वरी नसीब थिए या न थिए, ॾियारीअ जो अहिड़ो मेला थिए न थिए। वरी रस्ते खे अलविदा कंदे चवण लॻो, बाय बाय बोट क्लब, बाय बाय। अखियुनि में उहा ई शरारत, चपनि ते उहा ई मुर्क। केर थे उन वक़्तु चई सघियो त उहा बाय बाय सच पच सिर्फ़ 22 ॾींहनि अंदर हमेशह लाइ बाय बाय थी वेंदी।
1: रीटा शाणी खां हिकु नंढी तकरीर ॿुधी रहिया हुआ। हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। श्री मोदी ने कल सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी ने आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी और केंद्र और राज्य के बीच मजबूत समन्वय पर बल दिया। बैठक में नौ राज्यों से जुड़ी रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा बेहद जरूरी है। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। गृहमंत्री ने कहा कि अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून देश में पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। भारतीय नौसेना 31 अगस्त की मुंबई की नौसेना डॉकयार्ड में नेपस्टार श्रेणी के दूसरे गोताखोर सहायता पोत निपुण को नौसेना में शामिल करेगी। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ये पोत भारत की रक्षा जहाज निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों को लेकर संसदीय समिति ने मसौदा रिपोर्ट को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। समिति ने एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने समेत एजेंसी में सुधार और उसे मजबूत बनाने से जुड़ी सिफारिशों पर सहमति व्यक्त की। कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक की अध्यक्षता वाली समिति की ये 6ठी बैठक थी। इसमें 382वीं रिपोर्ट के मसौदे पर चर्चा के बाद उसे मंजूरी दी गई। दिल्ली सरकार आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत 4000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रूपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर सशक्त बनाना है। इस बीच दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि राजधानी में प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। सरकार ने कहा है कि कीमतें बढ़ने पर नेफेड से प्याज और चीनी खरीदकर लोगों को उचित दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय इस बात पर विचार करने के लिए सहमत हो गया है कि वह केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ गठित करेगा। केंद्र सरकार ने इस याचिका में सिविल सेवा परीक्षा 2025 के अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के क्रीमी लेयर से जुड़े उम्मीदवारों पर न्यायालय के 11 मार्च के फैसले पर स्पष्टीकरण मांगा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 25 अगस्त से 2 सितंबर तक कनाडा और अमरीका की 9 दिन की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करना है। भारत और चीन ने सीमा मुद्दे के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। साथ ही सीमा क्षेत्रों में शांति और

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीतिका, जिसमें आपने सुना इंद्रेश मिश्रा द्वारा भजन। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सब सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग और मैं हूं आपकी दोस्त आरती कौर। उम्मीद है आपकी सुबह बेहद खूबसूरत और ताजी चाय की चुस्की जैसी कड़क होगी। सूरज देखिए निकल चुका है और परिंदे भी चहकना शुरू कर चुके हैं और आपका अपना इंद्रप्रस्थ चैनल आपके साथ जुड़ चुका है आपके दिन को शानदार बनाने के लिए। और ये खूबसूरत सा गीत जो आप सुन रहे हैं, इसके बाद आपके बॉडी में एक अलग तरीके की तरंग, एक अलग तरीके की एनर्जी जरूर आ गई होगी।

दोस्तों, ये गीत आपने सुना फिल्म जब तक है जान से, और कार्यक्रम है गीतों भरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपकी दोस्त आरती कौर, और हर खूबसूरत सुबह में कुछ न कुछ नया ऐसा होता है जो आपके लिए कुछ सीखने लायक जरूर लाता है। हर सुबह अपने साथ जो लाती है वो होता है मौका, एक नया मौका कुछ नया सीखने का, पुरानी गलतियों को भूल कर आगे बढ़ने का। और ये मौका गंवाना बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि अगर आपने ये मौका गवा दिया तो फिर आप फिर से सेम गलती करेंगे, फिर से कुछ और ऐसा करेंगे जिससे आपकी जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी। तो हर मौके को आप अपनाना सीखे, और हर मौके में कुछ ना कुछ छिपा होता है आपके सीखने के लिए, आपके अनुभव के लिए, और आपकी लाइफ में कुछ बदलने के लिए।

जी हाँ, थोड़ी सी हंसी, थोड़ा सा गम, और इन्हीं से मिलकर बन जाती है हमारी जिंदगी। फिलहाल हमेशा की तरह आपको पता है ना कि मैं आपके लिए सिर्फ एक मौका ही नहीं लेकर आती, बल्कि मैं आपके लिए लेकर आती हूँ एक खूबसूरत सी छोटी सी ऐसी कहानी जिससे आपको अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखने के लिए, इंस्पायर होने के लिए मिल सकता है। तो आज की भी जो एक कहानी है ना, वो किसी के एक्सपीरियंस पर बनी है। मेरा एक फ्रेंड ने ये कहानी मुझे सुनाई थी कि एक बार जब वो कहीं जा रहा था तो उसने रास्ते में एक छोटी सी घटना देखी जो वो सबके साथ शेयर करना चाहता था, लेकिन वो शेयर करने के लिए उसे माध्यम नहीं मिल रहा था। तो मैंने कहा चलो माध्यम मैं बन जाती हूँ। उसने बताया कि एक बुजुर्ग अंकल सड़क किनारे एक छोटे से पौधे को पानी दे रहे थे। तो उसने गाड़ी रोकी और उसने पूछा कि अंकल, आप रोज इस पौधे का इतना ख्याल रखते हैं क्यों? इस पेड़ की ठंडी छाँव में बैठने के लिए शायद आप खुद ना हो। तो अंकल मुस्कुराए और बोले, बेटा जब मैं छोटा था तो जिन पेड़ों की छाँव में बैठकर मैंने खेल कूद किया, वो पेड़ मेरे दादाजी ने लगाए थे। आज अगर मैं ये पौधे लगा रहा हूँ तो इसलिए नहीं कि ये मुझे छाँव देंगे, बल्कि इसलिए कि आने वाली पीढ़ी को एक ठंडी छाँव मिल सके। जी हाँ, कई बार हम यही तो करते हैं। हम अपने बारे में इतने स्वार्थी हो जाते हैं, इतना सोचने लगते हैं कि हमें अपने लिए करना है, अपने लिए करना है, ये बचाना है, वो रखना है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमारे जाने के बाद भी तो दुनिया रहेगी, तो क्या हमें उसके लिए कुछ करके नहीं जाना चाहिए? जरूरी तो नहीं कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो, बहुत सारी दौलत शौहरत हो, आप वही उसी से दुनिया का भला कर सके। आपकी एक प्यारी सी मुस्कान, आपकी एक मीठी सी बात और आपके ये छोटे छोटे काम भी किसी के काम आ सकते हैं। तो भाई, मुझे तो उन बुजुर्ग अंकल की कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला है। क्या आपको भी सीखने को मिला है? आप मुझे जरूर बताइएगा। लेकिन फिलहाल इस खूबसूरत से गीत को चलिए सुनते हैं और सुनकर ये पता लगाते हैं कि कितनी खुशी हमारे अंदर अभी और बची है, जिसे हमें मुस्कुराना सीखना है और जिसके साथ हमें जीना है।

संगीत की अपनी कोई जुबान नहीं होती, संगीत जब आपके दिल में बजने लगता है ना, तो फिर अपने आप में उसमें दुनिया समा जाती है। आप अपना हर मौका देख लीजिए, आप खुशी में होते हैं तो आपको खुशी के नगमे सुनने का मन करता है, आप दुख में होते हैं तो आपके अंदर एक दुख की धुन चल रही होती है। आप अगर ऐसे ही यूं ही बस अपने वक्त को अपने साथ गुजारना चाहते हैं, अपनी तन्हाई को जीना चाहते हैं, तो उस वक्त भी संगीत आपका साथी बन जाता है। रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, जब भी हो, संगीत आपके साथ होता है। और संगीत सच में, इसके अंदर पूरी दुनिया जुड़ी है, हमारे सारे इमोशंस जुड़े हुए हैं, और संगीत अपने आप में जीवन की एक ऐसी रिदम है, एक ऐसी धुन है जो हर वक्त हमारी हर एक सांस के साथ बजती रहती है। आप अपने दिल की धड़कन सुनिए, उसमें भी एक संगीत बज रहा है। और सच में संगीत से हम सब ऐसे जुड़े हैं जैसे बिना संगीत के हमारा जीवन कुछ है ही नहीं।

दोस्तों, हम हमेशा सच्ची खुशी की तलाश में रहते हैं और सच्ची खुशी ना तो पैसों में होती है और ना ही साजो सामान में, बल्कि सच्ची खुशी छिपी होती है छोटी छोटी सी खुशियों के अंदर, छोटे छोटे से पलों के अंदर। जी हाँ, आपकी छोटी छोटी उपलब्धियां होती हैं या छोटी छोटी अचीवमेंट्स होती हैं, वो आपको खुशी देती हैं। कभी कभी एक खूबसूरत सा खिला हुआ सा फूल भी देखकर आपका दिल बिल्कुल गार्डन गार्डन हो जाता है। और कभी अपने दोस्तों के साथ बैठकर ढेर सारी बातें करना, चाय की चुस्की लेना, परिवार के साथ एंजॉय करना, या फिर कभी अपने अकेलेपन में एक प्यारी सी किताब लेना और अच्छा सा संगीत सुनना, ये भी आपको खुशी दे जाता है। और इन सब चीजों के लिए आपको किसी पैसे की जरूरत नहीं होती। और कभी कभी आप जब किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो उससे बड़ी तो कोई बात नहीं होती। वो सिर्फ खुशी आपके अंदर ही नहीं आती है, बल्कि वो खुशी बहुत सारे लोगों को भी आप बांट चुके होते हैं, आपको पता ही नहीं होता। आपकी एक छोटी सी मुस्कान किसी और के चेहरे पर मुस्कान ला देती है और किसी को अंदर तक खुशी दे जाती है, ये आपको कभी पता नहीं चलता। और इन सब चीजों के लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस आपके अंदर होनी चाहिए पॉजिटिविटी, आपके अंदर होनी चाहिए कुछ करने की चाह, और आपके अंदर होनी चाहिए दूसरों के साथ, इंसानियत के साथ रहने की तमीज। अगर आप ये चीजें अपने अंदर रख लेंगे तो फिर सच्ची खुशी आपसे दूर नहीं रहेगी, बल्कि आपके अंदर ही रहेगी और हमेशा आप उसे पा सकते हैं।

दोस्तों इसी गीत के साथ आपसे लेनी होगी विदाई, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि आप अपने अंदर की जो उम्मीद है उसे जिंदा रखेंगे, जो बीत गया उसे भूल जाएंगे, उस अनुभव से सीख लेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। फिलहाल अपनी दोस्त आरती को दीजिए इजाजत, लेकिन बहुत सारे कार्यक्रम इंद्रप्रस्थ पर अभी आपके लिए आने बाकी हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम से मैं चलती हूँ, आपसे लेती हूँ विदा। आपका दिन मंगलमय हो इसी शुभकामना के साथ। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम की तो वेरी गुड मॉर्निंग, और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति बैठक में 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा। दिल्ली सरकार आज लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4,000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। भारत और चीन ने सीमा विवाद के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। दुनिया भर में ईद मिलाद उन नबी की रौनक, केरलवासी मना रहे ओणम का सबसे शुभ दिन तिरुओणम। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराकर ग्रैंड शतरंज टूर फाइनल्स के खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। श्री मोदी ने कल सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री ने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपये से अधिक है। श्री मोदी ने किसानों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्री स्टैक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बेहतर उपयोग का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर जागरूकता अभियान, प्रशिक्षण और सुरक्षित डिजिटल व्यवहार को बढ़ावा दिया जाए। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
2: गृहमंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून देश भर में पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा बेहद जरूरी है।
3: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। उन्होंने बताया कि मादक पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि अगले 15 से 20 वर्षों की संभावित चुनौतियों की पहचान कर उन्हें समय रहते रोकने की रणनीति बनाई जानी चाहिए। गृहमंत्री ने राज्यों से नशे के खिलाफ अभियान तेज करने और सुरक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर बल देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य सुरक्षित, घुसपैठ मुक्त और नशा मुक्त भारत बनाना है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
2: गृह मंत्रालय ने केरल का आधिकारिक नाम बदलकर केरलम कर दिया है। ये बदलाव 25 अगस्त से लागू हो गया है। केरल का नाम बदलने से संबंधित विधेयक 11 अगस्त को लोकसभा और अगले दिन राज्यसभा में पारित हुआ था। इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधेयक को मंजूरी दी थी। इसके बाद इसे कानून का रूप मिल गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्य वर्धन करना है। भारतीय नौसेना निस्टार श्रेणी के दूसरे गोताखोर सहायता पोत निपुण को 31 अगस्त को मुंबई में डॉकयार्ड में शामिल करेगी। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ये पोत भारत की रक्षा जहाज निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका निर्माण विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। ये पोत पनडुब्बी बचाव अभियानों में भी नौसेना की क्षमता को मजबूत करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार आज लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4,000 पात्र

0: महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रूपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
1: अब तक 9,13,000 से अधिक महिलाओं ने इस योजना के लिए पंजीकरण कराया है और 6,52,000 से अधिक आवेदन अंतिम रूप से जमा किए जा चुके हैं। दिल्ली सरकार ने कहा कि वित्तीय सहायता अगले महीने की पहली तारीख से सीधे महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। दिल्ली के वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए 5,110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। दिल्ली सरकार ने सभी पात्र महिलाओं से समय पर अपना ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करने का भी आग्रह किया है। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि राजधानी में प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। सरकार ने कहा है कि कीमतें बढ़ने पर नेफेड से प्याज और चीनी खरीदकर लोगों को उचित दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ गठित करने के विचार पर सहमत हो गया है। केंद्र सरकार ने याचिका में सिविल सेवा परीक्षा 2025 के अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर से जुड़े उम्मीदवारों पर न्यायालय के 11 मार्च के फैसले पर स्पष्टीकरण मांगा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों को लेकर संसदीय समिति ने मसौदा रिपोर्ट को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। समिति ने एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने समेत इसमें सुधार और मजबूत बनाने से जुड़ी सिफारिशों पर सहमति व्यक्त की। कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक की अध्यक्षता वाली समिति की ये छठी बैठक थी। ई श्रम पोर्टल को आज 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये भारत के असंगठित कार्यबल के लिए सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 2021 में इस पोर्टल को शुरू किया था। इसके माध्यम से देश का पहला आधार आधारित राष्ट्रीय असंगठित श्रमिक डेटाबेस तैयार किया गया है। सरकार अखिल भारतीय निगरानी नेटवर्क के माध्यम से देश भर में प्रचलित मौसमी श्वसन संबंधी बीमारियों के रुझानों पर कड़ी नजर रख रही है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ राजीव बहल ने मीडिया को बताया कि देश में वर्तमान में फैल रहा इन्फ्लुएंजा वायरस पिछले कुछ वर्षों में देखे गए मौसमी पैटर्न के अनुरूप है। वर्तमान अवलोकन किसी नए इन्फ्लुएंजा खतरे के उभरने का संकेत नहीं देते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 25 अगस्त से 2 सितंबर तक कनाडा और अमेरिका की 9 दिन की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करना है। कनाडा की 4 दिन की यात्रा के दौरान श्रीमती सीतारामन वहां के वित्त मंत्री फ्रांसवा फिलिप शॉपिने के साथ पहली आर्थिक और वित्तीय वार्ता में हिस्सा लेंगी। अमरीका में वित्त मंत्री शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क का दौरा करेंगी। भारत और चीन ने सीमा मुद्दे के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। साथ ही सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों ने कहा है कि इससे द्विपक्षीय संबंधों के विकास और प्रगति को बढ़ावा मिलेगा।
2: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कल पेचिंग में भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वीं दौर की वार्ता की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों देशों ने अक्टूबर 2024 में कजान और पिछले साल अगस्त में तियाजिन में बनी सहमति को लागू करने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों पक्षों ने कैलाश मानसरोवर यात्रा और 3 निर्धारित सीमा व्यापार मार्गों से सीमा व्यापार समेत लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने का भी स्वागत किया। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं विकास नापा।
0: भारत और न्यूजीलैंड ने हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है। दोनों देशों के बीच दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता कल न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में हुई। वार्ता में समुद्री सुरक्षा, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने और 2030 के रोड मैप के लक्ष्यों को पूरा करने पर विचार किया। भारत और मोरक्को ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने, निवेश में वृद्धि करने और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह भारत और मोरक्को के बीच साझेदारी को अधिक मजबूत तथा गतिशील बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कनाडा ने अमेरिका के साथ बढ़ते व्यापार विवाद के बीच 27 अरब 60 करोड़ डॉलर के अमेरिकी सामान पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाने का फैसला किया है। ये जवाबी शुल्क 8

0: सितंबर से लागू होंगे। गोवा के परनेम स्थित पत्रा देवी शहीद स्मारक का आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अनावरण करेंगे। ये स्मारक गोवा के मुक्ति संग्राम में बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति और उनके योगदान को समर्पित है।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कहा कि यह स्मारक उन 31 सत्याग्रहियों की याद में बनाया गया है जिन्होंने 1955 में गोवा को भारत में शामिल करने की मांग को लेकर सत्याग्रह किया था। गोवा में प्रवेश की कोशिश के दौरान पुर्तगाली सैनिकों की गोलीबारी में उन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्मारक परिसर में शहीदों की याद में मूर्तियाँ और अलग अलग संरचनाएं बनाए गए हैं। पत्रा देवी शहीद स्मारक शहीदों को श्रद्धांजलि देने, इतिहास को समझने और आने वाली पीढ़ियों को गोवा के मुक्ति संग्राम से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनने की उम्मीद है। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलाद उन नबी आज देश के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर अलग अलग जगहों पर पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं पर मिलाद महफिलें और सीरत सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। उधर केरलवासी ओणम का सबसे शुभ दिन तिरुओणम मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को ओणम के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा कि खुशियों और उल्लास का ये रंगारंग त्योहार पूरी दुनिया में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने ईद ए मिलाद उन नबी की भी शुभकामनाएं दी हैं। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, केरलम और माहे में तेज वर्षा का अनुमान लगाया है। मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी दिन के दौरान तेज वर्षा की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में सक्रिय मॉनसून के बीच आज सुबह राज्य में भूकंप के झटके महसूस किए गए। शिमला में सुबह करीब 5:46 पर हल्के झटके आए जो कुछ सेकंड्स तक चले। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.0 मापी गई। भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर के फाइनल्स के खिताबी मुकाबले में जगह बना ली है। प्रज्ञानंदा ने सेमीफाइनल में जर्मनी के विंसेंट कीमर को 19-9 से हराया। फाइनल मैच प्रज्ञानंदा और मौजूदा चैंपियन फेबियानो कारुआना के बीच खेला जाएगा। शीर्ष तीन स्थान हासिल करने वाले खिलाड़ी अगले साल के ग्रैंड चेस टूर के लिए सीधे क्वालिफाई करेंगे। भारत के साथ दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन आज श्रीलंका 8 विकेट पर 265 रन से आगे खेलेगा। श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन से पीछे है। भारतीय टीम ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिन्दुस्तान की खबर है, देश में अब निजी कंपनियां भी मिसाइल का निर्माण कर सकेंगी। डीआरडीओ की तकनीक निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करने की मंजूरी। अमर उजाला लिखता है, सरकार देगी तकनीक, निजी कंपनियां बनाएंगी मिसाइलें। इस फैसले से देश में ही मिसाइलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन हो सकेगा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, H1N1 संक्रमण के मामले बढ़े, स्कूलों को दी हिदायत। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सीमा विवाद का समाधान तलाशने पर भारत चीन सहमत। एनएसए अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी की अगुवाई में हुई विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता। जनसत्ता ने सर्वोच्च न्यायालय का कथन दिया है, वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में चढ़ावा चोरी नहीं होने देंगे। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, यूपी में बुजुर्ग महिलाओं को बसों में मुफ्त सफर। स्कॉलरशिप से वंचित स्टूडेंट्स के लिए फिर खुलेगा पोर्टल, मेडिकल क्षेत्र में भी भत्ता बढ़ा। पंजाब केसरी ने 48 साल पहले की खौफनाक घटना को याद किया है, गीता और संजय के हत्यारे रंगा बिल्ला को आज भी नहीं भूली दिल्ली। 26 अगस्त 1978 को मासूम भाई बहन का अपहरण कर दोनों की हत्या कर दी गई थी। कल हुई मूसलाधार वर्षा पर दैनिक भास्कर ने लिखा है, थम गई दिल्ली, गुरुग्राम में सड़कें धंसी, हाईवे पर गहरा गड्ढा, एनसीआर में जलभराव से लगा जाम।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति बैठक में 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा। दिल्ली सरकार आज लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4,000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। भारत और चीन ने सीमा विवाद के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की और दुनिया भर में ईद मिलाद उन नबी की रौनक, केरलमवासी मना रहे ओणम का सबसे शुभ दिन तिरुओणम। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस: प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिव्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वर्थ 30,000 crore रुपीज एट प्रगति मीटिंग। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह सेट्स 1 year डेडलाइन फॉर 100% इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 3 new क्रिमिनल लॉज। Delhi government to hand over approval letters to 4,000 eligible women beneficiaries under Lakshmi Yojana today. India and China agreed to continue their work in seeking political settlement of boundary question for overall and long-term interests. Eid Miladun Nabi, birth anniversary of Prophet Muhammad being celebrated today. Keralites across the globe celebrating Tiruvonam, most auspicious day of Onam. And R. Pragyanan cruises into finals of Grand Chess Tour's last leg after 19-9 win over Germany's Vincent Keimer. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi reviewed infrastructure projects worth 30,000 crore rupees at 53rd Pragati meeting in New Delhi yesterday. The Prime Minister has stressed the need to explore common utility corridors for infrastructure services wherever feasible, particularly while planning major transport and infrastructure projects. Mr. Modi called upon ministries and states to examine such integrated approaches at the planning stage itself, keeping in view their technical and economic feasibility. He said that speed of execution must be accompanied by uncompromising quality. More from our correspondent.
4: The Prime Minister called upon ministries, states and implementing agencies to adopt modern technologies and strengthen quality assurance and supervision at every stage. During the meeting, Mr. Modi reviewed 6 key infrastructure projects across the railway, road and power sectors spanning 9 states with a cumulative cost of more than 30,000 crore rupees. The Prime Minister further emphasized that delays in infrastructure projects have consequences beyond cost escalation, as they also postpone the benefits intended for citizens, businesses and the economy. He said that infrastructure projects should be viewed and monitored as an integrated whole rather than isolated sections, stretches or packages. During the meeting, ministries and states were asked to adopt an end-to-end approach and address critical gaps that could delay the overall commissioning and delivery of benefits. Mr. Modi also called for fostering a proactive work culture across ministries and state governments with greater ownership at every level of project implementation. Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
3: Home Minister Amit Shah has said that to emerge as a leader in every sector, India must further strengthen its internal security. Addressing the concluding session of National Security Strategies Conference in New Delhi, Mr. Shah said the move will enable disposal of criminal cases up to the Supreme Court within 3 years and raise the conviction rate by 25%. More from our correspondent.
5: Mr. Shah said India must further strengthen its internal security to emerge as a leader in every sector. Home Minister said Prime Minister Narendra Modi has set the goal of a Viksit Bharat by 2047 and the primary prerequisite for a developed India is robust internal security. He said had the previous governments foreseen the issues of narcotics, nexalism and the challenges in the Northeast before they escalated into massive crisis, the country would not have had to bear their brunt for decades. The Home Minister said government has eliminated the formidable challenges across these 3 internal security hotspots and the entire credit for this goes to the state police forces, central agencies and the CAPFs. He said this NSSC forum should analyze trends for the next 15 to 20 years to identify potential emerging issues and devise strategies to preempt them. He said over the past 8 months he visited all states sharing land borders and shared a document outlining a quadrilateral border security approach with them. With Anupam report, Komudi Parekh, Akashwani News, Delhi.
3: Delhi government will hand over the approval letters to 4,000 eligible women beneficiaries under the Delhi Lakshmi Yojana today. Under the scheme, eligible women will receive financial assistance of 2,500 rupees every month. A report.
6: The Delhi government has informed that more than 9,13,000 women have registered for the scheme so far and over 6,52,000 applications have been finally submitted. The government said that the financial assistance will be credited directly to women beneficiaries' bank account from 1st of next month. A provision of 5,110 crore rupees has been made for the scheme in 2026-27 Delhi budget. The objective of the scheme is to provide financial security to women and make them self-reliant. The Delhi government has also urged all eligible women to complete their online registration on time. Soumya Sharan for Akashwani News, Delhi.
3: Union Home Ministry has officially notified Keralam as the new name for the southern state of Kerala, which came into effect from yesterday, 25th of August. This notification follows the passage of the Kerala Alteration of Name Bill in the Lok Sabha on August 11th and the Rajya Sabha the next day. Earlier this month, President Draupadi Murmu gave assent to a bill to rename Kerala as Keralam, turning the legislation into a law. Keralites across the globe are celebrating Thiruvonam, most auspicious day of Onam. Our correspondent has filed this report.
7: Thiruvonam celebrations began with Onapookalam, the traditional floral carpet made to welcome the legendary king Mahabali. This harvest festival is celebrated by Keralites irrespective of caste and religion. Special pujas are being held at temples, including the hill shrine of Shabarimala, Aranmula and Guruvayur. Onasadhya, the traditional Kerala feast, is another major attraction of Thiruvonam. Thousands of cultural programs and traditional games will be held across Kerala this afternoon, including official celebrations. Heavy rushes being experienced at temples across the state despite the rain. Smithy M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
3: Prime Minister Narendra Modi has extended greetings to the countrymen on the occasion of Onam. Sharing a social media post, the Prime Minister said that the vibrant festival is celebrated all over the world with great enthusiasm. Mr. Modi wished that this festival further empower the spirit of happiness, togetherness and prosperity. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. India and China have agreed to continue their work in seeking a political settlement of the boundary question in the context of their overall and long-term interests. National Security Advisor Ajit Doval highlighted the importance of maintaining peace and tranquility in the India-China border areas for the continued development and progress of bilateral ties between the two countries. Mr. Doval was co-chairing the 25th round of the Special Representative's talks on the India-China boundary question with Chinese Foreign Affairs Minister Wang Yi in Beijing yesterday. In a statement, the External Affairs Ministry said that the two special representatives had a candid and in-depth exchange of views on the India-China boundary question. Canada has struck back at the United States with retaliatory tariffs on about $20 billion US dollar worth of American goods, including steel, dairy products, appliances and farm equipment, as the trade war between the two countries escalated sharply. A report.
8: The new tariffs extend well beyond industrial goods, hitting everyday purchases such as seafood, cheese, clothing, cosmetics, and toilet paper. With some facing duties as high as 50%, the tariffs will be implemented from September 8, even as U.S. tariffs already came into place on Saturday. Canada's finance minister said Ottawa's tariff will match U.S. level. Canada's retaliation came after the Trump administration imposed 50% tariffs over the weekend on Canadian goods following the collapse of trade negotiation. Canadian Prime Minister Mark Carney accused Washington of trying to subordinate Canada. Vishal Kumar, Akashwani News, Delhi.
3: U.S. President Donald Trump has said that the U.S. Navy has removed or detonated all mines in the Strait of Hormuz, the vital waterway which Iran has largely closed since the beginning of the war in West Asia. In a post on his Truth Social platform, Trump said Iran has been notified that any ship or boat placing new mines will be immediately and systematically destroyed. There is no comment from Iran. Eid Milad Unnabi, the birthday of Prophet Hazrat Muhammad, is being celebrated with religious fervor in various parts of the country today. Milad Mehfils and Seerat conferences will be held highlighting the life and teachings of Prophet Muhammad. Milad processions are also being taken out to mark the occasion. Elaborate security arrangements have been made for the occasion. The Patra Devi Martyrs Memorial in Parneen will be unveiled today by Defence Minister Rajnath Singh. The memorial is a tribute to Goa's freedom struggle and seeks to preserve the memory of the sacrifices made during the liberation movement. More from our correspondent.
9: Chief Minister Dr. Pramod Sawant said the memorial will honour the 31 Satyagrahis who were killed by Portuguese soldiers in 1955 while trying to enter Goa with a demand for inclusion in India. The memorial has been designed to help visitors understand the history of Goa's Satyagraha movement in a simple and engaging way. It will feature sculptures, architectural spaces and landscape areas telling different stories from the freedom struggle. The project also includes pavilions and visitor facilities with spaces for recreation, retail and hospitality. The Patra Devi Memorial is expected to become a place of remembrance, learning and local pride while helping younger generations connect with Goa's history. Mahesh Chopra, Akashwani News, Panji.
3: Akashwani Kolkata today stepped into its 100th year of programming, marking a historic milestone in the journey of broadcasting in Bengal. More from our correspondent.
10: The station began its first official Bengali broadcast on 26th August 1927 and over the decades became an integral part of the cultural and social life of Bengal. From news and current affairs to music, literature, drama, education and public service programs, Akashwani Kolkata has connected generations of listeners and played a crucial role in shaping public discourse. Its contribution during the Bangladesh Liberation War further cemented its places in history. Today under Prasar Bharati, Akashwani Kolkata continues to serve its audiences through modern broadcasting platforms while safeguarding its rich legacy. As it enters its centenary year, the station celebrates not merely a century of broadcasting but a century-long bond with its listeners and the rich cultural heritage of Bengal. Sandeepan Dashgupta, Akashvani News, Kolkata.
3: Indian Grandmaster R. Pragyanan cruised into the finals of the Grand Chess Tour's last leg after 19-9 win over Germany's Vincent Kaimer in St. Louis, U.S. Having won the second classical game, the Indian enjoyed a huge lead of 6 points coming into the final day, on which games of shorter duration were played. He defeated Kaimer in back-to-back rapid encounters to nearly seal his spot in the finals, taking an unassailable 17-3 lead before another victory in the first game of blitz took his points tally to 19. Pragyanan will take on pre-event favourite and defending champion Fabiano Caruana of the USA States in the event finale. The top three finishers will automatically qualify for next year's Grand Chess Tour. RSS Chief Mohan Bhagwat arrived in the US last night as part of the Sangh's Centenary Year Global Outreach Program. During his stay in the city, Mr. Bhagwat would participate in the Universal Oneness Program and address a gathering of around 5,000 people at the iconic Madison Square Garden on Saturday. The event carries a timeless and universal message, the world is one family. It calls upon us to look beyond artificial divisions and differences, recognize the bonds that unite humanity and embrace a spirit of mutual respect, harmony and oneness. And now for a look at today's newspapers, it's over to Saira Mujtaba.
11: Thank you, Shagun. Most of the dailies lead with NSA Ajit Dobhal's visit to China. The Tribune headlines, India-China eye political fix for boundary dispute, stress need for peace and tranquility along LAC. Newspapers also report Prime Minister reviewed 30,000 crore rupees infra projects. The Asian Age headlines, Modi flags digital arrest pushes for strict surveillance. The Indian Express, citing RBI's monthly state of economy, informs Indian economy resilient amid global uncertainties. The paper adds, India's robust macroeconomic fundamentals continue to provide cushion to the domestic economy. The Statesman writes, Defence Minister Rajnath Singh clears transfer of DRDO missile tech to Indian defence industry. Hindustan Times headlines, 98% flu cases this season due to H1N1 swine flu, says ICMR. And finally, Times of India informs Dolly Parton, Queen of Country Music, dies at 80. And with that, it's back to you, Shagun.
3: Thank you, Saira. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi reviews infrastructure projects worth 30,000 crore rupees at Pragati meeting. Union Home Minister Amit Shah sets 1 year deadline for 100% implementation of 3 new criminal laws. Delhi government to hand over approval letters to 4,000 eligible women beneficiaries under Lakshmi Yojana today.
6: India and China agreed to continue their work in seeking political settlement of boundary question for overall and long-term interests. Eid Milad-un-Nabi, birth anniversary of Prophet Muhammad being celebrated today. Keralites across the globe celebrating Thiruvanam, most auspicious day of Onam. And R. Pragyanam cruises into finals of Grand Chess Tour's last leg after 19-9 win over Germany's Vincent Keimer. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर आज़म ने मोदी ने प्रगति मीटिंग में 30,000 करोड़ रूपये मालियत के बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का जायजा लिया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने 3 नए फौजदारी कवानीन के 100% नफाज के लिए 1 साल की मुद्दत मुकर्र की। दिल्ली हुकूमत आज लक्ष्मी योजना के तहत 4,000 अहल खातून मुस्तफीदीन को मंजूरी नामे फराहम करेगी। भारत और चीन ने मजमूई और तवील मुद्दती मफादात को मद्देनजर रखते हुए दोनों ममालिक के सरहदी मसले के सियासी हल के लिए काम जारी रखने पर इत्तेफाक किया। आज पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का योम विलादत ईद मिलादुन्नबी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजहबी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। दुनिया भर में केरला से ताल्लुक रखने वाले लोग थिरुवोनम यानी ओनम के सबसे मुकद्दस दिन को भी मना रहे हैं। और आर प्रगनंदा ने जर्मनी के विंसेंट केमर को 19-9 से हराकर ग्रैंड चेस टूर के आखिरी मरहले के फाइनल में जगह बना ली है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खास तौर पर ट्रांसपोर्ट और बुनियादी ढांचे के बड़े प्रोजेक्टों की मंसूबाबंदी के दौरान जहां भी मुमकिन हो बुनियादी ढांचे की खिदमात के लिए मुश्तरका यूटिलिटी कॉरिडोर्स बनाने के इम्कान तलाश करने पर जोर दिया है। सेवा तीर्थ में प्रगति की 53वीं मीटिंग की सदारत करते हुए जनाब मोदी ने वजारतों और रियासती हुकूमतों से कहा कि प्रोजेक्टों की मनसूबाबंदी के मरहले में ही इस तरह के मरबूत तरीकों का जायजा लिया जाए और इसके लिए तकनीकी और इक्तसादी इम्कान को मलहूज रखा जाए। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्टों की तकमील में तेजी के साथ मेयार पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। पेश एक रिपोर्ट।
12: वज़ीर आज़म ने वज़ारतों रियासतों और प्रोजेक्टों पर अमल दरामद करने वाली एजेंसियों से जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाने और हर मरहले पर मेयार की जांच और निगरानी के निजाम को मजबूत बनाने पर जोर दिया। मीटिंग के दौरान वज़ीर आज़म ने रेलवे सड़क और बिजली के शोबों से मुतालिक बुनियादी ढांचे के 6 अहम प्रोजेक्टों का जायजा लिया। ये प्रोजेक्ट्स 9 रियासतों में फैले हुए हैं और इनकी मजमूई लागत 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। मीटिंग में राबते के निजाम को मजबूत बनाने, सनअती और इक्तिसादी सरगर्मियों को फरोग देने और सरकारी खिदमात को बेहतर बनाने के लिए बेहद अहम प्रोजेक्टों का जायजा लिया गया। इस सिलसिले में खासतौर पर मुकर्रर वक्त की पाबंदी, मुख्तलिफ इदारों के दरमियान तालमेल, ज़ेरे इल्तवा मसाइल के हल और प्रोजेक्टों की जल्द तकमील पर जोर दिया गया। मीटिंग के दौरान वजारतों और रियासतों से कहा गया कि वो शुरू से आखिर तक एक मरबूत तरीकेकार अपनाएं और उन अहम खामियों या कमियों को दूर करें जो मजमूई तौर पर प्रोजेक्टों की तकमील फाल होने और उसके फवायद की फराहमी में ताखीर का सबब बन सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने वजारतों और रियासती हुकूमतों के दरमियान फाल और पेशगी इकदाम पर मबनी काम के कल्चर को फरोग देने पर भी जोर दिया ताकि प्रोजेक्ट के नफाज के हर मरहले पर ज्यादा जिम्मेदारी और मिल्कियत का एहसास हो। डिजिटल जरई मिशन के तहत एग्री स्टैक का जायजा लेते हुए वजीर आजम ने जरई आदादोशुमार से ज्यादा फायदा हासिल करने के लिए मसनू जहानत AI समेत जदीद तरीन डिजिटल टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करने की जरूरत पर जोर दिया। दिल्ली से प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
2: वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि भारत को हर शोबे में आलमी सतह पर कायद के तौर पर उभरने के लिए अपनी दाखिली सलामती को मजीद मजबूत करना होगा। नई दिल्ली में सिक्योरिटी की हिकमत अमली से मुतालिक कौमी कॉन्फ्रेंस NSSC के इख्तितामी इजलास से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत का हदफ मुकर्रर किया है और एक तरक्की याफ्ता मुल्क के लिए मजबूत दाखिली सलामती बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर साबिका हुकूमतों ने मुनशियात नक्सलिज्म और शिमाल मशरकी रियासतों के मसाइल को बड़े बहरानों में तब्दील होने से पहले ही भांप लिया होता तो मुल्क को कई दहाइयों तक इनके संगीन नतायज नहीं भुगतने पड़ते। वजीर दाखिला ने कहा कि हुकूमत ने दाखिली सलामती के चैलेंज वाले इन तीनों महाज पर موجود سنگین مسائل پر قابو پا لیا ہے اور اس کامیابی کا پورا سہرا ریاستی پولیس فورسز، مرکزی ایجنسیوں اور مرکزی مسلح پولیس فورسز

साथ मनाया जा रहा है और आर परनंदा ने जर्मनी के विंसेंट केमर को 19-9 से हराकर ग्रैंड चेस टूर के आखिरी मरहले के फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही यह खबरनामा खत्म हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वर गंगा, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सोनाली भट्टा की प्रस्तुति, जो राग मिश्र रामदासी मल्हार, मिश्र सिंधु भैरवी और राग मिश्र भैरवी में ठुमरी व दादरा प्रस्तुत करेंगी। तबले पर बलराम सिसोदिया और हारमोनियम पर दिनकर शर्मा उनका साथ देंगे। तो आइए आनंद लेते हैं शास्त्रीय संगीत की इस खूबसूरत प्रस्तुति का।

0: को जेल में जाना पड़ा और हंगल साहब को उस घटना से काफी दुख हुआ था क्योंकि चंद्र सिंह गढ़वाली को भारत रत्न नहीं मिला था और भारत मां का ये वीर सपूत 1981 में गुमनाम मौत में मरा था और पेशावर में हुआ नरसंहार उसी काबुली गेट वाली घटना के बाद हुआ था। और जहां तक फिल्मों के सफर की बात करें तो एके हंगल ने 50 वर्ष की उम्र में हिंदी सिनेमा में प्रवेश किया था। उन्होंने 1966 में बासु चटर्जी की फिल्म तीसरी कसम और शागिर्द में काम किया। इसके बाद उन्होंने सिद्धांतवादी भूमिकाएं निभाई। 70, 80 और 90 के दशक में उन्होंने प्रमुख फिल्मों में पिता या अंकल की भूमिका निभाई। और अगर पुरस्कारों की बात करें तो वर्ष 2006 में उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से नवाजा था। और अब हम याद करते हैं नाट्याचार्य खाडिलकर कृष्णजी प्रभाकर को। आज उनकी पुण्यतिथि है। उनका जन्म सांगली में हुआ था। विद्यार्थी अवस्था में ही इनकी नाट्य प्रतिभा चमक उठी थी। ये बहुमुखी प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे जो परीक्षा में, खेल में और वक्तृत्व की स्पर्धा में सदा चमकते थे। हाई स्कूल तथा कॉलेज में पढ़ते हुए उन्होंने संस्कृत और अंग्रेजी नाटकों का गहन अध्ययन किया। वकील होने पर स्वदेश सेवा करने की उनकी जो भावना थी वो लोकमान्य तिलक के सहयोगी बने और इनके स्वभाव में लालित्य और गंभीर का अलौकिक मेल था। लोक जागरण के उदात्त उद्देश्य से ये नाट्य सर्जना करने लगे। इन्होंने शेक्सपियर की नाट्य शैली को अपनाकर लगभग 15 कलापूर्ण और प्रभावशाली नाटकों की सफल रचना की। उन्होंने कलापूर्ण गद्य नाटक के समान ही संगीत नाटक भी लिखे और गद्य नाटकों को संगीत नाटक जैसा कलापूर्ण बनाया। और अब हम याद कर रहे हैं प्रसिद्ध विधिवेत्ता, शिक्षा प्रेमी, रचनाकार और बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध कवि और संगीतकार अतुल प्रसाद सेन को। आज उनकी पुण्यतिथि है। उनकी गणना देश के उच्च कोट के अधिवक्ताओं में की जाती थी। वे अवध वीकली नोट्स और बांग्ला मासिक उत्तरा के संपादक रहे थे और उनके रचित राष्ट्रप्रेम और भक्तिपरक गीतों को बांग्ला संगीत के क्षेत्र में बड़ा ही सम्मान मिला था। और इसके बाद हम याद कर रहे हैं भारत के स्वतंत्रता सेनानी नारायण सुब्बाराव हर्डीकर को। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में प्रसिद्ध हिंदुस्तान सेवा दल की स्थापना की। बंगाल विभाजन के विरोध में नारायण सुब्बाराव ने आर्य बाल सभा का गठन किया था। आजादी के बाद वर्ष 1952 में उन्हें राज्यसभा का सदस्य चुना गया और देश की प्रति निष्ठा और सेवा भावना को देखते हुए भारत सरकार ने नारायण सुब्बाराव को पद्म भूषण से सम्मानित किया था। इसके अलावा आज पुण्यतिथि है रामायण की कथा को खड़ी बोली पद्य के द्वारा कई खंडों में लिपिबद्ध करने वाले राधे श्याम कथावाचक की। ये रचना हिंदी क्षेत्रों, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के गांवों में पिछले अनेक दशकों में अत्यंत लोकप्रिय रही है। राधे श्याम रामायण में वर्णित नैतिक मूल्यों को जनसाधारण तक पहुंचाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा और उन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी थी। और आज ही जयंती है हिंदी साहित्य के महान उपन्यासकार आचार्य चतुरसेन शास्त्री की। इनका अधिकांश लेखन ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित था। आचार्य चतुरसेन के उपन्यास रोचक और दिल को छू लेने वाले थे। और इसके अलावा आज ही जयंती है भारत के प्रसिद्ध वास्तुकार बालकृष्ण विट्ठल दास जोशी की। और इसके अलावा भारतीय निशानेबाज जीतू राय का आज जन्मदिन है। तो सभी खेल प्रेमियों के लिए की ओर से और हमारे आकाशवाणी परिवार की ओर से उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज की जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं उनके ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। नई दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 16 के ए ब्लॉक में रामलीला मैदान में दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक उत्तराखंड लोक फाउंडेशन की तरफ से 21 दिवसीय उत्तराखंड लोक महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में शाम 7 बजे से द थिएटर में राजा फाउंडेशन की ओर से संगीतमय संध्या का आयोजन हो रहा है। और इंडिया हैबिटेट सेंटर में ही शाम 7 बजे से द स्टीन ऑडिटोरियम में नेशनल डांस और म्यूजिक फेस्टिवल 2026 का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा नई दिल्ली के कमानिया ऑडिटोरियम में शाम 7 बजे से श्रीराम भारती कला केन्द्र की ओर से भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित बैले कृष्ण की प्रस्तुति भी की जाएगी।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे। ये आकाशवाणी है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आप उर्दू सर्विस सुन रहे हैं। अब खबरें नशर की जाएंगी।
2: ये आकाशवाणी है। अब आप मोहम्मद कोनैन हैदर से खबरें सुनिए। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने प्रगति मीटिंग में 30,000 करोड़ रुपए मालियत के बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का जायजा

इस गजल के साथ ही आज का हुस्ने गजल प्रोग्राम अब खत्म होता है। आज के प्रोग्राम में आपने उमा गर्ग से जिगर मुरादाबादी और अर्श सहबाई का कलाम सुना और सलाउद्दीन अहमद से आतिश और फानी बदायूनी का कलाम हमने आपको सुनवाया। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री देश भर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। समीन, आज ईद मिलादुन्नबी मनाया जा रहा है, इसी मुनासबत से सुनिए फीचर वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला। तहरीर जनाब मेहदी नजमी की है और पेशकश जनाब अमीर हनफी की।

0: खुदाई मेरी सैरगाह है, इस सारी कायनात पर मेरी निगाह है, काबू में जिंदगी है, कजा इख्तियार में, दुनियाए मुमकिनात है मेरे हिसार में। मैं वक्त हूं, ये कुशादा आसमान, ये फैली हुई जमीन, ये फलक दोस्त को हुसार, ये उबलते हुए आबशार, ये बहते हुए दरिया, ये मचलते हुए समंदर, ये दहकता हुआ आफ्ताब, ये मुस्कुराता हुआ चांद, ये कहकशान ज़ियाबार, ये सनसनाती हुई हवा, ये बरसती हुई घटा, ये मंडलाते हुए बगुले, ये उमंगते हुए तूफान, ये बयाबान, ये बोस्तां, ये खंडर, ये बस्तियां, ये नगर, ये दयार, ये गंगो चमन, दजलो फरात के किनारों पर उभरती हुई तहजीबें, ये शाहान बाबुल और फराने मिस्र का मरता हुआ तमद्दुन, ये हुकूमतों का जाहो जलाल, ये कौमों का उरूज और जवाल, ये सब मेरी निगाह में है, ये सब मेरे शुमार में है। मगर आज से ज्यादा दिलकश, आज से ज्यादा खूबसूरत, आज से ज्यादा ईमान नफोज मंजर मैंने कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। बैतुल हराम की ये मुकद्दस बस्ती, मक्का मौसमा, कमरी जंतरी का ये मोहतरम महीना रबीउल अव्वल, अर्ज़े हिजाज का ये मौजिज खानदान बनी हाशिम और बनी हाशिम के सरबरा अब्दुल मुत्तलिब का ये मुबारक घर, अब्दुल्ला और आमना का काशाने हयात और इस खाने पाक व ताहिर में नूर की बारिश, उस नूर की बारिश जो तखलीक कायनात का पहला सबब बना, पहला यकीन, पहली जबी, पहली बंदगी, पहला शूर, पहली खिरद, पहली आगही, अफसाने हयात का उन्मान बन गया, दुनियाए रंग बू का निकेहबान बन गया, कतरे अर्क के टपके दुरे बेबाह बने, हर बूंद से गुलाब खिले अंबिया बने, महबूब का कमाल शरफ देखने लगा, परवरदिगार अपनी तरफ देखने लगा, वो नूर अव्वली के बस अल्लाह ही राजदार था, अल्लाह ही आशना, वो नूर मुजस्सम कि जिसको
1: सादिक कहो, अमीन कहो, मुस्तफा।

0: याद है वो मलाल अंगेज मंजर भी, जब आमना की पुरनूर गोद भरी थी। मगर इस नवेदे शादमानी से पेशतर ही अब्दुल्ला की वफात हो गई थी। विलादत से पहले ही मौलूद यतीम हो गया था। अब्दुल मुत्तलिब ने यतीम और मासूम पोते को अपने आगोश में लिया। अरबों के कायदे के मुताबिक हलीमा को रजात का मनसब सौंपा, मगर बाप के बाद दादा का साया भी सर से उठ गया। अब सिर्फ सगे चचा अबू तालिब की मोहब्बत और किफालत थी, जिन्होंने अपनी सारी औलाद पर अपने मुबारक को मसूद भतीजे को फजीलत दी कि उनकी निगाह बसीरत ने उसके रोशन और मुनव्वर चेहरे में देख लिया था कि वो अल्लाह की आखिरी हिदायत है, अल्लाह की आखिरी निशानी है। मुझे याद है वो दिलरुबा मंजर भी, जब हजरत खदीजा की कनीज ने तवज्जो दिलाई, बीबी देखना तो जरा ये कौन है जो धूप में चलता है तो बादल का टुकड़ा साया कर लेता है, ये कौन है कि बड़े से बड़े मजमे में भी जिसका सर सबसे ऊंचा रहता है, और अरब की सबसे बड़ी ताजिर, सबसे बड़ी दौलतमंद और इंतहाई जहीन और फहीम खातून खदीजा ने अपने महल के तरीके से तवज्जो की तो दिल की परत परत उसकी अजमतों के सामने झुक गई। फिक्र शोर ने उसकी बरगुजीदगी का एतराफ किया और तारे नजर ने दूर से उसकी बारगाह में नजराने दरूद और सलाम पेश किया।
1: तुझ पे लाखों सलाम, तुझ पे लाखों दरूद, तुझ पे

0: याद है वो हैजान अंगेज मंजर भी जब मक्के के लोगों ने मदीने पर हमला किया अल्लाह की आखिरी हिदायत का खून बहाने के लिए, अल्लाह की आखिरी निशानी को मिटा देने के लिए। एक तरफ दुश्मन के 1000 आहनपोश मुसल्ला सिपाही, दूसरी जानिब अल्लाह पर, सिर्फ अल्लाह पर तवक्कुल करने वाले 313 मुजाहिद, जिन्हें अक्सर के पास अगर तलवार थी तो फर्स न था, शमशीर थी तो सिना न थी, सिना थी तो जरह न थी, जरह थी तो सिपर न थी, जिनकी पिंडलियां जोहद से निष्कर की तरह सूख गई थी, जिनकी कमर बारे तकवा से मेहराब की तरह खम हो गई थी। बद्र के मैदान में ये नासिराने रसूल जब अपनी सफें बांध रहे थे तो उनके कवि हैकल हरीफ उनकी ज़ईफ़ी और नातवानी का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन अल्लाह ने मदद की, अपने हबीब के हाथ में अपनी नुसरत का हाथ दिया और दुश्मन का लश्कर इन मुजाहिदीन ने हक की कुव्वत मुदाफत की ताब न लाकर इस तरह पस्ता हुआ कि दुश्मन के भागते हुए राहवारों ने अपने ही सवारों को कुचल डाला। अल्लाह ने अपने हबीब को फतह दी।
1: ये जंग जुल्म जोर की ताकत से जंग थी, ये जंग अहले शर की सियासत से जंग थी, ये अदल की लड़ाई करम का जिहाद था, जो मर गया वो बानिए जुल्म फसाद था, ये जंग आदमी के शरफ की लड़ाई थी, इस जंग में शिकस्त तशद्दुद निखाई थी और मजरूह आदमी को नई जिंदगी मिली, बीमार था दिमाग नई आगही मिली, अपनो खिरक को कुव्वत परवाज मिल गई, कुरान के सुकूत को आवाज मिल गई।
2: कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद

0: أحد.
1: الله أكبر الله أكبر.

मुबारक बेगम और मीनू पुरुषोत्तम को आपने सुना। फिल्म थी अरब का सितारा। और इससे पहले मोहम्मद रफी की आवाज में नगमा हमने आपको काबली खान फिल्म से सुनवाया। प्रोग्राम की अगली पेशकश मुगले आजम फिल्म से है।

इमरान अजीज मियां और साथियों की आवाजों में अभी आपने बजरंगी भाईजान फिल्म से ये कवाली सुनी। इसके साथ ही आज का मेरी पसंद का शुमारा खत्म होता है। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमारी नशरियात मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर दस्तयाब हैं। पेश है गीतों भरी कहानी, ज्योत से ज्योत जले।

0: गगन बेचैनी से हॉस्पिटल के कॉरिडोर में टहल रहा है। ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती जल रही है। अंदर रोशनी की आंखों का ऑपरेशन हो रहा है। मरीज ये सोचकर खुश है कि अब रोशनी अपनी आंखों से सब कुछ देख सकेगी। अब उसे दूसरों के सहारे की जरूरत नहीं रहेगी। पहले भी वो कौन सी दूसरों की मोहताज थी। वो अपना सारा काम खुद कर लेती थी। आंखों में उजाला न सही, मन की आंखों से उसे तमाम चीजों का एहसास हो ही जाता था। सोचते सोचते नदीम अपनी जिंदगी के पुराने सपनों में खो गया।
1: अरे रे रे रे रे।
2: ओ।
1: अंधी हो क्या? देखकर नहीं चल सकती?
2: अंधे अंधे तो आप हैं, जो आंखें होते हुए भी रॉन्ग साइड पर साइकिल चला रहे हैं। ओ, मेरी किताबें कहाँ हैं?
1: माफ कीजिएगा, अब तुम कहीं देख नहीं सकते। ये लीजिए आपकी किताबें। आइए, मैं आपको सड़क पार करा।
2: शुक्रिया, मैं खुद सड़क पार कर सकती हूँ। मुझे आपके सहारे की जरूरत नहीं। आप अपनी साइकिल संभालिए।
1: लगता है आपने मुझे माफ नहीं किया। दरअसल मैं बहुत जल्दी में था, ऑफिस को देर हो रही थी।
2: तो जाइए ना, मैंने कौन सा आपका रास्ता रोका है?
0: नवीन सारा दिन उस अजनबी लड़की के बारे में सोचता रहा।

आंखों से ही नहीं देख सकती। इससे ज्यादा नदीम उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। नदीम के दिल में उस लड़की के लिए एक अजीब सी कशिश पैदा हो गई।

0: शाम को नदीम फिर उसी जगह उसी अजनबी लड़के का इंतजार करने लगा। इत्तेफाक से उसे वो नजर आ गई।
1: एक्सक्यूज मी, तो क्या जनाब सुबह से यहीं खड़े हैं?
2: कमाल है, आपने बिना देखे मुझे पहचान लिया।
1: आंखों से नहीं देख सकती तो क्या महसूस तो कर सकती हूँ। कहिए क्या बात है?
2: आपको बुरा ना लगे तो बराए मेहरबानी थोड़ी देर इस ताक में बैठ जाइए। दरअसल सारा दिन मैं आपके ही बारे में सोचता रहा।
1: इतनी हमदर्दी है आपको मुझसे? हाँ चलिए, वैसे आपने अपने बारे में कुछ भी तो नहीं बताया।
2: मेरा नाम नदीम है, एक प्राइवेट कंपनी में क्लर्क हूँ।
1: मैं रोशनी हूँ, स्कूल टीचर। घर में सिर्फ बूढ़ी माँ है। बचपन में एक हादसे में मेरी आंखों की रोशनी चली गई, मेरी दुनिया में अंधेरा छा गया।
2: आप बहुत हिम्मत वाली हैं। वो देखिए
1: कितनी
2: हंसी वादियां हैं।
1: मैं कैसे देख सकती हूँ।

0: हाशिम ने नदीम को अपनी आप बीती सुनाई। आंखों के न होने पर भी रोशनी ने तालीम हासिल की। उसके वालिद ने उसकी पूरी मदद की थी, उसे किसी चीज की कमी नहीं होने दी थी। कमी थी तो बस उसकी आंखों के इलाज के लिए पैसों की। शायद इसी गम में वो अपनी बीवी और बेटी को तन्हा छोड़कर वक्त से पहले ही दुनिया से कूच कर गए। रोशनी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन रोशनी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने जैसे तैसे पढ़ाई पूरी की और फिर उसे स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई। हालांकि वो किसी की मोहताज नहीं थी, फिर भी लोग उसे अपमानित समझते। नदीम और रोशनी की मुलाकातें बढ़ने लगी, साथ ही उनकी मोहब्बत परवान चढ़ने लगी। आखिर नदीम ने रोशनी से शादी करने का फैसला कर लिया। जब उसने अपने वालिद को अपना इरादा बताया तो वो उस पर बरस पड़े।
1: तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? उस अंधी लड़की से शादी करोगे जिसका कोई वाली वारिस नहीं, क्या मिलेगा तुम्हें?
2: अब वो एक बेसहारा को सहारा मिलेगा।
1: तुमने दुनिया भर के मजदूरों का ठेका ले रखा है क्या? एक तो ही रह गए हो उसे सहारा देने वाले। देखो नदीम, शादी बच्चों का खेल नहीं है, जिंदगी भर का सवाल है। उस बोझ को सारी जिंदगी उठा सकोगे क्या?
2: अब्दू वो बोझ नहीं है, वो आंखों से लाचार जरूर है लेकिन किसी पर बोझ नहीं।
1: देखो तुम्हारे लिए एक से एक उम्दा रिश्ते आ रहे हैं और तुम हो कि एक मजदूर लड़के से रिश्ता जोड़ना चाहते हो।
3: कुछ भी हो, मैंने तो फैसला कर लिया है कि शादी करूंगा तो रोशनी से ही।
1: अगर तुम्हारा

0: यही फैसला है तो इस घर से अपना रिश्ता खत्म समझो। मैं तुम्हें जमीन जायदाद से भी आग कर दूंगा।
1: जमीन जायदाद आपको मुबारक, मेरी नौकरी लगी हुई है, मैं खुद कमाकर अपना और रोशनी का खर्चा चला सकता हूं। नवीन घर छोड़कर एक अलग मकान में रहने लगा। जब रोशनी को इस बात का पता चला तो वो भी नदीम को समझाने लगी।
2: मेरे लिए आपने अपना घर बाहर छोड़ दिया, क्यों?
1: क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ।
2: नदीम, आप मेरे लिए इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हैं? मेरे ऊपर इतना एहसान क्यों? इसलिए कि मैं अपाहज हूँ?
1: नहीं रोशनी, नहीं, तुम अपाहज नहीं हो। तुम्हारे अंदर हौसला है और मैं तुम्हारे इसी हौसले को बनाए रखना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी रोशनी फिर से वापस लाऊंगा।
2: वो कैसे?
1: मैं डॉक्टर से तुम्हारा इलाज कराऊंगा और मुझे यकीन है कि तुम फिर से देख सकोगी।
2: उसके लिए तो बहुत पैसों की जरूरत होगी। कैसे होगा ये सब?

0: में क्या हो गया है नदी? रात दिन कितनी मेहनत करते हो, अपनी सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते।
1: रोशनी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आज की मेहनत एक ना एक दिन जरूर हम लाएगी।
0: कितनी तकलीफ दे रही हूँ मैं तुम्हें, मेरी वजह से तुम्हें इतने दुख झेलने पड़ रहे हैं।
1: यह दुख हमेशा तो नहीं रहेगा, सुख के दिन जरूर आएंगे। हौसला रखो।
0: आज की खबरें तो पढ़कर सुना दो।
1: अरे रोशनी,
0: क्या हुआ?
1: एक इश्तिहार है म्यूजिक कॉम्पिटिशन का, पहला इनाम 50,000 रुपए।
0: हाँ, तब तो हमें इस कॉम्पिटिशन में शिरकत करनी चाहिए।
1: हाँ, बहुत अच्छा मौका है, तुम मेरे साथ दिया तो हमारा काम बन जाएगा। तुम भी मेरे साथ गाओगे।
0: हाँ।

0: मुश्किल का इलाज हो सकता था, वही फौरन डॉक्टरों से मिला। आज वही पैसों से रोशनी की आंखों का ऑपरेशन हो रहा है। नहीं, अपने ख्यालों में गुम ही था कि अचानक डॉक्टर ने उसे आवाज दी।
1: आपके ख्यालात में गुम है जनाब, आइए, ऑपरेशन इज ओवर, आप पेशेंट से मिल सकते हैं।
0: शुक्रिया डॉक्टर, अभी पेशेंट से ज्यादा बातें नहीं,
1: 3 दिन बाद पट्टी खुलेगी।
0: डॉक्टर, आप रोशनी देख तो सकेगी?
1: हमने तो पूरी कोशिश की है, पट्टी खुलने के बाद ही रिजल्ट मालूम होगा। आइए पेशेंट से मिल लीजिए।
0: रोशनी, मैं 3 कैसा महसूस कर रही हो?
2: बहुत सुकून मिल रहा है। क्या कहा डॉक्टर ने?
0: सब कुछ ठीक है, 3-4 दिनों में पट्टी खोल देंगे।
2: अब मैं देख सकूंगी ना?
0: बिल्कुल देख सकोगी। अच्छा बताओ, सबसे पहले किसे देखोगी?
2: सबसे पहले तो मैं तुम्हें देखूंगी, तुम्हें तो मेरे सब कुछ हो।
0: अच्छा बाबा, अब आराम करो, डॉक्टर ने ज्यादा बोलने से मना किया है।
1: 3 दिन गुजर गए और आज रोशनी की आंखों से पट्टी खुलने वाली है।
0: घबराइए नहीं, लीजिए खुल गई पट्टी, अब धीरे धीरे आंखें खुलेंगी।
2: ओ डॉक्टर, दर्द हो रहा है।
0: डॉक्टर जी, शाबाश, कोशिश कीजिए, आहिस्ता आहिस्ता पर्दा उठाइए।
2: मैं देख सकती हूँ, मुझे दिखाई देने लगा है डॉक्टर, मैं देख सकती हूँ।
0: सामने कौन खड़ा है?
2: नदीम।
0: रोशनी,
2: नदीम,
0: लाख लाख शुक्रिया।
2: तुम कितने अच्छे हो नदीम। डॉक्टर, आप हमें आई डोनेशन फॉर्म देंगे?
0: लेकिन
2: डॉक्टर, 1 नहीं 2 फॉर्म लाइएगा, हम अपनी आंखें डोनेट करेंगे।
0: क्या आंखें डोनेट करोगी?
2: हाँ, जैसे आज मुझे किसी की आंखों का सहारा मिला है, मैं चाहती हूँ आइंदा भी ये आंखें किसी के काम आए। नदी,
1: आपके ख्याल बहुत बुलंद हैं। आंखें बड़ी नेमत हैं, इसका दान महादान है। इंसान की मौत के बाद आंखें दूसरों के काम आ सकती हैं, अगर इन्हें सही वक्त पर महफूज रख लिया जाए।
0: ठीक है डॉक्टर, हम खुद ही फॉर्म भर देते हैं ताकि हमारी आंखें मुस्तकबिल में किसी के काम आ सके।
2: वो इंसान कितना अजीम होगा जिसकी मेहरबानी से मुझे आज ये दुनिया फिर से देखने को मिल रही है।
0: और आज हम अपनी आंखें दूसरों के लिए महफूज रखने का आहद करते हैं, हम आंखें देने का वादा करते हैं।
1: रियली यू आर वेरी लकी मिस्टर नदीम, अब आप पेशेंट को घर ले जा सकते हैं।
0: शुक्रिया डॉक्टर। चलो रोशनी, हाथ पकड़ो, तुम खेले चलो।
2: अब मैं देख सकती हूँ, अब मैं खुद बिना सहारे के चल सकती हूँ। चलो, अब क्या सोचने लगे?

0: क्या।
1: अभी आप सुन रहे थे गीतों भरी कहानी ज्योत से ज्योत चले, तहरीर जनाब जितेंद्र पाल सिंह की थी और पेशकश सरफराज अहमद की। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नश्र की जाएंगी।
2: आदाब, ये आकाशवाणी है। अब आप फैसल खान से खबरें सुनिए। भारत और चीन ने मजमुई और तवील मुद्दती मफादात को मद्देनजर रखते हुए दोनों ममालिक के सरहदी मामले के सियासी हल के लिए काम जारी रखने पर इत्तेफाक किया। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन कनाडा के चार रोजा दौरे पर टोरंटो पहुंच गई हैं। कनाडा ने जवाबी कार्रवाई करते हुए तकरीबन 20 अरब डॉलर मालियत की अमरीकी मसनूआत पर जवाबी टैरिफ आयद करने का ऐलान किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीकी बहरिया ने ईरान की तरफ से अब नए हुर्मुज में बनाई बारूदी सुरंगों को तबाह कर दिया है। और आर प्रज्ञानंदा ने जर्मनी के विंसेंट किमर को 19-9 से हराकर ग्रैंड चेस टूर के आखिरी मरहले के फाइनल में जगह बना ली है। अब खबरें तफसील से। भारत ने भारत चीन सरहदी इलाकों में अमन अमान बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया ताकि दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात में मुसलसल इजाफा और पेशरफ्त जारी रह सके। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने कल बीजिंग में चीन के वजीर खारजा वांग यी के साथ भारत चीन सरहदी मसले पर खसूसी नुमाइंदों के मुजाकरात के 25वें दौर की मुश्तरक सदारत की। वजारत खारजा के एक बयान के मुताबिक दोनों खसूसी नुमाइंदों ने भारत चीन सरहदी मसले पर खुलकर तफसीली तबादला ख्याल किया। दोनों ने अपने मजमुई और तवील मुद्दती मुफादात को

प्रोजेक्टों की तकनीकी तेजी के साथ मेयार पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। वजीर आजम ने वजारतों, रियासतों और प्रोजेक्टों पर अमल दरामद करने वाली एजेंसियों से जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाने और हर मरहले पर मेयार की जांच और निगरानी के निजाम को मजबूत बनाने पर जोर दिया। मीटिंग के दौरान वजीर आजम ने रेलवे, सड़क और बिजली के शोबों से मुतालिक बुनियादी ढांचे के 6 अहम प्रोजेक्टों का जायजा लिया। ये प्रोजेक्ट्स 9 रियासतों में फैले हुए हैं और इनकी मजमूई लागत 30,000 करोड़ रूपये से ज्यादा है। मीटिंग के दौरान वजारतों और रियासतों से कहा गया कि वो शुरू से आखिर तक एक मरबूत तरीकेकार अपनाएं और इन अहम खामियों या कमियों को दूर करें जो मजमूई तौर पर प्रोजेक्टों की तकमील, फाल होने और इसके फवायद की फराहमी में ताखिर का सबब बन सकते हैं। डिजिटल जरई मिशन के तहत एग्री स्टॉक का जायजा लेते हुए वजीर आजम ने जरई आदादोशुमार से ज्यादा फायदा हासिल करने के लिए मसनू जहानत, एआई समेत जदीद तरीन डिजिटल टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करने की जरूरत पर जोर दिया। वजीरा खजाना निर्मला सीतारमन अपने 2 रोजा दौरे पर कल रात टोरंटो पहुंच गई है। वो भारत कनाडा इक्तसादी व मालियाती मुजाकरे में शिरकत करेंगी। इसके बाद वो G20 के वजराए खजाना की मीटिंग में शिरकत के लिए अमरीका जाएंगी। भारत के कौंसिल जनरल महावीर सिंघवी ने टोरंटो पियर्सन बैन अवी हवाई अड्डे पर मोहतरमा निर्मला सीतारमन का इस्तकबाल किया। वजीरे मौसूफ कनाडा के अपने हमनसब फ्रांसवा फिलिप शैम्पेन के हमराह इक्तसादी व मालियाती मुजाकरे के इफ्तिताही प्रोग्राम में शिरकत करेंगी। इस मुजाकरे से दोनों ममालिक को माइक्रो इकोनॉमिक तरक्की, मालियाती शोबे में बाहमी ताउन, दो तरफा सरमायाकारी के मौके और मुश्तरका बैन अवी तरजीहत पर तबादले ख्याल के लिए एक अहम प्लेटफार्म फराहम होगा। नीज भारत कनाडा शराकतदारी के इक्तसादी और मालियाती सतून को तकवीत मिलेगी। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने भारत को डेटा सेंटर्स के लिए एक पुरकशिश मकान करार दिया। उन्होंने कहा कि मुल्क इस शोबे की तरक्की के खातिर जापान की कंपनियों के साथ काम करने के लिए तैयार है और उससे बड़ी आलमी कंपनियों ने 200 अरब अमरीकी डॉलर मालियत की सरमायाकारी की पेशकश की है। जनाब गोयल ने यह बात कल जापान के मईशत, तिजारत और सनत के वजीर अकाजावा रायोसेई से टोक्यो में मुलाकात के दौरान कही। जनाब गोयल ने कहा कि जापान के साथ शराकतदारी के 4 अहम सतून तिजारत, टेक्नोलॉजी, ताउन और सरमायाकारी को बढ़ाना और सियाहत को फरोग देना है। इससे पहले जनाब गोयल ने टोक्यो में जापान की सेमीकंडक्टर्स और मसनूई जहानत के फर्मों से खिताब किया। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत जापान समेत हाईटेक शोबे की कंपनियों को भारत में मैन्युफैक्चरिंग मराकज कायम करने के लिए जरूरी साजो सामान और कलपुर्जों के लिए भारतीय मियारात के ब्यूरो BIS की जानिब से लाजमी तस्दीक की जरूरत खत्म करने के लिए एक फ्रेमवर्क पर काम कर रही है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। कनाडा और अमरीका के दरमियान जारी तजारती कशीदगी में मजीद इजाफा हो गया है। कनाडा ने जवाबी कार्रवाई करते हुए तकरीबन 20 अरब डॉलर मालियत की अमरीकी मसनूआत पर जवाबी टैरिफ आयद किए हैं। इन मसनूआत में स्टील, डेयरी, बर्की आलात और जरात से मुतालिक साजो सामान शामिल है। नए टैरिफ सनाती सामान के अलावा रोजमर्रा की अशिया जैसे सी फूड, पनीर, कपड़े, कॉस्मेटिक्स और टॉयलेट पेपर भी लागू होंगे, जिनमें से कुछ चीजों पर 50% तक ड्यूटी लगाई गई है। कनाडा के ये नए टैरिफ 8 सितंबर से नाफिजुल अमल होंगे, जबकि अमरीकी टैरिफ हफ्ते के रोज से ही लागू हो चुके हैं। कनाडा के वजीर खजाना फ्रांसवा फिलिप शैम्पेन ने कहा कि कनाडा के टैरिफ अमरीकी सतह के बराबर होंगे। कनाडा का यह रद्दअमल ट्रंप इंतजामिया की जानिब से तजारती मुजाकरात की नाकामी के बाद हफ्ते के आखिर में कनाडा की मसनूआत पर 50% टैरिफ आयद करने के बाद सामने आया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीकी बहरिया ने आबनए हुरमुज में मौजूद तमाम बारूदी सुरंगों को हटा दिया है या धमाके से तबाह कर दिया है। आबनए हुरमुज एक इंतहाई अहम बहरी गुजरगाह है जिसे मगरबी एशिया में जंग शुरू होने के बाद से ईरान ने बड़ी हद तक बंद कर रखा है। ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में कहा कि ईरान को खबरदार कर दिया गया है कि अगर कोई भी जहाज या कश्ती नई बारूदी सुरंग

0: कहिए जी कुछ तो कहिए, दिन है के रात है।
1: ओ, तुमसे मेहमान का मुझ पे एहसान क्या, लाखों ही जुल्फों वाले आते हैं घेरा डाले, मेरी क्या बात।
2: तुमसे नहीं देखा इस फिल्म का नगमा आपने सुना, आवाजें मोहम्मद रफी और आशा भोसले की थी। अगली पेशकश किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में है। फिल्म का नाम है गाइड।

0: आप सुन रहे थे फिल्मी दोगाने प्रोग्राम है मिले सुर मेरा तुम्हारा। ये प्रोग्राम अभी जारी रहेगा। वक्त हो गया है तारीख साज प्रोग्राम का। आज का मौजू है मोहसिन इंसानियत हजरत मोहम्मद।
1: 1492 वर्ष कबल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। आपकी विलादत के वक्त अजीब वरी मौजे जाहिर हुए। हुजूर की वालिदा हजरत आमिना फरमाती हैं कि जिस वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए उस वक्त चंद लम्हों के लिए रात की अंधेरी में हर चार जानिब रोशनी फैल गई। एक नूर जाहिर हुआ और उस नूर से मैंने मुल्क शाम के महलों को देखा। फातिमा बिन्त अब्दुल्ला फरमाती हैं कि विलादत के वक्त मैंने सितारों को आसमान से जमीन पर उतरते देखा। इस मुबारक साथ में खाने काबा की चारों दीवारें सजदे में चली गईं और फिर अपनी जगह खड़ी हो गईं। हजरत हलीमा सादिया ने जिस वक्त हुजूर को गोद में लिया तो हजरत आमिना ने कहा, ए हलीमा, तुम जिस बच्चे को ले जा रही है ये बड़ी शान रखता है। खुदा की कसम, इसके हमल से मुझे कोई तकलीफ न हुई जैसे वक्त में औरतों को होती है। ख्वाब में किसी आने वाले ने मुझसे कहा था, ए आमिना, तू एक ऐसे बच्चे की मां बनेगी जो सारे आलम का सरदार होगा। हजरत मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे इंसानों के मोहसिन बनकर तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तालीमात से अंधेरी दुनिया को रोशनी अता फरमाई। कुरान करीम में इरशाद खुदाबंदी है जिसका तर्जुमा यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो तुमको अता फरमाए उसे कबूल कर लो और जिन बातों से मना फरमाए उनसे बाज आ जाओ। महज 23 साल के कलील अरसे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इन तालीमात से सारे आलम में इनकलाब पैदा कर दिया। ऐसा सुनहरा दौर आया कि हर तबका खुश हो गया। इरशादे रसूल अकरम है, तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम फरमाएगा। या तुम उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकते जब तक एक दूसरे के साथ रहम का बर्ताव ना करो। सहाबा ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, हमने से हर शख्स रहम तो करता ही है। हुजूर ने फरमाया, रहम सिर्फ इसका नाम नहीं है कि सिर्फ अपने लोगों के साथ हो, बल्कि असल रहम करम तो वो है जो आम इंसानों के साथ हो। आपने जो नसीहत फरमाई पहले खुद उसका अमली मुशाहिदा कराया, हत्ता कि आपने दुश्मनों को भी माफ करने और उनसे प्यार करने का फलसफा बताया और

0: वही मुजाहिरा इस तरह किया कि दुनिया में उसकी मिसाल नहीं मिलती। ताइफ वालों ने आप पर बेइंतहा जुल्म सितम किया और इतने पत्थर मारे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर मुबारक खून से लहूलुहान हो गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हजरत आयशा से फरमाया, आयशा मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा मुसीबत और तकलीफ का दिन वो गुजरा है जिस दिन मैं ताइफ से वापस आ रहा था। वहां के लोग मुझ पर पत्थर बरसा रहे थे और मेरे पैर इतने जख्मी हो गए थे कि मेरे कदमों से चला भी नहीं जा रहा था। ऐसे जालिमों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाम लेने पर कादिर थे, मगर आपने बदला ना लिया और ऐसे जालिमों को भी आपने माफ फरमा दिया। शिमामा, अबू सुफियान, वहश बिन हरब, हंदा और मक्का मुकर्रमा के तमाम ऐसे दुश्मनों को आपने माफ फरमा दिया जिन्हें दहशत और घबराहट थी कि फतेह मक्का के बाद अब मोहम्मद हम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। इस रहम-करम और हुस्न सुलूक से मुतासिर होकर ये सारे लोग हुजूर के जानिसार और आशिकान रसूल बन गए। मोहसिन इंसानियत हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक का ऐसा नमूना पेश किया कि आज दुनिया हैरान है। एक यहूदी मुसाफिर शब में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ, आपने उसकी खातिर मदारत की, खाना खिलाया और अपनी कमर में सोने की जगह दी। सुबह जब हुजूर नींद से बेदार हुए तो देखा यहूदी बिस्तर पर नहीं है और बिस्तर गलाजत से भरा है। आपने अपने दस्ते मुबारक से उस शरीर की गलाजत को साफ किया। किसी जरूरत से दोबारा जब वो यहूदी वापस आया तो ये मंजर देखकर हैरान रह गया और बेहद शर्मिंदा हुआ और आपके पैरों पर गिर पड़ा और आपका गिलीदा बन गया। एक सफर में हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा नींद में थे कि अचानक एक दुश्मन रसूल रवास बिन हारिस तलवार लेकर हुजूर के सरहाने खड़ा हो गया, ललकारा और आवाज दी कि बताओ अब तुम्हें मुझसे कौन बचा सकता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह। हुजूर का यह फरमाना था कि उसके हाथ कपकपाने लगे और तलवार हाथ से गिर गई। हुजूर ने वो तलवार उठाई और पूछा कि बता अब तुझे कौन बचाएगा। उसने कहा, आप तलवार चलाने में माहिर हैं, आप मुझे माफ फरमा दें। उन्होंने माफ कर दिया और कोई सजा न दी। लबीद बिन आसिम ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया। हुजूर ने इसका चर्चा भी न किया और इंतकाम भी नहीं लिया। एक हिंदी औरत ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने में जहर मिला दिया। जब लोगों को मालूम हो गया तो घबरा गई, मगर हुजूर ने उसका भी बदला न लिया। हुजूर जब रास्ते से गुजरती तो एक औरत रोजाना आप पर कूड़ा फेंक देती। हुजूर बर्दाश्त करते रहे। एक दिन जब कूड़ा नहीं गिरा तो आपने उस औरत का हाल अहवाल दरियाफ्त किया। मालूम हुआ कि बीमार पड़ी है। आप इबादत के लिए उसके मकान पर तशरीफ ले गए, मिजाज पुरसी फरमाई और घर में झाड़ू दिया, उसके बर्तन वगैरह धोए। आपके उसमें अखलाक से वो बेहद शर्मिंदा हुई कि जिसके साथ मीनार रेबा सलूक करती रही वो मेरे साथ इस तरह उसने सलूक कर रहा है। उसने आपसे माफी मांगी और सहाबिया बन गई। एक जरीफ औरत मिसर पर लकड़ी लादे अपने घर जा रही है। आपने उसकी लकड़ी के गट्ठर को अपने सर पर उठाया और उसके घर पहुंचा दिया। वो जरीफा बहुत खुशी और आपको नसीहत फरमाई कि बेटा, मक्का में एक शख्स ऐसा जादूगर पैदा हुआ है जो अपनी बातों से लोगों को गुमराह कर रहा है, तुम उसके चक्कर में ना आना, उसका नाम मोहम्मद है। उन्होंने फरमाया, चाची जान वो मोहम्मद तो मैं ही हूं। मुबारक ताजुब में पड़ गई और कहा, अगर तुम ही मोहम्मद हो तो मैं तुम पर कुर्बान हूं। इस तरह मोहसिन इंसानियत ने अपने अमल के जरिए एक दो कारनामे नहीं सैकड़ों हजारों कारनामे अंजाम दिए हैं। जिंदगी भर हुजूर को यही फिक्र रही कि इंसानों में इंसानियत आ जाए। इसके लिए हुजूर ने अपना सब कुछ कुर्बान किया। ऐसा मुआशरा और समाज हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मेहनत और कुर्बानियों से तैयार किया था। अल्लाह ताला हमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
1: अभी आपने सुना प्रोग्राम तारीख साज। आज का मौजू था मोहसिन इंसानियत हजरत मोहम्मद। तहरीर हाफिज मोहम्मद शमीम की थी। रावी थे शमीम उस्मानी। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब पेश है मिले सर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम के तहत कुछ और फिल्मी नगमे।

नारायण और राष्ट्रीय घोषाल की आवाजों में ये नगमा अभी आपने सुना तमसा नहीं देखा फिल्म से। इसके साथ ही आज का मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर हमारी नशरियात जारी हैं। अब आलमी खबरें नशर की जाएंगी। ये आकाशवाणी है, अब आप नीतिका त्यागी से आलमी खबरें सुनिए। भारत और चीन ने मजमूई और तवील मुद्दती मफादात को मद्देनजर रखते हुए दोनों ममालिक के सरहदी मामले के सियासी हल के लिए काम जारी रखने पर इत्तेफाक किया। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन कनाडा के 4 रोजा दौरे पर टोरंटो पहुंच गई हैं। कनाडा ने जवाबी कार्रवाई करते हुए तकरीबन 20 अरब डॉलर मालियत की अमरीकी मसनूआत पर जवाबी महसूल आयद करने का ऐलान किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीकी बहरिया ने ईरान की तरफ से अपनाए हुरमुस में बिछाई गई बारूदी सुरंगों को हटा दिया है और आर प्रज्ञानंदा ने जर्मनी के विंसेंट केमर को 19-9 से हराकर ग्रैंड चेस टूर के आखिरी मरहले के फाइनल में जगह बना ली है। अब खबरें तफसील से। भारत और चीन ने अपने मजमूई और तवील मुद्दती मफादात को मद्देनजर रखते हुए सरहदी सवाल किए, सियासी हल की तलाश के लिए मुजाकिरात और कोशिशें जारी रखने से इत्तेफाक भी किया है। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात की पेशरफ्त और तरक्की के लिए भारत और चीन के सरहदी इलाकों में अमन और इस्तेकाम की अहमियत को उजागर किया है। जनाब अजीत डोभाल ने कल बीजिंग में चीन के वजीर खारजा वांग यी के साथ भारत चीन सरहदी सवाल पर मीटिंग की मुश्तरका तौर पर सदारत की थी। दोनों मुल्कों के खसूसी नुमाइंदों के दरमियान ये गुफ्तगू का 25वां दौर था। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन अपने 2 रोजा दौरे पर कल रात टोरंटो पहुंच गईं। वो भारत कनाडा इकतसादी और मालियाती मुजाकिरे में शिरकत करेंगी। इसके बाद वो G20 के वजराए खजाना की मीटिंग में शिरकत के लिए अमरीका जाएंगी। भारत के कौंसल जनरल महावीर सिंघवी ने टोरंटो पियर्सन बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे पर मोहतरमा निर्मला सीतारमन का इस्तकबाल किया। वजीर मौसूफ कनाडा के अपने हम मनसब फ्रांसुआ फिलीप शैम्पेन के हमरा इकतसादी और मालियाती मुजाकिरे के इफ्तिताही प्रोग्राम में शिरकत करेंगी। मुजाकिरे से दोनों ममालिक को मैक्रो इकोनॉमिक तरक्की, मालियाती शोबे में बाहमी तआवुन, दोतरफा सरमायाकारी के मौके और मुश्तरका बैनुल अक़वामी तरजीहात पर तबादला ख्याल करने के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म फराहम होगा। नीस भारत कनाडा शराकतदारी के इकतसादी और मालियाती सतून को तकवीत मिलेगी। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने भारत को डेटा सेंटर्स के लिए एक पुरकशिश मुकाम करार दिया है। उन्होंने कहा कि मुल्क इस शोबे की तरक्की की खातिर जापान की कंपनियों के साथ काम करने के लिए तैयार है और उसे बड़ी आलमी कंपनी

चाहिए। उन्होंने कहा कि इसका मकसद भारत में मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस कायम करके हुकूमत की मेक इन इंडिया पहल में तआवुन करने वाली हाईटेक कंपनियों के लिए साजो सामान और खिदमात की बरवक्त दस्तियाबी को यकीनी बनाना है। जनाब गोयल ने कहा कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बड़ी और उभरती हुई मार्केट है और तवक्को है कि इसकी सेमीकंडक्टर की मार्केट की मांग साल 2032 तक 150 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंच जाएगी। कनाडा और अमरीका के दरमियान जारी तजारती कशीदगी में मजीद इजाफा हो गया है। कनाडा ने जवाबी कार्रवाई करते हुए तकरीबन 20 अरब अमरीकी डॉलर मालियत की अमरीकी मसनूआत पर जवाबी टैरिफ आयद किए हैं। इन मसनूआत में स्टील, डेयरी, बर्की आलात और ज़राअत से मुतालिक साजो सामान शामिल हैं। नए टैरिफ सनअती सामान के अलावा रोजमर्रा की अशिया जैसे सी फूड, पनीर, कपड़े, कॉस्मेटिक्स और टॉयलेट पेपर पर भी लागू होंगे, जिनमें से कुछ चीजों पर 50% तक ड्यूटी लगाई गई है। कनाडा के ये नए टैरिफ 8 सितंबर से नाफिजुल अमल होंगे, जबकि अमरीकी टैरिफ हफ्ते के रोज से ही लागू हो चुके हैं। कनाडा के वजीर खजाना फ्रांसुआ फिलिप शैम्पेन ने कहा कि कनाडा के टैरिफ अमरीकी सतह के बराबर होंगे। कनाडा का ये रद्द अमल ट्रंप इंतजामिया की जानिब से तजारती मुजाकरात की नाकामी के बाद हफ्ते के आखिर में कनाडा की मसनूआत पर 50% टैरिफ आयद करने के बाद सामने आया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीकी बहरिया ने आमनए हुरमुज में मौजूद तमाम बारूदी सुरंगों को हटा दिया है या धमाके से तबाह कर दिया है। आमनए हुरमुज एक इंतहाई अहम बहरी गुजरगाह है, जिसे मगरबी एशिया में जंग शुरू होने के बाद से ईरान ने बड़ी हद तक बंद कर रखा है। ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में कहा कि ईरान को खबरदार कर दिया गया है कि अगर कोई भी जहाज या किश्ती नई बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश करेगी तो उसे फौरी तौर पर और मुनज्जम अंदाज में तबाह कर दिया जाएगा। ट्रंप के इस बयान पर ईरान की जानिब से अभी कोई रद्दअमल सामने नहीं आया है। अब नए हुरमुज को बंद करने के बाइस आलमी बाजारों में तेल की कीमतों में शदीद उतार चढ़ाव देखा गया है। ट्रंप अक्सर कहते रहे हैं कि इस इलाके पर अमरीका का कंट्रोल है, ताहम ईरान ने उन बहरी जहाजों पर फायरिंग भी की है जिनके बारे में उसका कहना है कि उन्होंने उसकी इजाजत के बगैर अब नए हुरमुज से गुजरने की कोशिश की थी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खेलो इंडिया डायलॉग से खिताब करेंगे। मस्कुरा प्रोग्राम को खेलों के कौमी दिन 2026 के जश्न के हिस्से के तौर पर मेरा युवा भारत माई भारत की जानिब से मुनक्किद किया जा रहा है। यह प्रोग्राम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के हर एक जिले में दो कॉलेजों में नौजवानों की शमूलियत के साथ मुल्क भर में मुनक्किद किया जाएगा। इसमें खेलों, नौजवान लीडरशिप, समाजी जिम्मेदारी, रजाकाराना खिदमात, फिटनेस और मुल्क की तामीर को एक का प्लेटफॉर्म पर एक साथ लाया जाएगा, जिससे नौजवानों को मुल्क के खेलों से मुतालिक उमंगों में अमली तौर पर शामिल होने का मौका मिलेगा और इस बात को यकीनी बनाया जा सकेगा कि नौजवानों के ख्यालात और नुक्ताए नजर को भारत के नौजवानों और खेलों से मुतालिक इको निजाम के ताल्लुक से जारी बातचीत का एक हिस्सा बनाया जा सके। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि भारत को हर शोबे में आलमी सतह पर कायद के तौर पर उभरने के लिए अपनी दाखिली सलामती को मजीद मजबूत करना होगा। नई दिल्ली में सिक्योरिटी की हिकमत अमली से मुतालिक कौमी कॉन्फ्रेंस NSSC के इख्तितामी इजलास से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत का हदफ मुकद्दर किया है और एक तरक्की याफ्ता मुल्क के लिए मजबूत दाखिली सलामती बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर साबिका हुकूमतों ने मशियात, नक्सलिज्म और शिमाल मशरकी रियासतों के मसाइल को बड़े बहरानों में तब्दील होने से पहले ही भांप लिया होता तो मुल्क को कई दहाइयों तक उनके संगीन नतायज नहीं भुगतने पड़ते। आज पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत ईद मिलादुन नबी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजहबी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर मिलाद की महफिलों और सीरत पाक के जलसों का एहतमाम किया जा रहा है, जिनमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा और तालीमात को उजागर किया जा रहा है। इस मौके पर सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरियत सीपी राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अवाम को मुबारकबाद पेश की है। आज सदर जमहूरियत ने मुल्क के अवाम, खासतौर पर मुस्लिम फिरके को मुबारकबाद देते हुए कहा कि ईद मिलादुन नबी हमें हजरत मोहम्मद साहब की तालीमात याद दिलाता है। नायब सदर जमहूरियत सीपी राधाकृष्णन ने अपने बेहतरीन नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए अपने पैगाम में कहा है कि हमें यह मौका सब्र व तहम्मुल, प्यार मोहब्बत, रवादारी, बाहमी एहतराम और भाईचारे के रिश्तों को मजबूत करने की याद दिलाता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ईद मिलादुन नबी के मौके पर शहरियों को मुबारकबाद दी।

एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने उम्मीद जाहिर की कि ये दिन दुनिया भर में इत्तेहाद और खुशी को फरोग देगा। वजीर आजम ने तमन्ना की कि रहमदिली, मेहरबानी और मुआशरे की भलाई का जज्बा हमेशा हम वतनों की रहनुमाई करता रहेगा। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने जर्मनी के विंसेंट केमर को 19-9 से शिकस्त देकर ग्रैंड चेस टूर के आखिरी मरहले के फाइनल में जगह बना ली है। दूसरा क्लासिकल मैच जीतने के बाद भारतीय खिलाड़ी को आखिरी दिन 6 पॉइंट्स की बड़ी बढ़तरी हासिल थी। जिस दिन कम दौरानी के मैच खेले गए, उन्होंने मुसलसल रैपिड मुकाबलों में केमर को शिकस्त देकर 17-3 की नाकाबिल तस्खीर बढ़तरी हासिल की और फिर ब्लिट्स के पहले मैच में एक और फतह हासिल करके अपने कुल पॉइंट्स की तादाद 19 तक पहुंचा दी। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत और चीन ने मजमूई और तवील मुद्दती मफादात को मद्देनजर रखते हुए दोनों ममालिक के सरहदी मामले के सियासी हल के लिए काम जारी रखने पर इत्तेफाक किया। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण कनाडा के दो रोजा दौरे पर टोरंटो पहुंच गई हैं। कनाडा ने जवाबी कार्रवाई करते हुए तकरीबन 20 अरब अमरीकी डॉलर की अमरीकी मसनूहात पर जवाबी महसूल आयद करने का ऐलान किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीकी बहरिया ने ईरान की तरफ से आबनाए हुरमुज में बिछाई गई बारूदी सुरंगों को हटा दिया है। और आर प्रज्ञानंदा ने जर्मनी के विंसेंट केमर को 19-9 से हराकर ग्रैंड चेस टूर के आखिरी मरहले के फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस।

दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ सामने रास्ते तो कई होते हैं मगर दिल किसी एक ही किनारे को तलाशता रहता है। और जब उस तलाश को एक शब्द मिलते हैं गुलजार साहब के, सुर मिलते हैं आर डी बर्मन साहब के और आवाज मिलती है लता मंगेशकर, किशोर कुमार और भूपेंद्र सिंह जैसे फनकारों की, तो एक ऐसी फिल्म जन्म लेती है जो सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। आज का हमारा जो पिटारा है उसमें हम लेकर आए हैं 1977 की एक बेहतरीन संवेदनशील फिल्म किनारा। एक ऐसी फिल्म जिसमें प्रेम है, बिछड़ना है, स्मृतियां हैं और जिंदगी के उस किनारे तक पहुंचने की कोशिश जहां इंसान अपने अतीत और वर्तमान के बीच खड़ा दिखाई देता है।

मेरी आवाज ही पहचान है, घर याद रहे, एक सुपर डुपर हिट गीत फिल्म किनारा का, जो कि 1977 में रिलीज हुई थी। फिल्म का निर्देशन गुलजार साहब ने किया था और निर्माण भी उनके सहयोग से ही हुआ था। मुख्य भूमिकाओं में, जैसा कि हमने आपको बताया, जितेंद्र और हेमा मालिनी, जबकि धर्मेंद्र ने फिल्म में विशेष भूमिका निभाई थी और संगीत की जिम्मेदारी थी महान संगीतकार आरडी बर्मन साहब के ऊपर। गुलजार की फिल्मों की खासियत ये थी कि वो प्रेम को सिर्फ प्रेम कहानी की तरह नहीं देखते थे, बल्कि उसके पीछे छिपी भावनाओं, यादों और इंसानी रिश्तों को भी सामने लाते थे। कहानी का जो मुख्य पात्र है वो आरती सान्याल होती है, जो कि एक प्रतिभाशाली नृत्यांगना है, जो अपने अतीत की एक गहरी त्रासदी को अपने भीतर लिए हुए हैं। उनके जीवन में चंदन की याद बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर है इंदर, जो आरती की जिंदगी में प्रवेश करता है और धीरे धीरे वो आरती के प्रति आकर्षित होता है और उसके मन में भी प्रेम जन्म लेता है। लेकिन ये प्रेम कहानी इतनी सीधी नहीं है। आरती का अतीत, इंदर का वर्तमान और चंदन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण सच्चाई कहानी को एक भावनात्मक मोड़ देती है और यही खूबसूरती दिखाई है फिल्म किनारा में। यहाँ पर इंद्रजीत यानी कि इंदर की भूमिका जितेंद्र ने निभाई, हेमा मालिनी आरती सान्याल के रूप में नजर आई थी, धर्मेंद्र जो थे वो प्रोफेसर चंदन आर्य बने थे, श्रीराम लागू एक वास्तुकार के रूप में नजर आए थे, आरती के दादाजी के रूप में ओम शुप्री थे, दीना पाठक आरती की माँ बनी थी। सुनते हैं इसी फिल्म का एक और गीत भूपेंद्र जी की आवाज में।

सपने में सबसे खूबसूरत चीज क्या होती है? शायद वो सपना जिसे इंसान बार बार देखता है। फिल्म का गीत जब भी आप सुन रहे हैं, एक ही ख्वाब कई बार देखा, इसी एहसास को आवाज देता है। भूपिंदर सिंह और हेमा मालिनी की आवाज में गीत फिल्म की रोमांटिक संवेदना को बहुत ही खूबसूरती से सामने लाता है।

वाह क्या खूबसूरत सा गीत है। बाकी आंख बंद करके तो इस गीत में खो जाने का दिल करता है। किनारा को खास बनाती है इसकी संवेदनशील कहानी। गुलजार की कहानी कहने की जो शैली है, कलाकारों का अभिनय और आरडी बर्मन साहब का संगीत। फिल्म की शूटिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक मांडू में हुआ था, जिसने फिल्म को एक खूबसूरत जो सीन थे, वातावरण था, वो दिया था। फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से अच्छा रिस्पांस मिला और 25वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में इसे निर्देशन, अभिनेत्री, सहायक अभिनेता, संगीत, गीतकार और कहानी सहित कई श्रेणियों में नॉमिनेशन मिला। सुनते हैं लता जी की आवाज में एक और खूबसूरत सा गीत।

आपके ढेर सारे संदेश भी हम तक पहुंचे हैं। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया, शेख रहीम जी जुड़े हुए हैं, नीतीश कुमार देवानगन, दुर्गा प्रसाद पराग टेलर पलारी छत्तीसगढ़ से हमारे साथ हैं, राजकुमार डूंडी जी हमारे साथ प्रमोद जी के साथ गांव फरासी जिला हिसार से है, सोन सिंह गिल, दलजीत, राजदीप गांव लोहगा ठाकुरवाला से जुड़े हुए हैं, गुरमी सिंह नीता साउथ एक्सटेंशन से और शालीमार बाग से अशोक कुमार सहगल जी हैं, ताज मोहम्मद अंसारी गुलाब साहिब जी हमारे साथ लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गंगनेजा पूनम जी जुड़े हुए हैं, डीवी राणा नेहरू बिहार दिल्ली से हमें सुन रहे हैं, हीरामणि वर्मा दतरेंगी भाटापारा से सुन रहे हैं, ऊपरकोट मोहला चौखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सैद अब्बासी जी, निगत परवीन शहनवाज, सरफराज फरदीन और इनके परिवार के सभी सदस्य हैं, लेकिन लगता है ये मेरा नाम भूल गए हैं, इन्होंने इंदू जी लिखा है। कोई बात नहीं, आपको मैं बता दूं कि आपके साथ आज मैं हूं अंजू पांडे। अगला संदेश छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस पूजा, निखिल वर्मा जी का है, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता हमारे साथ हैं, गोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल पूजा, ईशान जी हमारे सुन रहे हैं, नलवेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नोहान का निर्मला विशाल जी है, मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले जी हमें सुन रहे हैं, तुलसी मस्किन जी, बीना मस्किन, आशीष चैतन्य डब्बू जी के साथ हमें बिहारी कॉलोनी शादरा दिल्ली से सुन रहे हैं, पहाड़गंज मुल्तानी ढाणा से अनिल मोहन, उषा मोहन, चिलू नायक, मधु नायक जी हमारे साथ हैं। अगला संदेश फारूक अली खान जी का आया है, संबलपुर काकेर से फागुन राम यादव, ज्योति ओजस्वी जी हमारे साथ हैं, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवानगन, कौशल्या देवानगन, हेमलता डिम्पल जी हैं, और ये जो संदेश है ये मुस्कान पोस्ट कालीगांव जाफराबाद मराठावाड़ा से सुधाकर राजे यादव, प्रशांत और जगुताई जी हमारे साथ हैं, संदीप मक्कर जी जालंधर से हमें सुन रहे हैं, और ये अगला जो संदेश है ये मस्किन दादा जी का आया है जो गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगला संदेश हमारे पास पहुंचा है कवि रेडियो श्रोता संघ डोंजी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया अजय देव जी का, और दिग्दर्शन गौर जी हमारे साथ सुन रहे हैं हमें, गांव लोहरगढ़ ठाकुरवाला से सोन सिंह गिल, दलजीत, राजदीप जी हमें सुन रहे हैं, और बन भगेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सरवा आशा जी हमें सुन रहे हैं। तुलसी मस्किन जी का एक और संदेश हम तक पहुंचा है, और ये जो संदेश हम तक आया है बहुत सारी जानकारी के साथ जो हमेशा आती है, अजीत भावसर जी, प्रमिला भावसर, भावेश सनी जी, ये वीरनगांव गुजरात से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बबलेश पवार जी ने भी हमें बेहतरीन जानकारी साझा की है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। गांधी चौक बाड़मेर से ये डैनी पवार मनीष के साथ में हमें सुन रहे हैं, और गांव कलाना राजस्थान से विक्रम, सचिन, सतीश जी हमारे साथ हैं, इंदिरा नगर भवरपुर से राधेश्याम देवानगंद जगदीश जी हैं, छोटी बलिया फिल्म सिटी से अहमद बाई जी दुखनी हमारे सुन रहे हैं, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय डिंगिया, नमन अपार डिंगिया जी हमारे साथ हैं, शिवा गो, प्रेम गोप पश्चिम सिंहभूम चाईवासा झारखंड से हमारे साथ हैं, बन भगेरा राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सरवा आशा जी हमें सुन रहे हैं, भवरपुर वसना से राधेश्याम चंपा जी हमारे साथ हैं, मोहम्मद रफीक पवार बेंजिन कोसर ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से हमें सुन रहे हैं, और मुकेश भट्ट जी हमारे साथ हैं, चौटाला हरियाणा से दारा पंडित संजय शर्मा जी हमें सुन रहे हैं, सुदर्शन मुखिया नीता सिमरन जी शांतिनगर सोनीपत से हमारे साथ हैं, आप सभी का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे इस सफर में हमारे हम सफर बनने के लिए, और आप इस वक्त आनंद ले रहे हैं फिल्म किनारा का। कुछ और संदेश भी हैं जिन्हें हमें शामिल कर लेती हूँ। मुकेश कासलेकर तहसील बरून जिला अमरावती महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रघुनाथपुरा श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी

स्वामी हेमलता हिना हर्षित जी हमें सुन रहे हैं और सुदर्शन खुराना सुरेंद्र खुराना जी न्यू मुल्तान नगर दिल्ली से हैं। हेमा मालिनी जितेंद्र धर्मेंद्र ने अपने किरदार बखूबी निभाए लिखते हैं वो फिल्म किनारा में। शुक्रिया आपका। जिला मुरादाबाद गांव धुलापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान सलमान इरफान जी हमारे साथ हैं। तो दोस्तों किनारा सिर्फ 97.7 में आई एक फिल्म का नाम नहीं, ये उन भावनाओं का नाम है जिन्हें हम अपने भीतर लेकर चलते हैं। कुछ रिश्ते हमारे साथ रहते हैं, कुछ यादें हमें छोड़ती नहीं है और कुछ लोग जिंदगी से दूर होकर भी हमारी कहानी का हिस्सा बने रहते हैं। ऐसी ही फिल्म है किनारा, जिसका आनंद आज आपने लिया। उम्मीद करती हूँ कि इस फिल्म को आपने जरूर देखा होगा और अगर अभी तक आपने इस फिल्म को नहीं देखा तो वक्त निकालकर जरूर देखिएगा। फिलहाल वक्त मुझे कह रहा है आपसे अनुमति लेनी है। 2:30 पर विजेता जी आपके साथ रहेंगी, प्रोग्राम रहेगा एक ही कलाकार। तब तक अपनी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे को अनुमति दीजिए, फिर मिलेंगे। नमस्कार।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं नीतिका त्यागी। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कनाडा के टोरंटो में भारतीय कारोबारी बिरादरी के सरकर्ता अरकान से खिताब किया। उन्होंने कहा कि भारत की यकसर तब्दीली ढांचा जाति शहरों के तेजी से फरोग और आलमी मेयार के डिजिटल बुनियादी ढांचे पर मबनी है। भारतीय तिब्बी एसोसिएशन ने मुल्क में H1N1 इन्फ्लुएंजा के फैलने के सिलसिले में सेहत आमा से मुतालिक एडवाइजरी जारी की है। उसने कहा है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ चौकन्ने रहें। ओणम का त्यौहार रिवायती जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। हजरत मोहम्मद का यौम पैदाइश ईद मिलाद उन नबी मजहबी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। आइंदा दो रोज के दौरान मशरकी और शिमाल मशरकी रियासतों में शदीद बारिश जारी रहने का इम्कान है। और क्रिकेट में कोलंबो टेस्ट मैच में भारत ने श्रीलंका को फॉलो ऑन कराया है। अब खबरें तफसील से। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी रफ्तारी के साथ तरक्की करने वाली एक अहम मईशत है और मुल्क में लगातार तरक्की, नौजवान आबादी, खपत में बढ़ोतरी और तेजी से फरोग पाते हुए सरमाया बाजार मौजूद हैं। उन्होंने ये बात आज टोरंटो में भारत के कारोबारी तबके के सरकर्ता अरकान से खिताब करते हुए कही। मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि भारत में शहरों के तेजी से फरोग, मुतवस्सित तबके की तरक्की और आलमी मेयार के डिजिटल बुनियादी ढांचे के नतीजे में यकसर कायापलट हुई है। उन्होंने कहा कि इस तरह के हालात से मईशत के लगभग हर तबके के लिए नित नए मौके पैदा हो रहे हैं। भारत और कनाडा के दरमियान बढ़ती हुई इक्तिसादी शराकतदारी की अहमियत को उजागर करते हुए मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि कनाडा में मौजूद भारतीय बाशिंदे दोनों मुल्कों के दरमियान एक कलीदी पुल के तौर पर काम कर रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खेलो इंडिया डायलॉग से खिताब करेंगे। मस्कूरा प्रोग्राम को खेलों के कौमी दिन 2026 के जश्न के हिस्से के तौर पर मेरा युवा भारत माई भारत की जानिब से मुनक्किद किया जा रहा है। ये प्रोग्राम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के हर एक जिले में दो कॉलेजों में नौजवानों की शमूलियत के साथ मुल्क भर में मुनक्किद किया जाएगा। इसमें खेलों, नौजवान लीडरशिप, समाजी जिम्मेदारी, रजाकाराना खिदमात, फिटनेस और मुल्क की तामीर को एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर एक साथ लाया जाएगा, जिससे नौजवानों को मुल्क की खेलों से मुतालिक उमंगों में अमली तौर पर शामिल होने का मौका मिलेगा और इस बात को यकीनी बनाया जा सकेगा कि नौजवानों के ख्यालात और नुक्ताए नजर को भारत के नौजवानों और खेलों से मुतालिक इको निजाम के ताल्लुक से जारी बातचीत का एक हिस्सा बनाया जा सके। प्रोग्राम में नौजवान, माई भारत रजाकार, मकामी खिलाड़ी और अवामी नुमाइंदे शिरकत करेंगे। इस पहल के नुमाया हिस्से के तौर पर खेलों में दिलचस्पी रखने वाले नौजवान सरकर्दा भारतीय खिलाड़ियों और तमगा हासिल करने वाले खिलाड़ियों से बातचीत करेंगे। इस प्रोग्राम की एक मरकजी खसूसियत युवा संवाद होगा, जिसमें नौजवान शुरका को उनके ख्यालात, नुक्ताए नजर और उमंगों पर बात करने के लिए मदऊ किया जाएगा। ये बातचीत 5 मौजूदात पर होगी, जिनमें खेल, ओलंपिक से मुतालिक उमंगें, नौजवान कयादत, विकसित भारत और नशा मुक्त युवा शामिल हैं। खेलो इंडिया डायलॉग का मकसद नौजवानों की कयादत में एक मजबूत विकसित भारत की खातिर अपनी उमंगें और नजरियात का इश्तराक करते हुए मुल्क के खेलों के सफर में नौजवानों को शामिल करना है। इसका इनेकाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी के एक फिट, मुनज्जम और जब्त पर मबनी और खेलों को फरोग देने वाले मुल्क के नजरिए से मुताबिकत रखता है, जिससे नौजवानों की उमंगों को कौमी तरक्की के एजेंडा में मरकजी हैसियत हासिल हो सके। भारत ने पुरजोर अल्फाज में कहा है कि अक्वामे मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की फौरी तरजीह इंसानियत को दरपेश मसाइल को दूर करने के इकदामात होने चाहिए, जिसका उन्हें लड़ाई की वजह से सामना करना पड़ रहा है। अक्वामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पी हरीश ने सलामती काउंसिल में इस सिलसिले में एक खुली बहस में इजहार ख्याल करते हुए ये बात कही। उन्होंने बिला रुकावट इंसानी रिसाई, महफूज और लड़ाई झगड़ों से पाक मुअस्सर इंतजाम की जरूरत को उजागर किया। उन्होंने सलामती काउंसिल पर जोर दिया कि वह इस बात को यकीनी बनाए कि उसके इकदाम में ऐसी पाबंदियां शामिल होनी चाहिए जिनसे इंसानी बुनियाद पर दी जाने वाली इमदाद में दानिस्ता तौर पर रुकावट न पड़े और जायज जरई तजारत और खुराक की फराहमी जारी रहनी चाहिए। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। भारत की मेडिकल एसोसिएशन ने अवाम पर जोर दिया है कि वो
H1N1 इन्फ्लुएंजा के फैलने के बारे में होशियार और चौकस रहें। उसने ये भी कहा है कि मौसम की वजह से ये बीमारी बढ़ रही है और इससे मुतासिर ज्यादातर लोगों में ये एक हद तक रहता है और ये मामूली किस्म का होता है। उसने लोगों को मशवरा दिया है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेडिकल एसोसिएशन ने ये भी कहा है कि ये H1N1 एक वायरल इन्फेक्शन है और एंटीबायोटिक्स से इसके जरासीम खत्म नहीं होते। मेडिकल एसोसिएशन ने यह भी कहा है कि जब कोई अहल मेडिकल पेशेवर शख्स तजवीज करे तभी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। दुनिया भर में केरलम के बाशिंदे तिरु ओनम मना रहे हैं, जो ओनम का सबसे पवित्र दिन है। हमारे नामानिकार ने खबर दी है कि तिरु ओनम तकरीबात का आगाज ओना पुक्कलम से हुआ, जो बादशाह महाबली के खैर मकदम के लिए फूलों का एक रिवायती कालीन है। फसल की कटाई का ये त्यौहार केरलम के लोग जात मजहब से कतई नजर मना रहे हैं। मंदिरों में खसूसी पूजा का एहतमाम किया जा रहा है, जिनमें सबरीमला, अरनमुला और गुरुवयूर शामिल हैं। आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश ईद मिलादुन नबी भी मजहबी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर मिलाद महफिलों और सीरत नबवी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें पैगंबर मोहम्मद की हयात तैयबा को उजागर किया जा रहा है। ईद मिलादुन नबी के मौके पर जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर सीपी राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ओनम और ईद मिलादुन नबी के मौके पर लोगों को मुबारकबाद पेश की है। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने अगले दो रोज के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, मशरकी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और शिमाल मशरकी रियासतों में शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। इस दौरान दिल्ली के हिस्सों में आमतौर पर बादल छाए रहने के साथ साथ कल बहुत हल्की से हल्की बारिश की पेशगोई की गई है। ओडिशा में महानदी में तोगयानी आने के बाद सैलाब से मुतालिक तशवीश में एक बार फिर इजाफा हो गया है। बैतरणी में भी पानी की सतह बढ़ गई है, जबकि भद्रक जिले में चांदबाली में भी सैलाब की सी सूरत हाल पैदा हो गई है और मुख्तलिफ गांव सेरे आब आ गए हैं। नस्ली भेदभाव को खत्म करने से मुतालिक अक्वामे मुत्तहिदा कमेटी की रिपोर्ट में दिए गए हवालों को भारत ने मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि ये इंतहाई शरंगेज हैं, नीज इनके पीछे सियासी मकासद कार फरमा है। नस्ली तासब को खत्म करने से मुतालिक बैनुल अक्वामी कन्वेंशन के 11वें जायजे की आलमी इदारे की इस रिपोर्ट के बारे में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए वजारत खारिजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने इस कमेटी की मीटिंग में तामीरी जज्बे से शिरकत की थी। उन्होंने ये भी कहा कि साल 1960 में इस कमेटी का मुसविदा बनाने और इसकी तैयारी में भारत ने कायदाना रोल अदा किया था और भारत नस्ली भेदभाव और तासुब के खिलाफ जद्दोजहद में गैर मुतजलजल यकीन रखता है। यूक्रेन के

0: वोलोदिमिर जेलेंस्की ने यूक्रेन के आवाम को योम आजादी की मुबारकबाद देने पर भारत और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का शुक्रिया अदा किया है। सदर मुर्मू ने कल यूक्रेन के 35वें योम आजादी के मौके पर वहां के आवाम को मुबारकबाद दी थी। मर्दों के क्रिकेट में कोलंबो टेस्ट मैच में अब से कुछ देर पहले श्रीलंका ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 2 विकेट पर 163 रन बना लिए थे। भारत ने पहले इनिंग्स में श्रीलंका को 290 रन पर ऑल आउट करने के बाद फॉलो ऑन कराया था। आखिरी दिन के खेल से पहले श्रीलंका ने 8 विकेट पर 265 रन से आगे खेलना शुरू किया और महज 25 रन स्कोर किए। श्रीलंका के ऑलराउंडर सोनल दिनुषा ने लगातार अपनी दूसरी सेंचुरी बनाते हुए 103 रन बनाए। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कनाडा के टोरंटो में भारतीय कारोबारी बिरादरी के सरकर्दार कान से खिताब किया। उन्होंने कहा कि भारत की अक्सर तब्दीली ढांचा जाति शहरों के तेजी से फरोख और आलमी मेयार के डिजिटल बुनियादी ढांचे पर मबनी है। भारतीय तिब्बी एसोसिएशन ने मुल्क में H1N1 इन्फ्लुएंजा के फैलने के सिलसिले में सेहत आमा से मुतालिक एडवाइजरी जारी की है। उसने कहा है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ चौकन्ने रहें। ओनम का त्यौहार रिवायती जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। हजरत मोहम्मद का योम पैदाइश ईद मिलादुल नबी मजहबी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। आइंदा 2 रोज के दौरान मशरकी और शुमाल मशरकी रियासतों में शदीद बारिश जारी रहने का इम्कान है। और क्रिकेट में कोलंबो टेस्ट मैच में भारत ने श्रीलंका को फॉलो ऑन कराया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the Midday News. The headlines. Finance Minister Nirmala Sitharaman addresses leading members of Indian business community in Toronto, Canada, says India's transformation is structural, driven by rapid urbanization and world-class digital infrastructure. Chief Minister Lekha Gupta launches Delhi Lakshmi Yojana, hands over approval letters to 2,500 beneficiaries. Indian Medical Association issues public health advisory on H1N1 influenza spread in country, says no cause for panic, just heightened vigilance required. Festival of Onam been celebrated with traditional fervor. Birthday of Prophet Hazrat Muhammad Eid Milad bin Nabi been celebrated in various parts of the country. Heavy rainfall to prevail over eastern and northeastern states for the next 2 days. And in cricket, India asks host Sri Lanka to follow on in the Colombo Test match. Finance Minister Nirmala Sitharaman today said that India stands as the fastest growing major economy in the world and offers a unique combination of scale, sustained growth, a young population, expanding consumption and rapidly deepening capital markets. Addressing prominent members of the Indian business community in Toronto today, Sitharaman said India's transformation is structural, driven by rapid urbanization, a growing middle class and world-class digital infrastructure. She noted that these developments are creating new opportunities across virtually every sector of the economy.
2: India today stands as the fastest growing major economy in the world. India's transformation is structural, rapid urbanization, a growing middle class and world-class digital infrastructure are creating new opportunities across virtually every sector of the economy.
1: The finance minister also highlighted the role of India's digital ecosystem in transforming access to financial and commercial services. She underlined significant opportunities for collaboration with Canadian banks, fintech companies and regulators, not only in payments but also in shaping the next generation of digital financial infrastructure. Referring to the agreement reached between Prime Minister Narendra Modi and his Canadian counterpart Mark Carney on the sidelines of the G7 summit in June 2025 to reset bilateral ties, Sitharaman said the two countries have reaffirmed their commitment to building a future-focused strategic partnership.
2: India-Canada bilateral relations have seen a remarkable transformation in recent times, underpinned by our shared values of democracy and pluralism and expanding economic engagement and the strength of our people-to-people ties. It is, in the truest sense, a strategic bridge between

0: Lanka were 179 for 3 against India in the second innings on the fourth day of the second test in Colombo when reports last came in. Earlier, India enforced the follow-on after bowling Sri Lanka out for 290 in the first innings. Resuming the first innings at 265 for 8 this morning, the hosts managed to add only 25 runs. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Finance Minister Nirmala Sitharaman addresses leading members of Indian business community in Toronto, Canada, says India's transformation is structural and driven by rapid urbanization and world-class digital infrastructure. Chief Minister Rekha Gupta launches Delhi Lakshmi Yojana, hands over approval letters to 2,500 beneficiaries. And Indian Medical Association issues public health advisory on H1N1 influenza spread in country, says no cause for panic, just heightened vigilance required. Festival of Onam been celebrated with traditional fervour. Birthday of Prophet Hazrat Muhammad Eid Milad-un-Nabi been celebrated in various parts of the country. And with that we end the Midday News.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कनाडा के टोरंटो में भारतीय व्यापारी समुदाय को संबोधित किया। कहा भारत का परिवर्तन संरचनात्मक है जो तीव्र शहरीकरण और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचे से प्रेरित है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया। 2,500 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे। भारतीय चिकित्सा संघ ने देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा के प्रसार को लेकर परामर्श जारी किया। कहा घबराने की जरूरत नहीं, सतर्कता बरतने पर जोर दिया। ओणम का त्यौहार पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। पैगम्बर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलाद उन नबी धार्मिक उत्साह के साथ मनाई जा रही है। पूर्वी और उत्तर पूर्वोत्तर राज्य में अगले दो दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना। और क्रिकेट में भारत ने कोलंबो टेस्ट मैच में श्रीलंका को फॉलो ऑन खेलने के लिए कहा। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है और यहां व्यापक अवसर, निरंतर वृद्धि, युवा आबादी, बढ़ती खपत तथा तेजी से विकसित हो रहे पूंजी बाजारों का अनूठा संयोजन निवेश के मजबूत अवसर प्रदान करता है। कनाडा के टोरंटो में आज भारतीय कारोबारी समुदाय के प्रमुख सदस्यों को संबोधित करते हुए श्रीमती सीतारामन ने यह बात कही।
2: भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। भारत में हो रहा बदलाव केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है बल्कि एक व्यापक और संरचनात्मक परिवर्तन है। तेजी से हो रहा शहरीकरण, बढ़ता मध्यम वर्ग और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचा अर्थव्यवस्था के लगभग हर क्षेत्र में नए अवसर पैदा कर रहे हैं।
1: वित्त मंत्री ने कहा कि देश के डिजिटल बुनियादी ढांचे ने वित्तीय और वाणिज्यिक सेवाओं तक पहुंच का दायरा बढ़ाया है। भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी के बढ़ते महत्व का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि कनाडा में भारतीय प्रवासी दोनों देशों के बीच एक रणनीतिक सेतु हैं।
2: भारत और कनाडा के द्विपक्षीय संबंधों में हाल के समय में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इन संबंधों को हमारे साझा लोकतांत्रिक और बहुलतावादी मूल्यों, बढ़ते आर्थिक सहयोग और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क ने मजबूत किया है।
1: श्रीमती सीतारामन ने जून 2025 में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नए सिरे से मजबूत करने को लेकर बनी सहमति का उल्लेख करते हुए कहा कि दोनों देशों ने भविष्य केंद्रित रणनीतिक साझेदारी को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। श्रीमती सीतारामन 4 दिवसीय यात्रा पर कल टोरंटो पहुंची। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि जापान के शीर्ष कारोबारी और वित्तीय क्षेत्र के प्रमुखों से व्यापार, मोबिलिटी, औद्योगिक, बैंकिंग और बीमा क्षेत्रों में भारत में निवेश बढ़ाने और मौजूद कारोबारी अवसरों के बारे में चर्चा की गई। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि जापान यात्रा के दौरान भारत की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता का लाभ उठाने और देश की भूमिका को वैश्विक निर्यात केंद्र के रूप में मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। भारत ने इस बात पर भी जोर दिया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तत्काल प्राथमिकता मौजूदा संघर्षों के मानवीय परिणामों को कम करने के लिए कदम उठाना होना चाहिए। जन संकट, वैश्विक और स्थानीय खाद्य संकटों को कम करने में सुरक्षा परिषद की भूमिका शीर्षक से सुरक्षा परिषद की खुली बहस को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सुरक्षित, त्वरित और निर्बाध मानवीय सहायता पहुंच के साथ प्रभावी संघर्ष निवारण व्यवस्थाओं के समर्थन का आह्वान किया।
3: खाद्य असुरक्षा सशस्त्र संघर्षों के सबसे गंभीर मानवीय परिणामों में से एक है। आज के संघर्षों का असर केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके दूरगामी प्रभाव पूरी दुनिया में देखने को मिल रहे हैं। ऊर्जा बाजारों, उर्वरक आपूर्ति, समुद्री परिवहन, मानवीय सहायता की व्यवस्था और कृषि व्यापार में होने वाले व्यवधानों से स्पष्ट है कि किसी क्षेत्रीय संघर्ष से वैश्विक खाद्य सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है।
1: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत माय भारत द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम देशभर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। ये खेल युवा नेतृत्व, नागरिक जिम्मेदारी, स्वयं सेवा, फिटनेस और राष्ट्र निर्माण को एक साझा मंच प्रदान करेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि देश की प्रगति के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है। नई दिल्ली में दिल्ली लक्ष्मी योजना के स्वीकृति पत्र सौंपते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि योजना के शुभारंभ के बाद से 9,22,000 से अधिक महिलाओं ने इसके लिए पंजीकरण कराया है।
4: 1 अगस्त से लेकर के आज तक 9,22,000 बहनों ने इस योजना में अपना नाम रजिस्टर किया। इस दिल्ली लक्ष्मी योजना में पहली 2,500 बहनों को हमने अप्रूवल सर्टिफिकेट सौंपा है, क्योंकि ये पहली 2,500 बहनें हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है।
1: श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये वित्तीय सहायता महिलाओं को बच्चों की देखभाल और शिक्षा, घरेलू आवश्यकताओं और आजीविका तथा व्यवसायिक गतिविधियों में सहायता जैसी महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकती है। भारतीय चिकित्सा संघ आईएमए ने इन्फ्लुएंजा ए के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। आईएमए H1N1 का कहना है कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसीलिए घबराने की कोई बात नहीं है। आईएमए ने लोगों को फ्लू के लक्षणों के लिए डॉक्टर की पर्ची के बिना एंटीबायोटिक्स न लेने की सलाह दी है। आईएमए ने विशेष रूप से एजिथ्रोमाइसिन, एमिक्सिलिन, क्लूवेंटनेट और सेफिक्साइमिम जैसी एंटीबायोटिक्स नहीं लेने की चेतावनी दी है। आईएमए ने बताया है कि H1N1 में आमतौर पर अचानक तेज बुखार और ठंड लगना, लगातार सूखी खांसी, गले में खराश, मांसपेशियों में तेज दर्द और थकान जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। अन्य लक्षणों में सिरदर्द, नाक बहना या बंद होना, मतली, उल्टी और दस्त शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी UGC नेट, CSIR नेट तथा ICAR, AIEEPG और AICE PhD 2026 परीक्षा के अंतिम उत्तर कुंजी और परिणाम इस सप्ताह जारी करेगी। एजेंसी ने बताया है कि परिणाम और अंतिम उत्तर कुंजी उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करने को कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और उसके वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के लिए महिला सशक्तिकरण केवल चुनावी नारा है। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा नेता बांसुरी स्वराज ने कहा कि केंद्र सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने इस विधेयक का विरोध किया और सदन में इसके पारित होने में बाधा डाली। उन्होंने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की कांग्रेस शासित सरकारों में महिला मंत्रियों की अनुपस्थिति को लेकर राहुल गांधी से सवाल किया। आकाशवाणी कोलकाता ने आज प्रसारण के 100वें वर्ष में प्रवेश किया है। आकाशवाणी कोलकाता की शताब्दी यात्रा का ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: आकाशवाणी कलकत्ता ने आज अपना शताब्दी वर्ष में प्रवेश किया है, जो बंगाल में प्रसारण की इतिहास का एक महत्वपूर्ण पर्व है। केंद्र ने 26 अगस्त 1927 को अपना पहले बंगाल प्रसारण शुरू किया था। पिछले 100 वर्षों में आकाशवाणी कलकत्ता बंगाल के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। समाचार, संगीत, साहित्य, नाटक, शिक्षा और जनसेवा कार्यक्रम के माध्यम से इसने कई पीढ़ियों के श्रोताओं को जोड़ा और ज्ञान चर्चा को दिशा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रसार भारती के अधीन ये केंद्र आज

0: आधुनिक माध्यमों के जरिए श्रोताओं तक पहुंचने के साथ साथ अपनी समृद्ध विरासत को भी संरक्षित कर रहा है। संदीपन दासगुप्ता के साथ अभिरूप भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, कलकत्ता।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दुनिया भर में रह रहे केरलम वासी आज तिरुओणम का पर्व मना रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: तिरुओणम के अवसर पर पारंपरिक पुष्प सज्जा ओण पुक्कलम से उत्सव की शुरुआत हुई। इसे पौराणिक राजा महाबली के स्वागत के लिए मनाया जाता है। फसल का यह प्रमुख पर्व सभी केरल वासियों द्वारा उत्सव के साथ मनाया जाता है। सबरीमाला, अरुणमुला और गुरुवायूर सहित राज्य के विभिन्न मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। पारंपरिक केरल भोज ओण साद्या भी तिरुओणम के प्रमुख आकर्षणों में शामिल है। आज राज्य भर में आधिकारिक आयोजनों सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम और पारंपरिक खेल आयोजित किए जाएंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: वहीं पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलादुन नबी आज देश के विभिन्न भागों में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में आज पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं पर मिलाद महफिलें और सीरत सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर मिलाद जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। इसके लिए जगह जगह सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। आकाशवाणी समाचार के पूर्व समाचार वाचक पंचदेव पांडे का आज निधन हो गया। उन्होंने 1963 में आकाशवाणी वाराणसी से उद्घोषक के रूप में अपने सफर की शुरुआत की थी। उन्होंने 1983 से 1997 तक आकाशवाणी दिल्ली में समाचार वाचक के रूप में अपनी सेवाएं दीं। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो दिन के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश का अनुमान है। वहीं उत्तराखंड, पूर्वोत्तर राजस्थान, आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में शनिवार तक तेज हवाएं चल सकती हैं। विभाग ने अगले सप्ताह देश में बारिश कम होने की संभावना जताई है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में कल आमतौर पर बादल छाये रहने और हल्की बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में हुई बारिश के बाद महानदी का जलस्तर बढ़ने से ओडिशा में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: ओडिशा में ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में बारिश के बाद कटक के मुंडली में लगभग 6,70,000 क्यूसेक पानी पहुंचा, जिससे महानदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका है। बाढ़ का पानी आरड़ी, सुंदरपुर, नंदापुर और उलग पंचायत को प्रभावित कर रहा है। 6 जिलों में 1,00,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं। अधिकारी नदियों के जलस्तर और संवेदनशील इलाकों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। IMD ने आज ओडिशा के लिए बारिश की कोई चेतावनी जारी नहीं की है, लेकिन कल भारी बारिश का अनुमान जताया है। प्रकाश आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: उधर उत्तरी नेपाल में आज सुबह अचानक आई भीषण बाढ़ ने सीमावर्ती बस्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया है और निचले इलाकों के कई जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बाढ़ सुबह तिब्बत की दिशा से आती हुई भोटे कोशी नदी में उमड़ी। नेपाल की सेना ने एक बयान में कहा कि पानी के अचानक बढ़ने से रसुवा जिले के तिरुमुरे और पास के सियाफुरुबेसी इलाके में भारी तबाही हुई है। भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT और नेटफ्लिक्स ने कहानी कहने वालों की अगली पीढ़ी को समर्थन देने के लिए 100 भारतीय विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा की है। इस छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को 6 व्यावसायिक कार्यक्रमों में 80% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिनमें 1 वर्षीय 2 डिप्लोमा कार्यक्रम और 6 माह के 4 प्रमाण पत्र कार्यक्रम शामिल हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव और IICT बोर्ड के अध्यक्ष चंचल कुमार ने कहा कि भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस वर्ष अगस्त में नेटफ्लिक्स के सहायक मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सारंडोस के साथ हुई बैठक के बाद की गई है। भारत ने अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों में सैनिकों के लिए स्वदेशी पैराशूट तकनीक में बड़ी सफलता हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की आगरा स्थित ADRDE द्वारा डिजाइन और विकसित मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम का लद्दाख के न्योमा के मुद ड्रॉप जोन में सफल परीक्षण किया गया। ये दुनिया के सबसे ऊंचे ड्रॉप जोन में शामिल है। इस दौरान प्रशिक्षित जम्परों ने शून्य से नीचे करीब 15 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 22,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई। कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे और अंतिम मुकाबले के चौथे दिन का खेल जारी है। फॉलो ऑन मिलने के बाद श्रीलंका ने दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 3 विकेट पर 185 रन बना लिए हैं।

0: पहले श्रीलंका की टीम पहली पारी में आज 290 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी 503 बनाकर घोषित की थी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कनाडा के टोरंटो में भारतीय व्यापारी समुदाय को संबोधित किया। कहा, भारत का परिवर्तन संरचनात्मक है जो तीव्र शहरीकरण और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचे से प्रेरित है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया। 2500 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे। भारतीय चिकित्सा संघ ने देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा के प्रसार को लेकर परामर्श जारी किया। कहा, घबराने की जरूरत नहीं, सतर्कता बरतने पर दिया जोर। ओणम का त्यौहार पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलादुन नबी धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले दो दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना। और क्रिकेट में भारत ने कोलंबो टेस्ट मैच में श्रीलंका को फॉलो ऑन खेलने के लिए कहा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। ये प्रस्तुत है प्रोग्राम एक ही कलाकार, और इस प्रोग्राम में मैं हूं आपके साथ इस प्रोग्राम की होस्ट विजेता चतुर्वेदी। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा के उस निर्देशक के जिन्होंने दर्शकों को हंसाया, मनोरंजन को अपनी पहचान बनाया और बॉलीवुड की कॉमेडी फिल्मों को एक अलग अंदाज दिया। उनकी फिल्मों में होता था तो गलत फहमियां, दोहरे किरदार और मजेदार सिचुएशंस, साथ में होते थे कुछ रंग बिरंगे गाने, सबसे बढ़कर दर्शकों को हंसाने की अद्भुत क्षमता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डेविड धवन की। राजेंद्र धवन के नाम से जन्मे डेविड धवन हिंदी सिनेमा के उन सफल निर्देशकों में शामिल हैं जिनका फिल्मी करियर कई दशकों तक फैला रहा। 16 अगस्त 1955 को अगरतला के त्रिपुरा में पैदा हुए। निर्देशन में आने से पहले उन्होंने फिल्म एडिटिंग में काम किया और संपादन को समझा, और आगे चलकर उनकी फिल्मों की तेज गति और कॉमिक टाइमिंग में भी दिखाई दी। तो आइए डेविड धवन की जिंदगी और फिल्मों की इस मजेदार यात्रा पर चलते हैं।

श्रोताओं, डेविड धवन एक ऐसे परिवार से आते हैं जिसका सिनेमा से पुराना रिश्ता रहा है। उनके भाई अनिल धवन भी अभिनेता रहे हैं। डेविड धवन ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म एडिटर के रूप में की थी। एडिटिंग के बाद उनका रुझान निर्देशन की ओर बढ़ा और ये वही दौर था जब हिंदी सिनेमा में बड़े सितारे, बड़ी कहानियां और बड़े मनोरंजन का समय था। हिंदी सिनेमा के मशहूर फिल्म निर्देशक हैं जिन्हें मुख्य रूप से उनकी कॉमेडी के रूप ने उनको पहचान दिलाई और इसलिए उनको किंग ऑफ कॉमेडी भी कहा जाता है। अपने निर्देशन की शुरुआत 1989 में उन्होंने की थी। फिल्म का नाम था ताकतवर। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड को कई सुपरहिट और मनोरंजक फिल्में दी। मुख्य फिल्में और जो डेविड धवन ने अपने लंबे करियर में 45 से ज्यादा फिल्मों का निर्देशन किया और उनकी अधिकांश फिल्मों में गोविंदा, अनिल कपूर, सलमान खान जैसे दिग्गज अभिनेताओं के साथ उनकी कॉमेडी की जुगलबंदी ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। उनकी कुछ सबसे लोकप्रिय और यादगार फिल्में जो रही हैं वो डेविड धवन के में ज्यादातर जो है वो गोविंदा के साथ रही हैं और जहां पर जो ज्यादातर टाइटल दिया गया है वो नंबर वन दिया गया है। तो इस तरह से डेविड धवन एक कॉमेडी का अगर बोला जाए कि एक नाम है तो ये कहना गलत नहीं होगा।

హలో 9821026212BPL. అరే 9820026235 మ్యాచ్ టచ్ చెక్.

0: is your gully number? What is your road number?
1: What is your style number? What is your dial number?
0: What is your ghanta number?
2: आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम एक ही कलाकार, और इस प्रोग्राम में आज हम बात कर रहे हैं बेहतरीन निर्देशक डेविड धवन की। और इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ इस कार्यक्रम की होस्ट विजेता चतुर्वेदी, और बात हो रही है उनके फिल्मी करियर की। 1992 में आई शोला शबनम ने उनकी इस शैली को और भी ज्यादा मजबूत किया। शैली मतलब कि जो उनका जॉनर था, जो कॉमेडी वो अपनी फिल्म में दिखाया करते थे। इसके बाद 1993 में आई आंखें, जिसमें कॉमेडी, गलत फहमियां, दोहरे किरदार जैसी बातें दर्शकों को खूब पसंद आई। 1994 में आई राजाबाबू, और ये फिल्म आज भी गोविंदा और डेविड धवन की लोकप्रिय फिल्मों में गिनी जाती है। 95 में फिर उसके बाद कुली नंबर वन, गोविंदा और करिश्मा कपूर की इस फिल्म ने मनोरंजन का ऐसा फॉर्मूला तैयार किया जहां पर कॉमेडी के साथ गाने, फैमिली ड्रामा, ये सभी चीजें फिल्मों में एक साथ चला करती थी। डेविड धवन ने दर्शकों को समझ लिया था, और वो जानते थे कि आम दर्शक फिल्म देखने आते हैं, वो मनोरंजन चाहते हैं, हंसी चाहते हैं, गाना चाहते हैं, और ऐसे किरदार चाहते हैं जिन्हें वो याद रख सकें। इसी वजह से उनकी फिल्में कई बार रियलिटी से हटकर थोड़ा मनोरंजन को प्रेफरेंस देने वाली बन जाया करती थी। उनकी फिल्मों का एक खास अंदाज था कि एक साधारण सी परिस्थिति को धीरे धीरे इतनी बड़ी कॉमिक उलझन में बदल देते थे कि दर्शक हंसते हंसते कहानी के साथ बहते चले जाते थे। डेविड धवन की फिल्मोग्राफी में सलमान खान के साथ जुड़वा, बीवी नंबर वन, चल मेरे भाई, दुल्हन हम ले जाएंगे

मुझसे शादी करोगी और मैंने प्यार क्यों किया जैसी चर्चित फिल्में शामिल हैं। जब 2000 का दशक आया तो हिंदी सिनेमा बदल रहा था, दर्शकों की पसंद भी बदल रही थी, नई पीढ़ी के सितारे सामने आ रहे थे, लेकिन डेविड धवन ने अपनी मूल पहचान नहीं छोड़ी जो थी कॉमेडी और मनोरंजन। डेविड धवन के निजी जीवन की बात करें तो उनके दो बेटे हैं रोहित धवन और वरुण धवन। रोहित भी फिल्म निर्देशक हैं जबकि वरुण हिंदी फिल्मों के लोकप्रिय अभिनेताओं में शामिल हैं। डेविड धवन ने वरुण धवन के साथ भी बहुत सारी फिल्में बनाई हैं, मैं तेरा हीरो, जुड़वा नंबर टू, कुरी नंबर वन और 2026 की फिल्म है जवानी है तो इश्क होना ही है। डेविड धवन ने एक बार ये भी कहा था कि कैमरे के पीछे उनके लिए वरुण उनके बेटे नहीं बल्कि एक अभिनेता है और यही उनके काम का परिणाम है।

और हमारे श्रोता भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और न सिर्फ सुन रहे हैं बल्कि अपनी प्रतिक्रियाएं भी हम तक पहुंचा रहे हैं। तो चलिए अपने श्रोताओं के मेल्स की तरफ भी रुख कर लेते हैं। और सबसे पहला संदेश हमारे पास आया है तुलसी मस्कीन जी का। लिखते हैं, विजेता चतुर्वेदी जी नमस्कार, एक ही कलाकार में आज डेविड धवन जी को याद किया जा रहा है। नाइस सॉन्ग से आगाज। और ये लिखते हैं, बिहारी कॉलोनी शहादरा दिल्ली से, साथ में हैं वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, डब्बू सम्राट, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान। और अगला संदेश है वडिंग खेड़ा से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा का, फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव संबलपुर कांकेर से जुड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, पूजा वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी जी जुड़ती हैं। लिख रहे हैं, एक ही कलाकार प्रोग्राम में आज हिंदी फिल्म के कॉमेडी किंग निर्देशक डेविड धवन जी के फिल्मों के बारे में अच्छी जानकारी सुनने को मिल रही है। पहाड़गंज मुल्तानी ढाणा से जुड़ रहे हैं अनिल मोहन, ऊषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक। अगला संदेश है राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी का, गांव फरासी, जिला हिसार से। संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल सहानी, पिंगावाला चौक, गोराया, जालंधर से जुड़ रहे हैं। और अगला संदेश हमारे पास आया है वीरम गांव गुजरात से, अजीत भवसार, प्रमिला भवसार, भावेश कुमार और उनके सभी परिवारी जन। फारूक अली खान भी कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। और संदीप मक्कड़, ये दोबारा से हमारे पास संदेश आ गया है, तो कृपया एक बार शामिल होने के बाद अब दोबारा ना भेजें। छत्तीसगढ़ चुड़ी लाइन मुंगेली से हमारे श्रोता जुड़ रहे हैं, मोहम्मद इसहा, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर फातिमा। लिखते हैं, आप जानकारी और गीत सुनकर बहुत ही मजा आया, कार्यक्रम में प्रस्तुति का अंदाज भी बेहद सटीक और शानदार है। तो वही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे कार्यक्रमों को आप सुन रहे हैं। और ये संदेश है हमारे पास दुर्गोई सेलू से, चंदू कुलकर्णी, हेमलता और सी आर कुलकर्णी जी का। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा, ईशान चीपा और पूजा परिहार जुड़ रहे हैं। लिखते हैं, आज आप एक ही कलाकार के अंतर्गत बेहतरीन निर्माता निर्देशक धवन साहब के बारे में बेहतरीन रोचक किस्से और नगमे सुनवा रही हैं। तो भाई, कार्यक्रम से जुड़े रहिए और सुनते रहिए हमारे इस कार्यक्रम को। अगला संदेश भी ले लेते हैं, सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी जुड़ रहे हैं शांति नगर सोनीपत से। और शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल, शिवांश, संगीता, लिपि, दीपाली भी जुड़ रहे हैं इस कार्यक्रम में। चाईबासा झारखंड से, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से, पी एस नुहाकर, निर्मला और विशाल जुड़ रहे हैं। अगला संदेश अनिल मोहन जी का है, ईद ए मिलाद उल नबी की दिली मुबारकबाद। तो भाई, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, राजकुमार बुडाना, सुदामा नगर खंडवा से, लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु और मुकेश जगताप। तो ये थे हमारे श्रोताओं के प्यारे प्यारे से संदेश। और इन्हीं प्यारे से संदेशों के बाद अब एक और गीत सुन लेते हैं।

श्रोताओं, डेविड धवन की फिल्मों पर आलोचना भी बहुत हुई। कुछ लोगों ने उनके सिनेमा को बहुत हल्का कहा तो कुछ ने उनकी कॉमेडी को बहुत ज्यादा लाउड कहा। लेकिन सिनेमा के इतिहास में किसी निर्देशक को समझने के लिए सिर्फ आलोचना नहीं बल्कि उसके दर्शकों पर पड़ने वाले प्रभाव को जरूर देखना होता है। डेविड धवन की सबसे बड़ी ताकत थी मनोरंजन। वो शायद ऐसी फिल्में बनाने के लिए याद किए जाते हैं जिनके बारे में दर्शक कह सकें, चलो कुछ देर के लिए जिंदगी की परेशानियों को भूलकर हंसते हैं। उनकी फिल्मों ने कई पीढ़ियों को हंसाया। गोविंदा के साथ उनकी जोड़ी ने एक दौर की कॉमेडी को परिभाषित किया। सलमान खान, वरुण धवन जैसे सितारों के साथ उन्होंने अलग अलग पीढ़ियों के लिए मनोरंजन किया। डेविड धवन को अपने लंबे करियर के लिए बहुत सारे मंचों पर सम्मान मिला और 2024 में उन्हें फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी प्रदान किया गया। ये सम्मान केवल एक निर्देशक को नहीं दिया गया, ये उस लंबे सफर की पहचान थी जिसमें उन्होंने दशकों तक मुख्य धारा के हिंदी सिनेमा को मनोरंजन से जोड़े रखा। राजेंद्र धवन से डेविड धवन बनने तक का यह सफर एक ऐसे फिल्मकार का सफर है जिसने कैमरे के पीछे खड़े होकर कई दशकों तक दर्शकों को गुदगुदाया। गोविंदा के साथ उनकी यादगार साझेदारी हो, सलमान खान के साथ उनके साथ सफल फिल्में हो, या फिर बेटे वरुण धवन के साथ नई पीढ़ी के लिए फिल्में बनाना हो। और शायद यही किसी भी फिल्मकार की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है कि उसका काम समय बीतने के साथ भी दर्शकों की यादों में जिंदा रहे।

0: पीएम वेव 1071 किलोहर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और डीडी फ्री डिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। 3:05 हुए हैं, अब खबरें नशर होंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप नीतिका त्यागी से खबरें सुनिए। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कनाडा के टोरंटो में भारतीय कारोबारी बिरादरी के सरकर्ता अरकान से खिताब किया। उन्होंने कहा कि भारत की अक्सर तब्दीली ढांचा जाती शहरों के तेजी से फरोख और आलमी मेयार के डिजिटल बुनियादी ढांचे पर मबनी है। भारतीय तिब्बी एसोसिएशन ने मुल्क में H1N1 इन्फ्लुएंजा के फैलने के सिलसिले में सेहत-ए-आम्मा से मुतालिक एडवाइजरी जारी की है। उसने कहा है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ चौकन्ने रहें। ओणम का त्यौहार रिवायती जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। हजरत मोहम्मद का यौम पैदाइश ईद मिलादुन नबी मजहबी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। आइंदा दो रोज के दौरान मशरकी और शिमाल मशरकी रियासतों में शदीद बारिश जारी रहने का इम्कान है। और क्रिकेट में कोलंबो टेस्ट मैच में भारत ने श्रीलंका को फॉलो ऑन कराया है। अब खबरें तफसील से। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा तेज रफ्तारी के साथ तरक्की करने वाली एक अहम मईशत है और मुल्क में लगातार तरक्की, नौजवान आबादी, खपत में बढ़ोतरी और तेजी से फरोग पाते हुए सरमाया बाजार मौजूद हैं। उन्होंने ये बात आज टोरंटो में भारत के कारोबारी तबके के सरकर्दा अरकान से खिताब करते हुए कही। मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि भारत में शहरों के तेजी से फरोग, मुतवसित तबके की तरक्की और आलमी मेयार के डिजिटल बुनियादी ढांचे के नतीजे में अक्सर कायापलट हुई है। उन्होंने कहा कि इस तरह के हालात से मईशत के लगभग हर तबके के लिए नित नए मौके पैदा हो रहे हैं। भारत और कनाडा के दरमियान बढ़ती हुई इक्तिसादी शराकतदारी की अहमियत को उजागर करते हुए मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि कनाडा में मौजूद भारतीय बाशिंदे दोनों मुल्कों के दरमियान एक कलीदी पुल के तौर पर काम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खेलो इंडिया डायलॉग से खिताब करेंगे। मस्कुरा प्रोग्राम को खेलों के कौमी दिन 2026 के जश्न के हिस्से के तौर पर मेरा युवा भारत माई भारत की जानिब से मुनक्किद किया जा रहा है। ये प्रोग्राम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के हर एक जिले में दो कॉलेजों में नौजवानों की शमूलियत के साथ मुल्क भर में मुनक्किद किया जाएगा। इसमें खेलों, नौजवान लीडरशिप, समाजी जिम्मेदारी, रजाकाराना खिदमात, फिटनेस और मुल्क की तामीर को एक मुश्तरक प्लेटफॉर्म पर एक साथ लाया जाएगा, जिससे नौजवानों को मुल्क के खेलों से मुतालिक उमंगों में अमली तौर पर शामिल होने का मौका मिलेगा और इस बात को यकीनी बनाया जा सकेगा कि नौजवानों के ख्यालात और नुक्ताए नजर को भारत के नौजवानों और खेलों से मुतालिक इको निजाम के ताल्लुक से जारी बातचीत का एक हिस्सा बनाया जा सके। प्रोग्राम में नौजवान बाएं भारत रजाकार, मकामी खिलाड़ी और अवामी नुमाइंदे शिरकत करेंगे। इस पहल के नुमाया हिस्से के तौर पर खेलों में दिलचस्पी रखने वाले नौजवान सरकर्दा भारतीय खिलाड़ियों और तमगा जीतने वाले खिलाड़ियों से बातचीत करेंगे। इस प्रोग्राम का एक मरकजी खसूसियत युवा संवाद होगा, जिसमें नौजवान शुरका को उनके ख्याल, नुकताए नजर और उमंगों पर बात करने के लिए मदद किया जाएगा। इसका इनेकाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी के एक फिट नज्म व जब्त पर मबनी और खेलों को फरोग देने वाले मुल्क के नजरिए से मुताबिकत रखता है, जिससे नौजवानों की उमंगों को तरक्की के एजेंडे में मरकजी हैसियत हासिल होगी। भारत की मेडिकल एसोसिएशन ने अवाम पर जोर दिया है कि वो H1N1 इन्फ्लुएंजा के फैलने के बारे में होशियार और चौकस रहें। उसने ये भी कहा है कि मौसम की वजह से ये बीमारी बढ़ रही है और इससे मुतासर ज्यादातर लोगों में ये एक हद तक रहता है और ये मामूली किस्म का होता है। उसने लोगों को मशवरा दिया है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेडिकल एसोसिएशन ने यह भी कहा है कि ये H1N1 एक वायरल इन्फेक्शन है और एंटीबायोटिक से इसके जरासीम खत्म नहीं होते। मेडिकल एसोसिएशन ने यह भी कहा है कि जब कोई अहल मेडिकल पेशेवर शख्स तजवीज करे तभी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। भारत ने पुरजोर अल्फाज में कहा है कि अक्वामे मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की फौरी तरजीह इंसानियत को दरपेश मसाइल को दूर करने के इकदामात होने चाहिए, जिसका उन्हें लड़ाई की वजह से सामना करना पड़ रहा है। अक्वामे मुत्तहिदा ने भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे

हरीश ने सलामती काउंसिल में इस सिलसिले में एक खुली बहस में इजहार ख्याल करते हुए ये बात कही। उन्होंने बिला रुकावट इंसानी रिसाई, महफूज और लड़ाई झगड़ों से पाक मुअसर इंतजाम की जरूरत को उजागर किया। उन्होंने सलामती काउंसिल पर जोर दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि उसके इकदाम में ऐसी पाबंदियां शामिल होनी चाहिए जिनसे इंसानी बुनियाद पर दी जाने वाली इमदाद में दानिस्ता तौर पर रुकावट न पड़े और जायज सरई तजारत और खुराक की फराहमी जारी रहनी चाहिए। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। दुनियाभर में केरलम के बाशिंदे तिरु ओनम मना रहे हैं, जो ओनम का सबसे पवित्र दिन है। हमारे नामा निकार ने खबर दी है कि तिरु ओनम तकरीबात का आगाज ओना पुक्कलम से हुआ, जो बादशाह महाबली के खैर मकदम के लिए फूलों का एक रवायती कालीन है। फसल की कटाई का ये त्यौहार केरलम के लोग जातो मजहब से कतई नजर मना रहे हैं। मंदिरों में खसूसी पूजा अर्चना का एहतमाम किया जा रहा है, जिनमें सबरीमला, अरनमुला और गुरुवयूर शामिल हैं। आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश ईद मिलाद उन नबी भी मजहबी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर मिलाद महफिलों और सीरत नबवी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें पैगम्बर मोहम्मद की हयात तैयबा को उजागर किया जा रहा है। ईद मिलाद उन नबी के मौके पर जुलूस भी निकाले जा रहे हैं, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर सीपी राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने ओनम और ईद मिलाद उन नबी के मौके पर लोगों को मुबारकबाद पेश की है। ओमान के वजीर खारजा बद्र अल बुसईदी ने कल तेहरान में ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराकची के साथ बातचीत की है। दोनों वजराए खारजा ने अब नए हुरमुज से बहरी जहाजों की आमदोरफ्त को मरहलेवार तरीके पर चलाने पर बातचीत की। ईरान लड़ाई शुरू होने के बाद से लगभग छह महीने से अब नए हुरमुज का रास्ता बंद पड़ा हुआ है। दोनों मुल्कों की तरफ से जारी किए गए एक मुश्तरका बयान में कहा गया है कि मुजवजा तरीकाकार में मुश्तरका आरजी बहरी आबी गुजरगाह और गुजरगाह से बारूदी सुरंगों को साफ करने की कोशिशें शामिल हैं। मुश्तरका बयान में यह भी कहा गया है कि ईरान और ओमान अपनी तकनीकी नौयत की गुफ्तगू जारी रखेंगे, जिसका मकसद एक मुस्तकिल जहाज रानी का रास्ता बनाना है और आबनाए हुरमुज के मुस्तकबिल के बंदोबस्त के बारे में कोई समझौता तय करना है। इस दौरान ईरान के नायब वजीर खारजा ने सरकारी टेलीविजन को बताया है कि दोनों मुल्कों के दरमियान आरजी रास्ते पर मुफाहमत हो गई है। यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर जेलेंस्की ने यूक्रेन के आवाम को यौम आजादी की मुबारकबाद देने के लिए भारत और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का शुक्रिया अदा किया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने यूक्रेन के आवाम को 35वें यौम आजादी पर मुबारकबाद दी थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जेलेंस्की ने अमन के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार करने पर सदर मुर्मू का शुक्रिया अदा किया है। इसके भेदभाव को खत्म करने से मुतालिक अक्वामे मुत्तहिदा कमेटी की रिपोर्ट में दिए गए हवालों को भारत ने मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि ये इंतहाई शरंगेज हैं, नीज इनके पीछे सियासी मकासद कार फरमा है। नस्ली तासुब को खत्म करने से मुतालिक बैनुल अक्वामी कन्वेंशन के 11वें जायजे की आलमी इदारे की इस रिपोर्ट के बारे में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए वजारत खारिजा के तर्जुमान ने कहा कि भारत ने इस कमेटी की मीटिंग में तामीरी जज्बे से शिरकत की थी। उन्होंने यह भी कहा कि साल 1960 में इस कमेटी का मुसवदा बनाने और इसकी तैयारी में भारत ने कायदाना रोल अदा किया था और भारत नस्ली भेदभाव और तासुब के खिलाफ जदोजहद में गैर मुतजल यकीन रखता है। उन्होंने मजीद कहा कि बैन वजारती वफ्त ने बेबुनियाद इल्जामात या कन्वेंशन के दायरा इख्तियार से बाहर के रुझानात को जायजा मीटिंग में पहले ही मुस्तरद कर दिया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने अगले दो रोज के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, मशरकी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, जैली हिमालयी मगरबी बंगाल और शिमाल मशरकी रियासतों में शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। मर्दों के क्रिकेट में कोलंबो टेस्ट मैच में अब से कुछ देर पहले तक श्रीलंका ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 3 विकेट पर 195 रन बना लिए थे। भारत ने पहली इनिंग्स में श्रीलंका को 290 रन पर ऑल आउट करने के बाद फॉलो ऑन कराया था। और अब आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कनाडा के टोरंटो में भारतीय कारोबारी बिरादरी के सरकर्ता अरकान से खिताब किया। उन्होंने कहा कि भारत की अक्सर तब्दीली ढांचा जाति शहरों के तेजी से फरोख और आलमी मियार के डिजिटल बुनियादी ढांचे पर मबनी है।
भारतीय तिब्बी एसोसिएशन ने मुल्क में H1N1 इन्फ्लुएंजा के फैलने के सिलसिले में सेहत आमा से मुतालिक एडवाइजरी

0: जानकारी की है। उसने कहा है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ चौकन्ने रहें। ओणम का त्यौहार रिवायती जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। हजरत मोहम्मद का योम पैदाइश ईद मिलाद उन नबी मजहबी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। आइंदा दो रोज के दौरान मशरकी और शिमाल मशरकी रियासतों में शदीद बारिश जारी रहने का इम्कान है। और क्रिकेट में कोलंबो टेस्ट मैच में भारत ने श्रीलंका को फॉलो ऑन कराया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हम आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 1,071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और डीडी फ्री डिश पर। पेश खिदमत है फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। तमाम सामाइन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखलूस आदाब और ईद मिलाद उन नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद।

0: दबा पर दब कभी घबरा के।
1: सारे पाकिस्तान फिल्म कलर में आप सुन रहे थे मोहन अड्डे की आवाज में, मुस्कुरा थी सुरेश तलवार। और सामने लीजिए अब सुनिए प्रोग्राम की आखिरी पेशकश नेक परवीन फिल्म का नगमा अनुराधा की आवाज में, जिसे मौसीकी सजाया है इकबाल कुरैशी।

0: समझाया कि हम ये पैदा हुए हैं, हमारी बुजुर्गों की जमीन है और ये हमारा वतन है और हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे अतराफ के अजला जो है उन तक ये असर पहुंचे, फिर उसके बाद और अतराफ के इलाकों में, अलीगढ़ और पूरे मगरबी उत्तर प्रदेश के इलाके में ये बात फैली। तो आपके इल्म में है ये बात?
1: हाँ, मैं देखिए इतनी बात तो सारी दुनिया को मालूम है कि मुसलमानों में उस दौर में जब लीग और कांग्रेस का दौर था उसमें दो तबके बन गए थे। एक तबका वो था कि जो मुस्लिम लीग से वाबस्तगी इख्तियार कर लिया कर चुका था, और एक तबका वो था कि जो कांग्रेस के साथ वाबस्ता था। तो दो कौमी नजरिए की बुनियाद चूंकि मुस्लिम लीग ने डाली थी
0: जी,
1: तो इसलिए उन्होंने उनके जहन को उसी अंदाज में तरबियत दी और ढाला
0: जी।
1: तो वो तबका जो था उसकी भी अच्छी खासी तादाद थी ऐसे लोगों की। दूसरी तरफ जो कांग्रेसी से वाबस्ता उलमा थे वो सब दो कौमी नजरिए के इंतहाई शदीद तौर पर मुखालिफ थे।
0: बेशक बेशक
1: बाद हजरात ने हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक भी कहा कि वो पाकिस्तान के हामियों में थे, लेकिन मैंने हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की किताबें और उनकी तहकीकात वगैरह से जो उनका ताल्लुक यानी बेताल्लुक ही रही उसके मुतालिक काफी पढ़ा मैंने, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह उस दो कौमी नजरिए के हामी थे। उनका तो उसूल ये था कि सियासियात से उलमा को अलग और किनारा कशी रहना चाहिए। तो बहरहाल उस हमारे इलाके में भी सूरत हाल यही थी, चूंकि वो इलाका ऐसा है दारुलूम की वजह से कि कुर्ब जवार के देहात और कस्बात जो हैं उसमें मुसलमानों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। तो उनमें भी दो ग्रुप बने हुए थे उस जमाने में, एक जो मुस्लिम लीग ही कहलाता था और एक कांग्रेसी, बल्कि घर घर के अंदर इस तरह से था कि कुछ अफराद कांग्रेस से वाबस्ता हैं, कुछ जैसे हमारे यहाँ भी मेरे बहनोई थे मौलाना हामिदुल अंसारी गाजी बम्बई में
0: जी।
1: वो कांग्रेस से वाबस्ता थे और उन्होंने सहाफी लाइन के आदमी थे चूंकि, तो इस एतबार से भी और अपने आर्टिकल के जरिए से भी मुसलमानों को बहुत ज्यादा
0: जी
1: इस तरह मुतवज्जे किया कि ये दो कौमी नजरिया बिल्कुल गलत है और मुसलमानों के लिए
0: बेशक जी।
1: जबकि दूसरे हमारे बहनोई वो वाबस्ता रहे शुरू ही से मुस्लिम लीग के साथ और पाकिस्तान बनने के बाद वो उधर मुंतकिल
0: जी।
1: लेकिन उलमाए दारुलूम ने हमेशा जो गोया असल बुनियाद रखी वो ये कि हमारा ये वतन है और इसी खाक से हम उठे हैं और इसी के अंदर हमें जाना चाहिए
0: जी।
1: इस वास्ते तर्क वतन करना ये बिल्कुल किसी तरह दानिशमंदी की बात नहीं
0: जी।
1: वालिद साहब रहमतुल्लाह ने खानदान के उन अफराद को कि जिन्होंने तर्क वतन का इरादा किया गैर मामूली तौर पर रोका
0: जी,
1: बल्कि ये फरमाया करते थे कि मैंने ये महसूस किया कि उस जमाने में एक दौरे की सी कैफियत होती थी लोगों के ऊपर
0: जी,
1: जाना है हर हाल के अंदर, चाहे उनको कितना ही नशे व फराज समझा के रोकने की कोशिश की जाए
0: अगर
1: नहीं समझते
0: जी, जी, जी।
1: बहरहाल हमने तो जिस माहौल के अंदर परवरिश पाई है उसमें हमने ये देखा कि गिर्दोपेश में ज्यादातर अफराद वही हजरात थे कि जो दो कौमी नजरिए के खिलाफ थे, कांग्रेस से उनकी
0: वाबस्तगी
1: थी, चूंकि हमारा उठना बैठना दारुलूम में
0: था। हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के अलावा शाह अब्दुल कादिर रायपुरी उस इलाके में थे, उनके बड़े असरात थे रायपुर में। इधर शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद जकरिया, ये तीन लोग खास तौर से इसमें बहुत पेश पेश थे, जिनके असरात बहुत थे, और वो लोग जो घबराहट में कुछ और सुनने को तैयार नहीं थे, मासूम लोग, आम आदमी, एक रौ थी, उस बहाव को उन्होंने रोका और बहुत बड़ा कारनामा है ये उन लोगों का। एक चीज मौलाना, जो तहरीक आजादी और वतन की खिदमत के मामले में और वतन के सिलसिले में नजरियात के मामले में जो बहुत बड़ा कारनामा देवबंद का है, दारुलूम का और देवबंद के दबिस्तान का, दीन का जब दबिस्तान है ये, उसमें एक और चीज बहुत अहम है कि बिदत का मामला रहा, जैसे जैसे बोधे जमाना
1: जी जी
0: होता गया और बहुत सारी खराबियां माशरे में आती गई, उन खराबियों को दूर करने का बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया देवबंद ने। साथ साथ मैं ये समझता हूं, आप इसकी बेहतर वजाहत फरमाएंगे, कि देवबंद ने, दारुल उलूम ने तसव्वुफ की सही शक्ल को, जो एहसान और तज़किया नफ्स की शक्ल है, उसको की सही शक्ल को हमेशा पेश किया और किसी दूसरे अदारे में गालिबन इतनी पुख्तगी और

नमस्कार, आकाशवाणी वर्ल्ड सर्विस दिन दी पंजाबी सेवा है। शाम दे 5 बजे ने हुण साडी दूजी सभा शुरू हुंदी है। सभा दी शुरुआत दे विच आओ सुनदे हां सराइकी प्रोग्राम जोक माही दी।

ऑल इंडिया रेडियो दा सिरायकी प्रोग्राम है। मैं हरजीत कौर तुहाडी कीते अज दा प्रोग्राम खेन के हाजिर हां। अज असा तुहां को सुफियाना कलाम सुनवेंदे हां ते नाल नाल सूफी संगीत ते गल भी करेंदे हां। सुनन वालियो, धार्मिक होवना कीते जरूरी है सूफीवाद। अमीर खुसरो तुंगहिम के बुल्ले शाह तोड़ी सारा ने धार्मिक होण ते जोर दिता है। कविता के रिवाज विच पाकिस्तानी उर्दू शायरी, पश्तो कविता, पंजाबी शायरी, सिराइकी कविता, बलूची ते कश्मीरी कलाम शामिल हैं। जिथे लोगां दे मन भाव दे सूफी कवियां दी शायरी पढ़न ते गावन विच आउंदी है। सूफीवाद को आम किताब वाले कार नहीं पढ़िया वेंदे। हां, सूफियाना कलाम जदन कलाकार गाउंदे हैं ना, ता एक समा बच वेंदा है। आओ सुनेंदे हां नुसरत फतेह अली खान ते साथियों ने गाया एक कलाम।

சாமன சோறு செப்பு கரலைந்தான் சுழித்த கருதான்

kira sajna pyar asa, hai kira sajna pyar.

0: ही नहीं घबराता हूँ, स्ट्राइक करता हूँ। तो उसमें छोटी उम्र होती है, सेंस ऑफ प्रोपोर्शन तो होता नहीं, तो उसी हिसाब में लग पे अपने आप में पिछड़े बढ़ गए। वो बड़ा जोश आया जी, और शायद विवेकानंद ने किताबा जमाने से बहुत पढ़ बनते थी, उन्होंने कम्प्लीट वर्क अपने मकान में जलंधर कोटे पे जाके तीन मंजिला मकान से ऊपर उन्होंने किताब लेके शॉन जी दी उच्ची उच्ची पढ़ते थी, और उन्होंने लफ्स जड़े से सो पावरफुल एंड सो ऑरेटरी है जमाने और रवानी है, तो वो कभी पब्लिक स्पीकिंग से मेरा बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ है। ऑल इंडिया डिबेट्स, ऑल इंडिया डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट, और शायद ही कोई ऐसा कॉन्टेस्ट होता है जितों असि ट्रॉफी और मेरा फर्स्ट प्राइज ना आया हो। तो मैं अपने जो दोस्त थे स्टूडेंट्स उन्होंने एड्रेस कर रहा है थोड़ा रेडियो का 1948 की गल है, दो या तीन या चार जनवरी की गल 1948। तो मैं जब जोश के अंग्रेजी के एड्रेस कर रहा है, मैं बड़ा शौक से पब्लिक स्पीकिंग, तो पिछले मेरे जब मैं खत्म कर चुका एक बंदा ने कौन सी बाद की गल मेरे मोडे ते हाथ रखा, माय बॉय वेरी वेल डन, वेरी वेरी वेल डन। मैं मुड़ के देखा एक बड़ा नाजुक जहा बंदा फेयर कलर बड़ा गोरा चिट्टा और छोटा जहा लेकिन बड़ी पर्सनैलिटी गोरी बड़ा लतीफ जहा बंदा, वो कहने लगा कि बेटा मैं आपसे बात कर सकता हूँ हिंदी च बोले जी। तो सर इट बी माई प्लेजर, सो ए सर। फिर उन्होंने मैं कहा कि बेटा बात सुनो, मैंने आपको सुना है मुझे बहुत अच्छा लगा, तो आप रेडियो पे आना चाहोगे? हाँ बिल्कुल, मैं तो उछल पे कल आ गया बेटा, मैं रेडियो पे आ गया। और 13 जनवरी 1948 के मैंने पहला प्रोग्राम दिता।
1: वाह वाह वाह क्या बात है।
0: सो वही का रोल में किया।
1: अच्छा जी,
0: इतना मैंने खोर यादा की गल तुम कर रहे, सो बड़ी दिलचस्प गल याद आ गई। तो उस समय परमात्मा उस रेडियो चले गए। तो इसे करके 1962 ऑल इंडिया कैटेगराइजेशन जब कलाकार भी हुई, तो ये लोग अपना फायदा है, तो बहुत मेरे को आया, वो कहने लगे थोड़े फायदा लग दो, थोड़ी फीस करना है, फ्रा करना ये करना, तो एक्सपीरियंस है प्रोड्यूसर से मेरा। सो मैं क्या फाइल करी, वो जो थोड़ी ओरिजिनल जो थोड़ा ऑडिशन हुई है, ऑडिशन तो
1: सर पिछले जो आकाशवाणी स्वतंत्रता तो बाद होंद विच फिर आई इथे आजाद भारत विच, उसका सारा टैलेंट जरा है इसी तरह लिया गया स्टेज तो पकड़ के, इवन साडे प्रोड्यूसर्स भी सारे जेड़े सन उस स्टेजा तो ही आर्टिस्ट जेड़े सी विजय योग या रविशंकर ये तो ही लिया गया, उन्होंने इसी तरह पढ़ते थे जिथे तो अच्छा टैलेंट देखा। ये प्रकाश सियाल बहुत उमदा एक कलाकार है, बड़े आर्टिस्ट है, इन्हू ले आओ। तो इसे तरह आकाशवाणी ने अपने आप समृद्ध किया, बहुत ज्यादा जी। तो यानी कि तुसी ठीक है कि वो एक कॉन्फिडेंस थोड़ा चाहिए जिन्हें तुसी छत पे बैठ के रिहर्सल कर रहे थे, थोड़ा पब्लिक स्पीकिंग विच पाता और ड्रामा तो शायद किधरे अंदर नसा विच सीगा, ये जरा अंदर किधरे ड्रामा थोड़े सीगा, ये कोई पिछोकड़ या कोई रिलेटिव या कोई परिवार चाहिए?

रेडियो टीवी बारे के लिए लिखा गया है कि रेडियो मुख्य दसी प्रकाश सियाल नहीं कॉलम से सब पता है और उसकी बड़ी एक अपनी मैयार सी जिसको अज शायद असि मिस कर दिया।

0: अंदाज।
1: वैसे तो बहुमुखी प्रतिभा है थोड़ी को डॉक्टर प्रकाश सियान, लेकिन एक गल होंगी है भी मैं ए भी किया वो भी किया, वो भी रोना किया वो भी किया, लेकिन फला जगह ते मेनू सब तो ज्यादा मेरी आत्मा खुश होंगी है या मेरा मन प्रसन्न होंगे।
0: Teacher, and more power for students now.

ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?

0: present.
1: Okay.
0: Charlie Bean, Rudy, Ghost, Shake, Alfreda.
1: कुछ करो भी के कुछ बनो भी यही डॉक्टर सियाल ने किया है। और जब उम्र वधी हो जाए तो ये न सोचो कि जिंदगी आज से क्या है, दोस्त सोच लें और उदास हो जाए। जिंदगी भी बहुत कुछ है, करते रहो। वो जगड़ा चाहिए है, वो तमन्ना चाहिए है, चुस्त जू चाहिए है, अगे वधन दी, होर सुनन दी, नवा कुछ पान दी, नवा कुछ सुनन दी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रकाश सियाल, रज नहीं हो रहा।

Oh,

Thank you.

0: मोबाइल नंबर पर असामान्य उपयोग का पता चला है और सेवा आज निलंबित कर दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया 9 दबाएं।
1: सावधान, अजे ही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट ले रुको ते सोचो, पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
2: बस निक्की जिनी सावधानी तुहानू डिजिटल ठगी तो बचा सकती है। सुनो की कहंदे ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस बाबत।
3: डिजिटल एरेस के फ्रॉड में फोन करने वाले कभी पुलिस, कभी सीबीआई, कभी नारकोटिक्स, कभी आरबीआई, ऐसे भांति भांति के लेबल लगाकर बनावटी अधिकारी बनकर बात करते हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। कभी भी आपको इस तरह का कोई कॉल आए तो आपको डरना नहीं है, आपको पता होना चाहिए। कोई भी जांच एजेंसी फोन कॉल या वीडियो कॉल पर इस तरह पूछताछ कभी भी नहीं करती।
2: सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
4: मैं क्या सतु साहब लंग ये
5: आजो आजो।
4: लो जी आ गए जी, आ गए आ गए। मैं कह जी जय हिंद।
5: जय हिंद जी, जय हिंद। पंच साहब सुनाओ की हाल चाल।
4: बहुत बढ़िया। ते इधर प्रिंसिपल साहब नु भी जय हिंद महाराज।
6: जय हिंद कबूल करो जी।
5: जय हिंद जी, जय हिंद।
4: जय हिंद महाराज।
5: सो अपा तो गल कर रहे सी, देखो कल भी अपा गल कर रहे सी, समाज नू जेड़ा हैगा देन दा समा आ गया। समाज तो लिया तो है बहुत कुछ,
4: नाले गल होर भी है जी। समाज दे विच कई ना गलत आंसर भी आ जांदे है ना। ओ जेड़े घुण मांग समाज नू खान वाले ने उना दे उत्ते दवाई भी किसे वेले पानी पैंदी है,
5: चुकनी पैंदी है,
4: उत्थे भी कमर कसनी पैंदी है। जिदा धुप्पां दे विच पानी पैंदी, सानू खाद पानी पैंदी है, होर सब कुछ करना पैंदा। इदे समाज दे विच भी समय समय दे उत्ते देखना पैंदा। अज हुण उही नजिठ के आए, एक बंदे नू करा के आए जरा सीधा।
5: अच्छा की गल हो गई सी?
4: बस गल्लां तुहानू पता ही है, पिंड च बहुत सारियां हुंदियां है ना। हां सो इदां दी गल सीगी, फिर उहनू फिर समझाउणा सीगा वी, मैं कहा हुण फिर तैनू समझाउणा ही
5: पैणा। तरीके फिर वरतने पैंदे
4: आ, वरतने पैंदे आ जी। फिर
5: देखो गल इदां हुंदी आ ना कि जिस तरह आपां कहने वी बंदे नू जेड़ा है समझाना भी, थोड़ा पुचकारना भी, थोड़ा जे गुस्से नाल भी, सारे तरीके वरत के।
4: हां तो गुस्सा तो फिर लास्ट दे विच फिर गुस्सा ही वरतना पैना, फिर और जे प्यार नाल ना
5: समझे
4: फिर उही करके आए हुण। तुम प्रिंसिपल साहब ठीक कीता,
6: बिल्कुल सही है जी। लातों के भूत बातों से नहीं मानते,
4: डंडा वीर मजंडियां दा फिर यही है।
5: कुछ आपां करिए कि भाई प्यार नाल समझाइए पहला, जे तां बंदा समझे तां क्या ही गलबात
4: है। समझो साहब तुसी है नहीं सीगे इत्थे, नहीं तो तुसी प्यार नाल समझा लाना सी, उन्हें मन भी जाना सीगा।
5: अच्छा
4: सानू नौबत ही नहीं पैनी सीगी।
5: अच्छा
4: तुसी लेट हो गए या तुसी बाहर जाके आए ना, तुसी ता करके।
5: चलो ठीक है। गल इस तरह हुंदी है कि हर तरह दे लोग हुंदे ने, पंच साहब ते प्रिंसिपल साहब, कई बार ना आपां उन्हां तों नकारा काम होने की कोशिश करते हैं या दूर होने की कोशिश करते हैं,
4: जिहड़े साडे मतलब दे नहीं लगते सन।
5: उहदे नाल की हुंदा कि होर वो अपने आप नूं जिहड़ा समाज तों दूर हुंदे जांदे हैगे आ, ते कई बार वो महसूस करदे मेरा ते कोई भूमिका ही नहीं जी, मैनू कोई मेरी ते कोई जान पछाण ही नहीं जी, ते वो फिर इहदे विच आके कई बार वो गलत पासे भी तुर पैंदे।
4: यानी समाज दे विगोचे दे विचों कई बार ओ इहो जिहा सोच लैंदे आ भी साडी हुण नहीं लोड़ ते फिर असीं भी नहीं परवाह करदे।
5: हां मतलब आपां कई बार बंदा कहिंदे बंदा हर चीज अड़ैका पाउंदा, आपां कहिंदे छड्ड परां नूं, इह तां इदां दा सुभाव नहीं कि सुभाव ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਸ ਵਾਰ ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲਤਨ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ,
4: ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
5: ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਛੱਡਦੇ ਛੱਡੋ ਭਰਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਦਤ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿਓ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ?
6: ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਚ ਉਸਾਰੂ ਕੰਮ ਅਜਿਹੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੰਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਧਰ ਉਹਨਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਸਾਰੂ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਸਾਰੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੱਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੱਲ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਰਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਖਾਲੀ ਨਾ ਰਵੇ
4: ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸਮਝਣ।
6: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ,
5: ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਸੂਫੀਆਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜੀ ਹੁਣ।
4: ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ।

0: हाँ जी प्रिंसिपल साहब ते पंच साहब आपां इहदों गलबात करदे सी कि पिंडां दे विच साडे कई बार नौजवान किसान वीर ना बहुत वड्डियां प्राप्तियां भी करदे ने मिसाल पेश करदे कि खेतीबाड़ी विच आपां किस तरीके नाल की नवांपण कर सकदे हैं।
1: बिलकुल सही, बिलकुल सही।
0: सो आप इस तरीके नाल अपने कोल ना प्रिंस दीप सिंह होरी आए सन जी।
1: अच्छा जी।
0: ते प्रोफेसर बल साहब ने गल कीती सी उहनां नाल।
1: अच्छा जी।
0: लो सुनो फिर
2: जी। सुनते हैं जी। खेती करमा सेती किसान साथीओ अज साडे विच खेती नाल गलबात करन वास्ते तुहानू असीं रूबरू करावांगे जी प्रिंस दीप सिंह जी जिहड़े कि जलंधर दे लागे पिंड बंबीवाल तों साडे कोल पहुंचे ने। प्रिंस दीप जी सब तों पहलो तां तुहाडा स्टूडियो आउण ते असीं जीओ आए कहिंदे आ जी।
3: सति श्री अकाल जी सारिआं नूं, तुहानू वी ते सारे स्रोतिआं लई
2: जी। प्रिंस दीप जी असीं अपने स्रोतिआं जी नूं दस दईए कि तुसीं नवीन तकनीक दे नाल खेती करन विच माहर हो ते एक सफल किसान हो। सब तो पहलो असीं पुछना चाहवांगे कि खेती की जिहड़ी चिटक आ उह तुहानूं किवें लगी, अपने बचपन तों लैके हुण तक तुहाडा परिवार जिहड़ा उह खेती नाल किवें जुड़िया रिहा, इस बारे साडे जिहड़े किसान स्रोतां ने उहनां नूं जरूर दस्सो जी।
3: खेती नाल तां असीं शुरू तों ही जुड़े होए आ, साडे बजुर्गां तों असीं सारे, मेरे पिता जी भी सारे खेती नाल ही करदे सीगे खेती।
2: ठीक है जी।
3: ते उस तों बाद असीं पढ़ लिख गए, पढ़ लिख के विदेश गए, विदेश तों बाद दुबारा वापस आ के फिर खेती नाल जुड़ गए जी।
2: की गल हुई कि तुसीं मतलब खेती करदे होए पहलो बाहर कदों जाना पिया ते उस तों बाद फिर वापस मुड़े?
3: देखो जी पिता जी खेती करदे सीगे।
2: ठीक है जी।
3: जिदां तुहानूं वी पता है कि इत्थे सारिआं दा रुझान हैगा आ कि बाहर जाइए, बाहर जाके देखिए, बाहर जाके सैट होइए
2: जी।
3: उदां दा ही साडा वी सीगा, पर जदों बाहर जाके देखिआ कि ठीक है कम लई ठीक है, पर जो जो अपने मन की संतुष्टि खेती करके आ जां वापस अपने देश दे विच आके रह के आ उह बाहर नहीं मिलदी, शांति नहीं मिलदी बाहर।
2: ठीक है जी। सो जिवें अपने बजुर्ग कहिंदे सन कि उत्तम खेती ते मध्यम व्यापार खिद जा करी, उहदी एक साक्षात मूर्त साडे सामने बैठे ने कि जिहड़ी मन दी तसल्ली आ उह खेती नाल ही मिलदी आ। अगे गलबात नूं तोरदे आ। प्रिंस दीप जी जिवें तुसीं बाहर भी जाए हो, तुहाडे बजुर्ग भी खेती करदे सन, तुसीं की नवेकला अपनी खेती विच जिहड़ा आ उह पिछली जनरेशन दे नालों नवां की कर रहे हो?
3: देखो जी अगे जो भी सीगा सिर्फ आपां कणक झोने दे विच फसे हो सीगे।
2: ठीक है जी।
3: झोना भी जिदां हुण जिदां बजुर्गां तों सुणीदा कि अपनी फसल नहीं सीगी।
2: हां जी।
3: इह थोड़े कु सालां तों जिन्नी साडी उमर होई आ उस तों पहलां थोड़े कु सालां तों इह शुरू होया ते उहदे विच किसानां दा फायदा ज्यादा सीगा, इस लई सारे झोने वल नूं हो गए।
2: ठीक है जी।
3: पर झोने दे खर्चा भी बहुत आउंदा ते अपनी जमीन दी जिहड़ी शक्ति आ जां आपां पाणी कह लईए बहुत ज्यादा खराब कह लईए यूज हुंदा।
2: उह तां है ही जी।
3: पर आपां उन्ना झोना जां चौल आपां उन्ने खांदे नहीं हैगे, आपां तां सिर्फ अपने फायदे लई आपां पैदा कर रहे हैं।
2: बिल्कुल जी। सो तकरीबन किन्ने साल हो गए तुहानूं खेती करदे नूं जी?
3: देखो जी मैं मेरा जन्म 83 दा आ।
2: हां जी।
3: ते मैं 2011 तक जदों छोटा हुंदा डैडी दे नाल देखदा रहा खेती कर, 2000 तों 2011 तों लैके मैं 21 तक बाहर रहा।
2: ठीक है जी।
3: 21 तों बाद दोबारा फिर हुण आके खेती शुरू कीती है।
2: ठीक है जी। सो तकरीबन 5 साल तुहानूं खेती करदे नूं होवे?
3: हां जी पहलां भी करदे सी, डैडी करदे सीगे
2: जी,
3: ते मैं उस टाइम भी ज्यादातर समां मैं इत्थे ही रहिंदा सी।
2: ठीक है जी। सो आपां झोने दी गल कर रहीए क्योंकि हुण फसल झोने दी चल रही है जी।
3: हां जी।
2: सो झोने विच इक तां अपना रवायती जिहड़ा

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। नेपाल तिब्बत सीमा के पास रसुआ क्षेत्र में आज सुबह भोटे कोशी नदी में अचानक आई बाढ़ के कारण 384 पर्यटक लापता हैं। इनमें 105 भारतीय शामिल हैं। लापता लोगों में 291 विदेशी नागरिक और 93 नेपाली नागरिक हैं। इनमें ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड के नागरिक भी शामिल हैं। ये शुरूआती आंकड़े हैं और अभी इनका सत्यापन किया जा रहा है। प्रभावित क्षेत्र में खोज और बचाव अभियान जारी है। बाढ़ के कारण अब तक 22 लोगों के मारे जाने की खबर है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार भूकंप के कारण हिमस्खलन हुआ, इसमें पिघली हुई बर्फ का पानी कोशी नदी में आ गया और अचानक बाढ़ आ गई। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने प्रभावित भारतीय नागरिकों की सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। लोग हेल्पलाइन नंबर 9779851316807 और 9779701075000 पर संपर्क कर सकते हैं। दूतावास ने बताया कि वह बाढ़ से प्रभावित भारतीय नागरिकों के शीघ्र बचाव और राहत के लिए नेपाल सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार भारत नेपाल को जल्द से जल्द राहत सामग्री भेजने की तैयारी कर रहा है।

0: है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस कठिन समय में भारत के लोगों की संवेदनाएं नेपाल के लोगों के साथ हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से टेलीफोन पर बातचीत में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव और राहत कार्यों के लिए दोनों देशों की टीमें आपस में मिलकर काम कर रही हैं। नेपाल में ग्लेशियर फटने से बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। गंडक नदी से लगे 6 जिलों पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में विशेष निगरानी रखी जा रही है। सीतामढ़ी, शिवहर और अन्य जिलों के जिलाधिकारियों को भी स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिमी चंपारण के बगहा और वैशाली के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। गंडक नदी में पानी बढ़ने की आशंका को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की एक टीम गोपालगंज और बेतिया में तैनात की गई है। साथ ही एक अन्य टीम को मुजफ्फरपुर में तैयार रखा गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है।
1: हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूं। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि नगर जाऊंगा।
0: इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से टेलीफोन पर बातचीत की। गृह मंत्री ने राज्य सरकार को स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल को तैनात किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत प्रथम 2,500 पात्र महिला लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र सौंप दिए। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रतिमा 2,500 रूपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि ये महिलाओं के सशक्तिकरण, कल्याण और सम्मान की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। भारतीय चिकित्सा संघ ने इन्फ्लुएंजा H1N1 के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। संघ ने कहा कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने फॉलो ऑन मिलने के बाद दूसरी पारी में चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 6 विकेट पर 229 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही श्रीलंका ने 16 रन की बढ़त बना ली है। श्रीलंका की पहली पारी में 290 रन पर सिमट गई थी। भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। भारतीय टीम श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़। शाम के 7:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कार्यक्रम कृषि जगत सुनने वाले हमारे सभी भाइयों बहनों को
1: राम राम।
0: जो हमारे किसान भाई हैं वो कार्यक्रम सुनने के लिए बैठे होते हैं और उन्हें इस कार्यक्रम में हम उपदेश सुनवाते हैं, भजन सुनवाते हैं और साथ में देते हैं जानकारी। तो इस कार्यक्रम का उन्हें बड़ी ही बेसब्री के साथ इंतजार रहता है।
2: बिल्कुल।
0: क्यों अश्विनी भाई?
2: बिल्कुल।
0: और आज भी ऐसा ही है कि हम जानकारी भी लेकर आए हैं, साथ में मनोरंजन भी लेकर आए हैं। और क्योंकि बरसात का समय है और जो हमारा पशुधन है उसकी तरफ हमारे किसान भाई बहुत ध्यान देते हैं। वैसे तो वो बहुत बुद्धिमान है, उन्हें पता होता है कि उनके जो पशुधन है उनको कैसे रखें कि उनको बीमारी ना हो, लेकिन फिर भी हम कुछ बातें ऐसी हैं जो हम बताना चाहते हैं। जैसे कि अगर जहां पर हमारा पशुधन होता है वहां पर पानी की जो निकासी है उसका रास्ता बना के रखें जिससे कि वहां पानी ना इकट्ठा हो, क्योंकि अगर

0: चले जाते हैं, तो ऐसे आप अपने पशुओं का ध्यान रखें।
1: बिल्कुल बिल्कुल प्रतिभा, आपने बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं, कुछ बातें मैं भी जोड़ना चाहता हूँ यहाँ पे कि देखिए लगातार बारिश का मौसम चल ही रहा है, आप हम देख ही रहे हैं, और किसानी खेती के साथ साथ हमारे पशुधन भी हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितनी हमारी खेती महत्वपूर्ण है। और हमारी गाय भैंस हैं, बकरी हैं, हमारी मुर्गी पालन है, हमारा ऐसे जो जितने भी हमारे ये जो जानवर हैं, और इस मौसम में देखिए कभी कभी जानवर क्या है, खासकर पानी का भी आपको ध्यान रखना है, ताज़ा पानी पिलाना है। कई बार क्या होता है कि रखा हुआ पानी पशु नहीं पी पाता है, और कि और वो उसके लिए आप उसका पानी का इंतजाम जरूर रखें और खान पान का जरूर ध्यान रखें। जहां पर चारा और ये आप डालते हैं वहां पर रोजाना उसकी साफ सफाई होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि लगातार इन सब चीजों को डालने से वहां पर थोड़ी स्मेल आने लग जाती है, जीवाणु पैदा हो जाते हैं, उसका जो यहाँ पर खान पान आप डाल रहे हैं उसका भी निरंतर अगर आप साफ सफाई रखेंगे तो आपको भविष्य में फायदा होने वाला है, क्योंकि आपका पशु बीमार नहीं होगा तो आपका खर्चा नहीं होगा तो आपको जो लाभ मिल रहा है पशु से वो लगातार बढ़ता चला जाएगा और लाभ मिलेगा। और जहां पर आपने पशुओं को बांधा हुआ है वहां पर आप जैसे पशु पेशाब कर देता है या कुछ और, लगातार उनमें दिन में दो बार वहां उस जगह को साफ करना है लगातार आपको, जैसे प्रीति ने बताया है कि वो वहां पर नमी पैदा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अगर नहीं नमी पैदा होगी तो वहां पर खुरपका का रोग होने की संभावना वहां पर बढ़ जाएगी, क्योंकि वहां पर जीवाणु पनपेंगे और फिर वहीं पर वो बात आती है कि फिर आपका खर्चा बढ़ेगा, क्योंकि डॉक्टर को आप बुलाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका खर्चा जरूर बढ़ेगा। तो छोटी छोटी बातें हैं जो जानवरों को लेकर आपको सचेत रहना चाहिए, हरदम सचेत रहना चाहिए, और जिस कोटरी में आप जानवरों को बांध रहे हैं रोशनदान से हवा का जो हेर फेर है वो होना बहुत जरूरी है। अगर बारिश हो रही है या कुछ और हो रहा है तो वहां पर थोड़ी देख लीजिए, अगर पूरी बोरी या कुछ और आपने बांध सकते हैं, लेकिन बारिश होने के बाद वो उन सब चीजों को हटा दें जिससे जानवर के तक वो स्वच्छ हवा पहुंचे। और एक बात यहाँ पर प्रीति मैं और जोड़ना चाहूंगा यहाँ पर कि जहां पर आप बांधते हैं वहां पर आप देखिए वहां पर चीचड़ वीचड़ भी पैदा हो जाते हैं, कई बार वो बहुत सारी समस्या देखी जाती है इस बरसाती मौसम के अंदर। वहां पर जहां पर आप बांध रहे हैं कमरे के अंदर बांध रहे हैं तो वहां पर छोटे छोटे छेद हैं, तो वहां पर सीमेंटेड करके समतल बना दें, जहां पर छोटे छोटे जो छेद हैं वो बंद हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं पशु इस जो चिचड़ी बिचड़ी से की समस्या से दूर निजात मिलेगी और पशु आपका स्वस्थ दिखेगा तो आप उत्पादन उसका अच्छा होगा और कहीं ना कहीं आपको खेती के साथ साथ उत्पादन अधिक मिलेगा तो आप किसान मजबूत होगा। जैसे माननीय प्रधानमंत्री साहब भी कहते हैं कि आय कैसे बढ़ा सकते हैं, तो यह भी एक सोर्स है कि आय को बढ़ाना, कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करना या कुछ और, अगर आप कुछ और धंधा करना चाहते हैं तो ये सब चीज, क्योंकि आधी चीजें तो हमें खेती से मिल जाती हैं। प्रीति बहन
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो चलिए ये तो रही जानकारी हमारा पशुधन कैसे हम उनका ध्यान रखें। अब हम जानकारी देंगे कृषि विद्यालयों के कुलपतियों का 36वां सम्मेलन जिसका आयोजन हुआ था, इसका विषय रहा विकसित भारत @2047 के लिए कृषि उच्च शिक्षा की पुनर्कल्पना। इस पर हमारे माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने कुछ मुख्य बातें कही हैं, आइए जानते हैं कि उनका मुख्य संदेश क्या है।
2: ये 36वां वार्षिक सम्मेलन, स्वाभाविक रूप से मन में सवाल उठता है कि 35 में क्या तय किया, क्या डिस्कशन हुआ और डिस्कशन के बाद कोई अमल हुआ क्या। साल में एक वीसी कॉन्फ्रेंस होना है, लेकिन सवाल यही है कि जो डिस्कशन हम करते हैं, अब डिस्कशन हम जो करते हैं उसकी सब चीजें हमारी मुट्ठी में नहीं होती कि हम सब कर दें। कुछ के लिए वित्तीय प्रबंधन की आवश्यकता होती है, कुछ के लिए सरकार को निर्णय करना पड़ता है, लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जो हम खुद भी कर सकते हैं और हम लोग इसमें से तय करेंगे कौन से ऐसे हैं जो यूनिवर्सिटीज खुद कर सकती, कौन से ऐसे जो आईसीआर के सहयोग से कर सकते। कई चीजें ऐसी है कि जिसके लिए बड़े निर्णयों की आवश्यकता नहीं है, केवल सोच को कर्म में बदलने की जरूरत है। आज कृषि में अगर क्रांति हुई है, चाहे हरित क्रांति हो, चाहे श्वेत क्रांति हो, चाहे नीली क्रांति हो, आईसीआर का और हमारी यूनिवर्सिटीज का योगदान तो है, लेकिन मित्रों ये योगदान और बड़ा हो सकता। आज आपने जो विषय रखा कृषि उच्च शिक्षा की पुनर्कल्पना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कुल कितने विद्यार्थियों को हमने शिक्षा दी और शिक्षा देने के बाद उस शिक्षा का उपयोग कितनों ने किया, कितने विद्यार्थियों की जिंदगी बदली और उन्होंने किसानों की कितनी जिंदगी बदली, और इसी से कृषि शिक्षा का आकलन होगा। इसके लिए मुझे लगता है गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। ये बात सही है कि हमारे

0: कृषि शिक्षा व्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी व्यवस्थाओं में से एक है। एक तरफ बड़ी बड़ी चुनौतियां जिसकी चर्चा आप लोग कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज का खतरा है, पानी की कमी है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो रही है, प्राकृतिक खेती कितनी आवश्यक है और में कार्बन कम हो रहा है, नई नई बीमारियां, नए कीट, खेती की लागत भी बढ़ रही है और बाजार भी तेजी से बदल रहा है, किसान को मिलने वाली कीमत और उपभोक्ता को जिस दाम पर मिलती चीजें उस अंतर को कैसे कम करें। दूसरी तरफ कृषि को अगर बदलना है तो हमारी शिक्षा में AI आज बहुत महत्वपूर्ण हो गई, डिजिटल टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जीनोमैक्स, रोबोटिक्स और ड्रोन, अब ये सब चीजें क्या हमारी शिक्षा की व्यवस्था जो आधुनिक आवश्यकता उनको पूरा कर पा रही है। सवाल ये कि ये सब चीजें तो, लेकिन जो नौजवान विद्यार्थी हमारे बैठे क्या उनको हम इसके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध करा पा रहे हैं, अब इस पर भी हमको विचार करना होगा। खेती के लिए कक्षा के अलावा सोचने का कि बहुत जरूरत है, सवेरे कक्षा में बैठे, दोपहर में खेत में जाए, वहां प्रैक्टिकल करे, शाम को खेले कूदे, किसानों के बीच बैठे उनके साथ चर्चा करे, प्रैक्टिकल भी करे, बातचीत करे, समझे समझाए, किसी स्टार्टअप्स के साथ वो काम करे। मुझे लगता है कि हमारे कृषि विश्वविद्यालय को एग्री स्टार्टअप्स के सबसे बड़े केंद्र बनना होगा। विद्यार्थी केवल डिग्री लेकर नहीं, एक विचार लेकर निकले, एक समाधान लेकर निकले, केवल लेक्चर देने के लिए नहीं, वो मार्गदर्शक तो है लेकिन विद्यार्थी का मित्र भी हो। मैं तरीके बदलने की बात कह रहा हूं इसलिए हम लोग सोचें और क्या तरीके हो सकते हैं। अगर इनफॉर्मल अनौपचारिक संबंध होंगे तो उसमें से कई चीजें विद्यार्थी सीखेंगे। और कसौटी क्या है अपने विश्वविद्यालय की सफलता की, उसको भी हमें देखना पड़ेगा। यह नहीं है कि कितनी डिग्री बांट दी, कसौटी सचमुच में यह होनी चाहिए कि उससे कितने किसानों की जिंदगी बदली। पेटेंट मंजिल नहीं है केवल हमारी, रिसर्च खेत तक कैसे पहुंचे, रियल टाइम में कैसे पहुंचे। हमने पिछले साल एक महाअभियान चलाया था, इस बार भी खेत बचाओ अभियान चला, उसमें काफी चीजें ले जाने में सफलता प्राप्त की, लेकिन इसको निरंतर कैसे यूनिवर्सिटीज के माध्यम से हम जारी रखें। और मुझे लगता है कि ये जो अलग अलग हमारे डिविजन्स हैं इनकी भी दीवारें तोड़नी पड़ेगी, हमको एकीकृत रूप से विचार करना पड़ेगा। नहीं तो एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, मौसम का विज्ञान अलग है, डिजिटल टेक्नोलॉजी, इनको सबको एक साथ मिला के हमको सोचना पड़ेगा। मूल प्रश्न यही है कि डिग्री के बाद क्या, और इसलिए हर विश्वविद्यालय के पास उसका स्पष्ट आंकड़ा हो कि जो विद्यार्थी डिग्री प्राप्त करके निकले वो पहुंचे कहां। असली कसौटी तो ये नहीं तो डिग्री लेके अगर वो काम ही ढूंढते रहे, पढ़ाई व्यर्थ हो जाए। शिक्षा के तीन उद्देश्य है, ज्ञान देना, दूसरा कौशल देना, तीसरा नागरिकता के संस्कार देना। ज्ञान में किताबी ज्ञान, व्यावहारिक ज्ञान दोनों शामिल है। कौशल में कम से कम हम उसको इतना काबिल तो बना दें कि उसको रोजी रोटी के लिए संघर्ष ना करना पड़े। जाट साहब मैं बधाई देना चाहता हूं, प्लेसमेंट का जो काम प्रारंभ किया है, प्लेसमेंट हुआ, ये काम है। अभी बच्चों को हमने स्कॉलरशिप सीधे सिंगल क्लिक के माध्यम से उनके खातों में पहुंचाने का काम, और नहीं तो यहां से यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से कॉलेज, स्कॉलरशिप मिले तब तक पता चला कि परीक्षा रीक्षा सब हो गई। तो ये सुधार कई हो रहे हैं, लेकिन आप लोग विचार करें क्योंकि आप एक्सपर्ट्स हैं कि हम और क्या क्या करें। कुछ संकल्प आपकी इस कॉन्फ्रेंस से निकलना चाहिए। मुझे लगता है भविष्य के लिए तैयार स्नातक ये कल की खेती के लिए कैसे मानव संसाधन बने। हमें डिग्री आधारित शिक्षा से दक्षता आधारित शिक्षा की तरफ बढ़ना पड़ेगा, ज्ञान के प्रसार से नवाचार और समस्या की समाधान की ओर बढ़ना पड़ेगा। बच्चे नौकरी ढूंढने वाले ना बने केवल, वो नौकरी सृजित करने वाले और देने वाले कैसे बने। एक स्टूडेंट क्या एक विश्वविद्यालय एक जिले की खेती बदलने का संकल्प ले सकता, ज्यादा दूर की बात नहीं करती, KBK, FPO, बाकी सबके साथ मिलकर एक यूनिवर्सिटी एक जिला बदल। हम जलवायु अनुकूल खेती के बारे में कोई काम कर, ये हमारे सामने बड़ी चुनौती है, प्राकृतिक खेती, विश्वविद्यालय उद्योग और किसानों के बीच स्थायी तालमेल कैसे हो सकता है, इस पर आप विचार कीजिए। पारदर्शी लक्ष्यों के साथ संस्थान कैसे मजबूत बने, हमारा ज्ञान ट्रेनिंग के माध्यम से सीधे किसानों तक कैसे पहुंचे और कैसे वहां की खेती बदले। मैं सोचता हूं अगर जिले की बात की तो हम वहां तो कैसे सैचुरेट कर सकते हैं उसको, उस पर विचार कीजिए। और जो संकल्प है प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत के लिए विकसित कृषि और समृद्ध किसान, उसको पूरा करने में यूनिवर्सिटीज क्या रोल अदा कर सकती है। अंत में केवल इतनी कहना चाहता हूं कि इस कॉन्फ्रेंस में से आप लक्ष्य तय कीजिए, लक्ष्य प्राप्ति का रोड मैप बनाइए और अगले साल जब वीसी कॉन्फ्रेंस हो तो उसमें ये आना चाहिए हिसाब किताब के पिछले साल ये तय किया था, इतना काम उसमें हो गया, अब अगले साल ये करेंगे।
1: कृषि विद्यालयों के कुलपतियों का 36वां सम्मेलन जिसका आयोजन हुआ था और विषय था विकसित भारत @2047 के लिए कृषि उच्च शिक्षा की पुनर्कल्पना, और इस पर जानकारी दे रहे थे हमारे माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही कि कैसे किसानों के लिए और तरक्की करने के रास्ते हम निकाल सकते हैं। और इसी के साथ अब हम आपको सुनवाते हैं विनोद कुमार की आवाज में ये उपदेश।
2: जी,

0: कितनी अच्छी बात कही है इस उपदेश में कि निर्दोषी मानस को दोष नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये सही बात है कि जब कोई दोषी नहीं होता और उस पर दोष लगता है तो ये बहुत ही कष्टकारी होता है।
1: उसकी मान जो मानसिक स्थिति है या मान दिमाग की, उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है।
0: जी,
1: किसी भी
0: निर्दोषी मानस को कभी भी दोष ना लगाएं।
1: बिल्कुल,
0: ये सुना आपने विनोद कुमार से उपदेश, और अब हम बढ़ते हैं आगे और सुनवाते हैं मस्तराम यादव की आवाज में ये कृष्ण भजन।

तो अभी आपने सुना मस्त राम की आवाज में ये भजन, और भजन के साथ साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पे समाप्त होने जा रहा है। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पराशर और संयोजक चंदन लाल, और अब घड़ियों की सुई लगातार बोल रही है कि कृषि जगत कार्यक्रम का समय यहीं पे समाप्त होने जा रहा है। कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम राम।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और मीटर वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़ पर आप हमें सुन रहे हैं। शाम के 7:35 हुए हैं और कसलों पर केंद्रित आइए सुनते हैं कार्यक्रम। पहली गजल जो है वो चित्रा सिंह की आवाज में है।

श्रोताओं, आप जुड़े हुए हैं गजलों के कार्यक्रम से। अभी आपने चित्रा सिंह की आवाज में सुनी ये गजल। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और रूमा लैला की आवाज में सुनते हैं ये अगली गजल।

0: तो अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार वक्त शाम के 7:45 होने को है। अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4000 से अधिक महिलाओं को स्वीकृति पत्र सौंपे। दिल्ली चिकित्सा संघ ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्वाइन फ्लू H1N1 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने जलभराव की स्थिति की समीक्षा के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं ने मोटापे से जूझ रहे मरीजों में लीवर फाइब्रोसिस की जांच का नया तरीका विकसित किया और दिल्ली पुलिस ने अवैध शराब तस्करी मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत 4000 से अधिक पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे। इनमें से 2500 स्वीकृति पत्र एक औपचारिक समारोह में प्रदान किए गए। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस अवसर पर दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि यह पहल महिला कल्याण, सशक्तिकरण और गरिमा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने और देश के सामाजिक तथा आर्थिक विकास में उन्हें उनका उचित स्थान सुनिश्चित करने के महत्व पर भी बल दिया। हमारे संवाददाता ने बताया कि यह मासिक सहायता महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा, रोजमर्रा के निर्णय लेने की क्षमता और आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगी।
2: वित्तीय सहायता वितरित करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक योजना बनाई है। पात्र महिलाओं को हर महीने 1000 रूपये डिजिटल वॉलेट के माध्यम से दिए जाएंगे, जबकि 1500 रूपये की राशि फिक्स डिपॉजिट में जमा की जाएगी। इस पर मिलने वाले ब्याज का वहन सरकार करेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह पहल महिला कल्याण, सशक्तिकरण और गरिमा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि योजना के लिए करीब 9,13,000 महिलाओं ने पंजीकरण कराया है, जबकि 6,52,000 से अधिक आवेदन जमा किए गए हैं।
1: दिल्ली लक्ष्मी योजना में पहली

0: हजार बहनों को हमने अप्रूवल सर्टिफिकेट सौंपा है, क्योंकि ये पहली 2500 बहनें हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है।
1: दिल्ली सरकार ने कहा है कि महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में वित्तीय सहायता अगले महीने की पहली तारीख से सीधे जमा की जाएगी। दिल्ली के वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए 5,110 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया है। योजना को मिली प्रतिक्रिया दिल्ली की महिलाओं के इस पहल में विश्वास को दर्शाती है और राजधानी में असर तथा महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने के सरकार के संकल्प को और मजबूत करती है। प्रादेशिक समाचार के लिए अमन यादव।
2: चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि लक्ष्मी योजना से महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार होगा।
3: लक्ष्मी योजना के जरिए 2500 रुपए की राशि सभी महिलाओं को दी जा रही है, तो निश्चित रूप से इससे उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा और इसलिए वादा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है महिला सशक्तिकरण का, उसकी ओर एक बड़ा कदम है दिल्ली सरकार का।
2: दिल्ली चिकित्सा संघ ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्वाइन फ्लू H1N1 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। अब तक इसके 2000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं।
4: दिल्ली चिकित्सा संघ दिल्ली में इन्फ्लुएंजा की स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है। इन्फ्लुएंजा के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने और बचाव के जरूरी उपाय अपनाने की अपील की गई है। भारतीय चिकित्सा संघ IMA ने इन्फ्लुएंजा H1N1 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। IMA का कहना है कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। IMA ने लोगों को फ्लू के लक्षणों के लिए डॉक्टर की पर्ची के बिना एंटीबायोटिक्स न लेने की सलाह दी है। IMA ने बताया कि H1N1 में आमतौर पर अचानक तेज बुखार, ठंड लगना, लगातार सूखी खांसी, गले में खराश, मांसपेशियों में तेज दर्द और थकान जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। संक्रमण से बचने के लिए साबुन और पानी से बार बार हाथ धोएं या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। दिल्ली चिकित्सा संघ के अनुसार दिल्ली सरकार ने इन्फ्लुएंजा के मामलों से निपटने के लिए अस्पतालों को तैयार रखने का निर्देश दिया है। प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
2: स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि अस्पतालों में आइसोलेशन बेड तैयार किए गए हैं ताकि H1N1 के किसी मरीज के आने पर उसे आपात स्थिति में सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके।
5: आइसोलेशन बेड बनाया गया है, उसे आइसोलेशन बेड को इस रखा है कि कोई H1N1 का पेशेंट आए तो उसके लिए एक इमरजेंसी के रूप में तो उसकी हर चीज सुविधा रहे, फ्लूइड्स रहे, ऑक्सीजन रहे, मेडिसिन रहे अवेलेबल, डॉक्टर्स उसमें रहे। अगर पेशेंट्स में सिम्टम्स दिखते हैं कि हाई ग्रेड फीवर के साथ आया और उस एक्सरे में कुछ पैच वर्क दिखा तो उसका ट्रीटमेंट अच्छे से हो सके, इसलिए हमने आइसोलेशन फॉर द इमरजेंसी रखा गया।
2: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु ने जल जमाव की स्थिति की समीक्षा के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उपराज्यपाल ने निर्देश दिया कि इस स्थिति को एक आपदा माना जाए और इससे निपटने के लिए युद्ध स्तर पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी विभागों और एजेंसियों को अलग अलग काम करने के बजाय पूरी तरह से तालमेल के साथ काम करना चाहिए। इसके अलावा सभी विभागों और एजेंसियों के प्रमुखों को जमीनी स्तर पर सक्रिय रूप से मौजूद रहने और मीडिया, सोशल मीडिया तथा अन्य मंचों के माध्यम से नागरिकों द्वारा उठाई गई चिंताओं का तुरंत समाधान करने को कहा गया है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने कहा कि इस बार बारिश उम्मीद से कुछ अधिक हुई है। उन्होंने कहा कि परिषद लंबे समय की योजना के तहत जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान पर तेजी से काम कर रही है। मीडिया से बातचीत में श्री चहल ने बताया कि परिषद ने नालियों से गाद हटाने के साथ साथ पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सुधार किया है।
6: नालियां कुछ ड्रेनेज ऐसी हैं जो ब्रिटिश काल से की भी है, जो ब्रिक बैरल्स हैं, उस बाकी सब चीजें जिनको हमने काफी कुछ ठीक भी किया है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम NDMC की जनता को 100% वाटर लॉगिंग फ्री एरिया दें, तो उसको लेके हम हमेशा तत्पर रहते हैं।
2: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के शोधकर्ताओं ने मोटापे से जूझ रहे मरीजों में लीवर फाइब्रोसिस का पता लगाने के लिए एक नया तरीका विकसित किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एम्स ने जानकारी दी कि इसके लिए इनवेसिव बायोप्सी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और मोटापे और फैटी लीवर वाले 189 मरीजों पर किए गए एक शोध में लीवर की शक्ति, एक खास ब्लड टेस्ट और प्लेटलेट काउंट से लीवर की सेहत का पता चला। एम्स ने बताया कि शुरुआती पहचान

0: और आसान डायग्नोसिस से लीवर की बेहतर सेहत में मदद मिल सकती है। दिल्ली भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस उपायुक्त को भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के संबंध में कांग्रेस पार्टी और अन्य के द्वारा सोशल मीडिया पर चलाई जा रही एक झूठी तथा भ्रामक पोस्ट को लेकर एक शिकायत पत्र सौंपा। सांसद रामवीर सिंह बिदोड़ी ने कहा कि यह दुखद है कि राजनीतिक रूप से भाजपा का मुकाबला करने में अक्षम कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी जैसे अन्य दल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करके भाजपा और उसके नेताओं पर आक्षेप लगा कर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष कितनी भी कोशिश कर ले पर उसका कुप्रचार कभी सफल नहीं हो सका। नगर निगम ने दिल्ली को कूड़े से आजादी अभियान के अंतर्गत पश्चिम और सेंट्रल नॉर्थ जोन की पशु चिकित्सा सेवा टीमों ने दिल्ली पुलिस के सहयोग से विभिन्न इलाकों में आवारा मवेशियों को पकड़ने का अभियान चलाया। इस दौरान पीतमपुरा, हर्ष विहार, रानीबाग, ओम विहार और आसपास के क्षेत्रों में कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान कुल 16 आवारा मवेशियों को पकड़कर निगम ने अपने कब्जे में ले लिया। निगम ने कहा कि सड़कों पर आवारा मवेशियों की मौजूदगी से होने वाली दुर्घटना और यातायात संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जारी निर्देशों पर हुई प्रगति का जायजा लिया गया और चल रही पहलों के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने और प्रभावी ढंग से आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को हर स्तर पर मजबूत बनाने पर लगातार ध्यान दिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट तथा आईसीएआर, एआईईईए पीजी और एआईसीई पीएचडी 2026 परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी और परिणाम इस सप्ताह जारी करेगी। एजेंसी ने बताया कि परिणाम और अंतिम उत्तर कुंजी उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करने को कहा है। दिल्ली पुलिस ने अवैध शराब तस्करी मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि वेलकम, खजूरी खास, सोनिया विहार और नंद नगरी पुलिस स्टेशन की टीमों ने अवैध शराब तस्कर के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की। 5 अलग अलग मामलों में 2 महिला शराब तस्करों समेत 5 लोगों को गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया। पुलिस ने बताया कि सभी मामलों में आगे की जांच जारी है। दिल्ली पुलिस ने एक साइबर धोखाधड़ी गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने बताया कि गिरोह फर्जी क्यूआर कोड के माध्यम से विक्रेताओं के साथ पैसों के लेनदेन में हेराफेरी करते थे। मीडिया से बातचीत में उत्तरी जिले की पुलिस उपायुक्त निहारिका भट्ट ने बताया कि अब तक इससे जुड़े 8 मामले सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि धोखाधड़ी में इस्तेमाल किए गए फर्जी अकाउंट्स को भी बंद किया गया है।
1: इस अभियुक्त का नाम निखिल है, जो 22 साल का है और सब्जी मंडी का रहने वाला है, और इसके 8 केसेस सामने आए हैं अभी तक। इसके 8 केसेस में 2 केसेस बॉम्बे के हैं, मुंबई के हैं, और 6 केसेस दिल्ली के हैं। के जो म्यूल अकाउंट होल्डर्स हैं उनको बाउंड डाउन किया।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ओणम के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि समृद्धि और एकजुटता का यह त्यौहार हर घर में शांति, खुशहाली और खुशियां लाए। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलाद उन नबी आज से देश के विभिन्न भागों में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में आज पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं पर मिलाद महफिलें और सीरत सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर मिलाद जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। इसके लिए जगह जगह सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सभी को शुभकामनाएं दी। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज पैगंबर हजरत मोहम्मद के जीवन का उल्लेख करते हुए कहा कि उनका जीवन ईमानदारी, विश्वसनीयता, करुणा, धैर्य और क्षमा का शाश्वत संदेश देता है। उन्होंने बाड़ा हिंदू राव में ईद मिलाद उन नबी के अवसर

पर आयोजित कार्यक्रम में यह बात कही। इस कार्यक्रम में बल्ली मारान विधानसभा क्षेत्र से विधायक इमरान हुसैन और ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के मुख्य इमाम डॉक्टर इमरान उमर अहमद इलियासी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। रक्षाबंधन के अवसर पर हरियाणा सरकार ने हरियाणा राज्य परिवहन की साधारण बसों में महिलाओं के लिए निशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की है। यह निशुल्क यात्रा सुविधा कल दोपहर 12 बजे से शुरू होकर 28 अगस्त की मध्य रात्रि तक प्रभावित रहेगी। इन महिलाओं के साथ यात्रा करने वाले 15 वर्ष तक के बच्चे भी बसों में बिना किराए दिए यात्रा कर सकेंगे। यह सुविधा दिल्ली और चंडीगढ़ सहित किसी भी स्थान की यात्रा के लिए मान्य होगी। उत्तर रेलवे के लिए 8 प्रतिभाशाली खिलाड़ी एशियन खेल 2026 में भारतीय टीमों का प्रतिनिधित्व करेंगे। इन खिलाड़ियों का चयन कबड्डी, हॉकी और मुक्केबाजी के लिए किया गया है। उत्तर रेलवे में खेलों के इस निरंतर प्रगति के पीछे खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत, प्रशिक्षकों का मार्गदर्शन और उत्तर रेलवे खेलकूद संघ के पदाधिकारियों का सहयोग है। राजधानी दिल्ली में आज भी कई इलाकों में तेज बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने बताया कि कल बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4000 से अधिक महिलाओं को स्वीकृति पत्र सौंपे। दिल्ली चिकित्सा संघ ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्वाइन फ्लू H1N1 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने जलभराव की स्थिति की समीक्षा के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं ने मोटापे से जूझ रहे मरीजों के लिए लीवर फाइब्रोसिस की जांच का नया तरीका विकसित किया और दिल्ली पुलिस ने अवैध शराब तस्करी मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, वक्त रात्रि के 8 बजे हैं और ये समय है कार्यक्रम गीत मालिका का।

जी हाँ श्रोताओं, समय घड़ी के अनुसार, जी हाँ स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 8:03 हो चुके हैं और कार्यक्रम का पहला गीत हमने आपके लिए पेश कर दिया है श्रेया घोषाल और तोशी रैना की आवाज में। उम्मीद करते हैं कार्यक्रम का पहला गीत आपने जरूर पसंद किया होगा। आज के कार्यक्रम में, जी हाँ गीत मालिका के कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ, आपकी अपनी दोस्त चेतना। घड़ी में 8 बज चुके हैं और कुछ लोग जो होंगे ना वो इस वक्त ट्रैफिक में फंसे होंगे, या फिर कुछ लोगों के हाथ में चाय का कप होगा, कुछ बालकनी में खड़े होंगे, कुछ टेंशन में अपना सिर पकड़कर खड़े होंगे। ऐसा ना हो, हम तो यही चाहते हैं, लेकिन हम आपके साथ रहेंगे इन 50 मिनट तक लगभग और करेंगे बेहद बहुत सारी बातें। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे, जी हाँ, कुछ ऐसी पुरानी याद के बारे में जो आपके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लेके आ जाए। शाम जो है ना वो इशारा करती है कि भाई अब जो पुराने पूरे दिन के जो बस्ते में बोझ था ना उसे साइड में रख दीजिए और ये वक्त होता है सिर्फ और सिर्फ हमारा अपने लिए।

जी हाँ श्रोताओ, हम बात कर रहे थे उन पुरानी यादों की, जी हाँ, जो हमारी कहीं न कहीं पिटारे में रहती है और हमें कभी न कभी थोड़ा सा डिस्टर्ब करती है और कभी कभी बहुत

जी हाँ दोस्तों, ये गीत रहा फिल्म फितूर से सुनीति चौहान और जुबिन नौटियाल की आवाज में, और इस गीत को संगीत दिया अमित त्रिवेदी ने। और कभी फुर्सत में बैठो तो इसे खोल कर देखना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यादों की पिटारी की। इसमें बीते हुए लम्हों की महक बाकी है, बचपन की वो नादानियां, वो बेफिक्री सी हंसी, इस पिटारी में हर एक खुशी की चमक बाकी है। जुड़े हुए कार्यक्रम गीत मालिका से, और आज के कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ चेतना।

सुनी थी चौहान की आवाज में। अभी आपने गीत को सुना। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली का, जी हाँ, इंद्रप्रस्थ चैनल, और समय स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 8:15 हो चुके हैं। कार्यक्रम है आपका अपना फेवरेट कार्यक्रम गीत मालिका, और आज के कार्यक्रम में मैं हूँ चेतना आपके साथ। और जिंदगी की उलझनों में कभी कभी हम इतने थक जाते हैं कि इतनी तन्हाई, इतनी अकेलापन लगता है कि हम थोड़ा सा मुस्कुराना भी कभी कभी ना भूल जाते हैं, और कभी कभी ऐसा लगता है कि बिल्कुल अकेले हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों, कहूं कि जिंदगी की उलझनों से जब थक जाता हूं, अपनी तन्हाई में जरा मुस्कुरा लेता हूं, जरूरत नहीं पड़ती मुझे किसी सहारे की, जब मैं अपनी यादों का पिटारा खोल कर अपने साथ बैठ जाता हूं,

जी हाँ दोस्तों, रूट फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे हैं और इस गीत को वासी विनोद राठौर ने और साथ में सुनिधि चौहान और संगीत अन्नू मलिक का। और वाकई में न कल की फिक्र होनी चाहिए न गुजरे कल का मलाल होना चाहिए। हम तो भाई अपनी धुन में मस्त रहने वाले हैं और दुनिया क्या सोचेगी ये सोचकर वक्त को बिल्कुल ना गंवाएं। हमारा तो एक ही अंदाज है, बेफिक्र और बेमिसाल।

अब्दुल्ला मैं आकाशवाणी दिल्ली केंद्र प्रेस चैनल से और मीडियम वेव 366.3 मीटर पर आप हमें सुन रहे हैं। समय स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 8:25 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत मालिका और हम बात कर रहे थे उन यादों के पिटारों की। जी हाँ, फिलहाल आपको ये बता दें कि ये जो गीत अभी आप सुन रहे थे वो सोनू निगम की आवाज में फिल्म मुसाफिर से रहा और संगीत दिया विशाल शेखर ने इस गीत को।

जी हाँ दोस्तों, हमने भी सीख लिया है हवाओं के साथ बहना, हर बात पर दिल को दुखाना छोड़ दिया है। अब हमने जब से अपनाया है बेफिक्री का मजा, हमने जमाने की फिक्र में मुस्कुराना नहीं छोड़ा है।

0: सदा आशा रहे, जब तक लहू तन में बहे, मन में सदा आशा रहे।
1: हम अपनों से अब दूर चले,
0: ऊपर वाले
1: आँखों में लेकर नूर चले,
0: ऊपर वाले।

सोनू निगम की आवाज साथ में सुखविंदर सिंह और कुणाल, और इस गीत को लिखा समीर ने, फिल्म रही खाकी। हम बात कर रहे थे उन यादों के पिटारों की। जी हाँ, जो यादें कुछ अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक सबक तो हमें जिंदगी का बिल्कुल देती हैं ये यादें। लेकिन यादें अच्छी हो या बुरी, भाई हमने बात की थी कि बेफिक्री से जीवन जीना बेहद जरूरी है। टेंशन्स और समस्याएं कभी खत्म नहीं होती जीवन में, और सिर्फ कोशिश करनी चाहिए कि अच्छी यादें ही हमारे पिटारे में बनती चली जाए। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि वक्त की रफ्तार जो है ना, वो सब कुछ बदल देती है। वक्त एक ऐसी चीज है जो हर घाव को भर देता है। आज जो है वो कल हो जाएगा। ज्यादा फिक्र करके, टेंशन लेके आज की कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ समय जाया करने वाली बात है। समय बुरा हो या अच्छा, बीत ही जाता है।

अभी आपने की सुना अदनान सामी की आवाज में लकी नो टाइम फॉर लव। जी हाँ, ये था फिल्म और ये सोनू निगम की आवाज भी साथ में। और समय जो है ना स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 8:00 हो चुके हैं 40 मिनट, और जाना होगा आपसे, इस कार्यक्रम से विदा लेनी होगी। लेकिन इस वादे के साथ छोड़े जा रहे हैं आपको, 11:10 पर फिर मिलेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत में। फिलहाल अपनी दोस्त चेतना को अनुमति दें इस कार्यक्रम से। नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत मालिका। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज, डीएनएम 810 किलोहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार वक्त रात्रि के 8:44 और पूरे 50 सेकंड हुए हैं। अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक भीषण बाढ़ में 46 लोगों की मौत, 100 से अधिक भारतीयों सहित लगभग 500 लोग लापता। भारत ने नेपाल में बचाव और राहत कार्यों में तेजी आने के साथ ही हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। बिहार और उत्तर प्रदेश ने पड़ोसी देश में बाढ़ के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए तैयारियां तेज की। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। पेचिंग में सीमा वार्ता के 25वें दौर में 8 सूत्री सहमति बनी। ओणम और ईद मिलाद हर्षोल्लास से मनाया गया। और क्रिकेट में मेजबान श्रीलंका ने फॉलो ऑन के बाद चौथे दिन दूसरी पारी में 6 विकेट पर 229 रन बनाए। मैच पर भारत की पकड़ मजबूत। और अब समाचार विस्तार से। नेपाल तिब्बत सीमा के भोटेकोशी नदी में आई अचानक बाढ़ से अब तक 105 भारतीयों और 37 प्रवासी भारतीयों सहित करीब 500 लोग लापता हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक 46 शव बरामद किए गए हैं और 93 लोगों को बचाया गया है। अधिकांश भारतीय तिब्बत में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जा रहे थे। अचानक आई बाढ़ से रसुवा तथा धादिंग जिले प्रभावित हुए। बाद में इसका असर नुवाकोट और चितवन तक पहुंचा। एक रिपोर्ट।
2: लापता लोगों में ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड्स के नागरिक भी शामिल हैं। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि ये शुरुआती आंकड़े हैं। प्रभावित क्षेत्र में खोज और बचाव अभियान जारी है। प्रारंभिक जांच के अनुसार भूकंप के कारण हिमस्खलन हुआ, इससे पिघली हुई बर्फ का पानी कोशी नदी में आ गया और अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ से रसुवा क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने रसुवा, नुवाकोट, धादिंग, गोरखा और चितवन के प्रभावित क्षेत्रों के सांसदों के साथ स्थिति पर चर्चा की। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: काठमांडू में भारतीय दूतावास ने प्रभावित भारतीय नागरिकों की सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये हेल्पलाइन नंबर है 9779851316807 और दूसरा हेल्पलाइन नंबर है 9779901075000। दूतावास ने बताया कि वो बाढ़ प्रभावित भारतीय नागरिकों के शीघ्र बचाव और राहत के लिए नेपाल सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार भारत नेपाल को जल्द से जल्द राहत सामग्री भेजने की तैयारी कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

0: राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत इस कठिन घड़ी में नेपाल के साथ है। उन्होंने कहा कि भारत इस आपदा से प्रभावित लोगों के लिए नेपाल सरकार के राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से टेलीफोन पर बातचीत में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव और राहत कार्यों के लिए दोनों देशों की टीमें आपस में मिलकर काम कर रही हैं। नेपाल में ग्लेशियर फटने के बाद बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: नेपाल में बाढ़ के बाद गंडक नदी में जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए बिहार के 6 जिलों पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सीतामढ़ी, शिवहर और अन्य जिलों के जिलाधिकारियों को भी स्थिति पर लगातार और करीबी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिम चंपारण के बगहा और वैशाली जिले के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से जल्द सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। राज्य के उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि फिलहाल गंडक नदी का जलस्तर अपेक्षाकृत कम है, जो कि एक सकारात्मक स्थिति है। हालांकि स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए संभावित जल प्रवाह को देखते हुए वाल्मीकि नगर बराज से 2.5 लाख क्यूसेक तक पानी छोड़े जाने की संभावना है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है।
2: इस पर हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूं। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि नगर जाऊंगा।
0: आपदा मोचन बल के कमांडेंट हितेंद्र पाल सिंह कंडारी ने बताया कि बिहार में 9 टीमें तैनात हैं और कई अन्य टीमें अलर्ट पर हैं।
3: मानसून के सीजन में हमारी कुछ टीमें पहले से ही प्रिपरेशन थी। अभी जो संभावना जताई जा रही है कि फ्लड का पानी जो नेपाल में है वो इंडिया में एंटर करेगा, तो उसके बाद यहाँ पे भी फ्लड की सिचुएशन बन सकती है। उसके मद्देनजर हमारी टीमों को वहाँ पे भेजा गया है।
0: इस बीच गृहमंत्री अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से टेलीफोन पर बातचीत की। गृहमंत्री ने राज्य सरकार को स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। वहीं उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। नेपाल में अचानक बाढ़ के कारण दोनों जिलों में गंडक और नारायणी नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ से हुई तबाही पर चिंता व्यक्त करते हुए महाराजगंज और कुशीनगर के स्थानीय प्रशासन को सभी जरूरी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इधर मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण कल दक्षिण उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में भी तेज वर्षा की संभावना है। कल दिल्ली में भी वर्षा होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने तथा द्विपक्षीय संबंधों के स्वस्थ और स्थिर विकास के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। सीमा के मुद्दे पर भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच वार्ता का 25वां दौर कल पेचिंग में आयोजित किया गया। चीन के विशेष प्रतिनिधि सीपीसी केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य और केंद्रीय विदेश आयोग के कार्यालय के निदेशक वांग यी तथा भारत के विशेष प्रतिनिधि और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने भारत चीन सीमा मुद्दे पर गहन विचार विमर्श किया और 8 बिंदुओं पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने सीमा के मुद्दे के समाधान के लिए एक रूपरेखा तैयार करने हेतु वार्ता को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता पर बल दिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि व्यस्ततम रेल लाइनों को 4 लेन में बदलने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि देश में 7 व्यस्ततम रेल मार्ग हैं जो तकरीबन 11,000 किलोमीटर तक फैले हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली हावड़ा, हावड़ा चेन्नई, चेन्नई मुंबई, मुंबई दिल्ली, दिल्ली चेन्नई, मुंबई हावड़ा और दिल्ली गुवाहाटी 7 व्यस्ततम रेल मार्ग हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जारी निर्देशों पर हुई प्रगति का जायजा लिया गया और चल रही पहलों के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। श्री जोशी ने समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने और प्रभावी ढंग से आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने की जरूरत पर बल दिया। दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत प्रथम 2.5

0: 1000 पात्र महिला लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र सौंपे। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि ये महिलाओं के सशक्तिकरण, कल्याण और सम्मान की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि देश की प्रगति के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है।
1: 1 अगस्त से लेकर के आज तक 9,22,000 बहनों ने इस योजना में अपना नाम रजिस्टर किया। इस दिल्ली लक्ष्मी योजना में पहली 2500 बहनों को हमने अप्रूवल सर्टिफिकेट सौंपा है, क्योंकि ये पहली 2500 बहनें हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है।
0: मुंबई पुलिस ने एमपीएससी की ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा का प्रश्न पत्र कथित तौर पर लीक होने के मामले में महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के 3 अधिकारियों समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। अदालत ने सभी 6 आरोपियों को बुधवार तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सरकार द्वारा गठित उच्चस्तरीय समिति कल रायपुर में उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करेगी। इस विषय पर व्यापक विचार विमर्श के लिए विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 200 लोगों को आमंत्रित किया गया है। मेघालय सरकार ने स्कूली बच्चों में बुनियादी पठन कौशल को बेहतर बनाने और सीखने की कमियों को दूर करने के लिए सीएम इम्पैक्ट रीड एंड राइज मेघालय कार्यक्रम शुरू किया है। इसका लक्ष्य है कि हर बच्चा 7 वर्ष की आयु तक पढ़ना और लिखना सीख सके। भारतीय चिकित्सा संघ आईएमए ने इन्फ्लुएंजा AH1N1 के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। आईएमए ने कहा कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। चिकित्सा संघ ने लोगों को फ्लू के लक्षणों के लिए डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक्स नहीं लेने को कहा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। दुनिया भर में रह रहे केरलम वासी आज तिरुओणम का पर्व मनाया। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये पौराणिक राजा महाबली के स्वागत और नई फसल के आगमन की खुशी में सभी केरलम वासियों द्वारा उत्साह के साथ मनाया जाता है।
2: तिरुओणम के अवसर पर केरल में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। ओणम पर्यटन सप्ताह के अंतर्गत राज्य के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक कार्यक्रम जारी हैं। जिला मुख्यालयों के साथ साथ प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। केरलम का सबसे बड़ा फसल उत्सव ओणम अब समापन की ओर है। तिरुअनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह।
0: इस बीच कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने केरलम मंडल में लगभग 4,40,000 पेंशन भोगियों को आज अगस्त 2026 की पेंशन उनके खातों में भेज दी। सामान्य तौर पर पेंशन का वितरण महीने की अंतिम तिथि को होता है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलाद उन नबी भी आज उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मिलाद जुलूस भी निकाले गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कश्मीर घाटी में इस अवसर पर विभिन्न मस्जिदों और दरगाहों में हजारों श्रद्धालु जुटे और विशेष नमाज अदा की।
3: ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में पूरी घाटी में हजारों की तादाद में अकीदतमंद मस्जिदों और दरगाहों में जमा हुए और खसूसी नमाजों और मजहबी मजलिसों में शामिल हुए। सबसे बड़ी मजलिस श्रीनगर के दरगाह हजरत बल में हुई, जहां पर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास निशानी को लोगों के सामने नुमाया किया गया और उनकी जिंदगी पर रोशनी डाली गई। ऐसी ही मजलिसें घाटी के दीगर इलाकों में भी हुई, जहां पर लोगों ने जम्मू कश्मीर और पूरे मुल्क की खुशहाली के लिए दुआएं की। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
0: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में छड़ी मुबारक यात्रा आज धार्मिक और आध्यात्मिक उल्लास के साथ संचालित की गई। इसके साथ ही श्री बूढ़ा अमरनाथ जी यात्रा के समापन की औपचारिक शुरूआत हो गई। यात्रा समापन रक्षाबंधन के दिन होगा। भारत ने बाढ़ से जूझ रहे नेपाल की सहायता के लिए 10 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री तथा आवश्यक दवाइयां भेजी हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत इस संकट की घड़ी में नेपाल और वहां के लोगों के साथ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पत्रा देवी हुतात्मा स्मारक राष्ट्रीय एकता, साहस और बलिदान का प्रतीक है जिसने गोवा की मुक्ति में योगदान दिया था। श्री सिंह ने स्मारक के उद्घाटन समारोह में कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों से लोग गोवा आए और इसकी स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। और अब खेल खबरें। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने फॉलो ऑन मिलने के बाद दूसरी पारी में चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 6 विकेट पर 229 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही श्रीलंका ने 16 रन की बढ़त ले ली है। श्रीलंका की पहली पारी में 290 रन पर सिमट गई थी। भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। भारतीय टीम श्रृंखला में 1-0 से आगे है। हंगरी में पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन में वीर चोटरानी और विलवन सेंथिल कुमार सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। चोटरानी ने क्वार्टर फाइनल में मिस्र के मोहम्मद अल शेरबिनी को और विलवन सेंथिल कुमार ने मलेशिया के एनयूएनजी को हराया। अब सेमीफाइनल में ये दोनों खिलाड़ी आमने सामने होंगे। मुंबई में एशियाई जूनियर क्लासिकल शतरंज चैंपियनशिप में मयंक चक्रवर्ती ने ओपन और प्रतीति बोरदोलोई ने लड़कियों के वर्ग का खिताब जीत लिया है। ओपन वर्ग का कांस्य पदक भारत के ही दक्ष ने हासिल किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक भीषण बाढ़ में 46 लोगों की मौत, 100 से अधिक भारतीयों सहित लगभग 500 लोग लापता। भारत ने नेपाल में बचाव और राहत कार्यों में तेजी आने के साथ ही हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। बिहार और उत्तर प्रदेश ने पड़ोसी देश में बाढ़ के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए तैयारियां तेज की। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। पेचिंग में सीमा वार्ता के 25वें दौर में 8 सूत्री सहमति बनी। ओणम और ईद मिलाद हर्षोल्लास से मनाया गया। और क्रिकेट में मेजबान श्रीलंका ने फॉलो ऑन के बाद चौथे दिन दूसरी पारी में 6 विकेट पर 229 रन बनाए। मैच पर भारत की पकड़ मजबूत। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Massive flash flood hits Nepal-Tibet border, claiming 46 lives and leaving nearly 500 people missing, including over 100 Indians. India assures all possible assistance as rescue and relief operations intensify in the Himalayan nation. Bihar and Uttar Pradesh step up preparedness amid possible rise in water levels of rivers after flash floods in the neighboring country. India and China reaffirm commitment to peace and tranquility in border areas, agree on 8-point consensus at 25th round of boundary talks in Beijing. Onam and Eid-e-Milad celebrated with joy and festive spirit. And in men's cricket, India tighten grip on Colombo Test as hosts Sri Lanka struggle at 229 for 6 in their second innings at stumps on day 4 after follow-on. A massive flash flood swept through the northern part of Nepal near the border with Tibet today, claiming 46 lives so far and leaving 500 people missing, including over 100 Indians. The flood surged through the Bhotekoshi River this morning from the direction of Tibet. We have a desk report.
5: The sudden rise in water levels caused widespread destruction in Timore in Raswa district of Nepal near the Tibet border and the nearby Siafrubesi area, washing away vehicles, goods and other property. Preliminary reports suggest that the flash floods may have been triggered by an earthquake that caused an avalanche, sending large quantities of melted snow into the Bhotekoshi River. Rescue and relief operations have been intensified, with the Nepal Army deploying helicopters and disaster response teams to support search operations. The Nepal Tourism Board has advised people in the affected areas to remain calm, follow official safety instructions and stay updated through verified channels. Swati Rakheja for Akashvani News, Delhi.
4: Security officials said at least 93 people have been rescued from different parts of the affected areas. According to the Nepal Tourism Board, NTB, those reported missing include foreign nationals and Nepali citizens. Among the foreign nationals, 105 are Indians, while 37 are NRIs, most of whom were travelling to Tibet for the Kailash Mansarovar Yatra. Other foreign nationals are from the United Kingdom, Australia, the United States, Malaysia, South Africa and the Netherlands. Nepal Prime Minister Valendra Shah reviewed the

9 बजकर 20 मिनट पर ईद मिलादुल नबी के मौके पर जनाब नदीम अहमद सिद्दीकी की तकरीर आप सुनेंगे सीरत रसूल। इसके बाद चंद नात रसूल करीम आपकी खिदमत में पेश की जाएंगी। 9 बजकर 45 मिनट पर खबरें नशर होंगी। बजकर 55 मिनट पर मशवरे सेहत के सिलसिले के तहत कुछ बातें होंगी आपकी सेहत के हवाले से। 10 बजे आप समाप्त करेंगे नातिया मुशायरा। 10 बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम तामीले इरशाद। तामीले इरशाद प्रोग्राम जारी रहेगा 11 बजकर 30 मिनट तक। दौरान प्रोग्राम 11 बजे आप सुनेंगे खबरें बर्रे सगीर से का उर्दू न्यूज बुलेटिन। सुर्खियों में ये प्रोग्राम पेश होगा 11 बजकर 30 मिनट पर और 11 बजकर 45 मिनट पर कव्वालियां पेश करेंगे इरशाद रहमत कव्वाल और हमनवा। शब के 12 बजे आलमी खबरें नशर की जाएंगी और 12 बजकर 10 मिनट पर क्लासिकी मौसीकी में आप सुनेंगे जिया मोहिद्दीन डागर का सरस्वती वीणा पर बजाय राग तोड़ी और राग मुल्तानी।

12:50 पर खबरें नशर की जाएंगी और शब 1 बजे उर्दू सर्विस की तीसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। सामान ये थे मुख्तसर तारुफ इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों के हवाले से। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

0: अमरनाथ जी मंदिर रवाना हुआ। आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पैगम्बर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत ईद मिलादुन नबी मजहबी अकीदत के साथ मनाया गया। इस मौके पर मिलाद महफिलों और सीरत नबवी के जुलूसों का एहतमाम किया गया, जिसमें उलमाए किराम ने पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा और तालीमात के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच में आज चौथे दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 6 विकेट पर 229 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने श्रीलंका की पूरी टीम को पहली इनिंग्स में 290 के स्कोर पर आउट करने के बाद फॉलो ऑन कराया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। नेपाल तिब्बत सरहदी इलाके में अचानक जबरदस्त सैलाब आने से 46 अफराद की मौत हो गई। बचाव और राहत कार्रवाई तेज कर दी गई है। पड़ोसी मुल्क में अचानक सैलाब आने के बाद दरियाओं में पानी की सतह में मुमकिन इजाफे के तनाजुर में बिहार और उत्तर प्रदेश में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। आज ओनम और ईद मिलादुन नबी जोश खरोश के साथ मनाए गए और मर्दों की क्रिकेट में कोलंबो टेस्ट में भारत ने अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात मशवरे सेहत के। इस सिलसिले के तहत कुछ बातें आपकी सेहत के हवाले से हो जाएं तो कैसा रहेगा, बेहतर है दोस्तों। और कहते हैं कि जान है तो जहान है, और आज इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे विटामिन बी के हवाले से। विटामिन बी की अगर कमी वाक हो जाए आपके जिस्म में तो क्या हो सकता है और इसकी कमी को कैसे दूर किया जा सकता है, ये भी बताने की कोशिश की जाएगी जनाब। तो बने रहिए हमारे साथ और मशवरे सेहत के सिलसिले सुनते रहिए। दरअसल रेड ब्लड सेल्स और पूरे जिस्म को ऑक्सीजन पहुंचाने का ये काम करते हैं। अगर विटामिन बी की कमी हो जाती है तो जिस्म में ये काम रुक जाता है, उसमें रुकावट आ जाती है। और विटामिन बी कितना होना चाहिए, 190 से 950 पिकोग्राम फी मिलीलीटर होना चाहिए, जो कि माहिरीन का कहना है। विटामिन बी की कमी एक ऐसी हालत है जिसमें जिस्म से कम मिकदार में विटामिन बी जो है वो बनता है, और विटामिन बी जैसा कि मैंने आपको बताया रेड ब्लड सेल्स के बनाने के लिए बहुत जरूरी है, और इसकी कमी से जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसमें कमी वाकई हो जाती है। पूरे जिस्म में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए ये जिम्मेदार होते हैं, तो जाहिर सी बात है जब पूरे जिस्म में ऑक्सीजन कम जाएगी तो फिर कई परेशानियां आपके जिस्म में लाहक हो सकती हैं। और आपको कितना विटामिन बी मिलना चाहिए यह भी बहुत जरूरी है, लेकिन उम्र के हिसाब से अगर देखें और या फिर आपके जो गजा के लेने की आदत है या आपके रोजमर्रा की जो जिंदगी है इस पर भी बहुत कुछ मुनासिर करता है। और किन किन चीजों से ये मिल सकता है ये भी आपको जरूर बताएंगे। 6 महीने से लेकर जो बड़े बच्चे होते हैं 7 महीने तक के 0.4 mcg यानी माइक्रोग्राम विटामिन B12 की जरूरत होती है। 7 से 12 महीने के बच्चे को 0.5 और 1 से 3 साल के बच्चे को 0.9 और 4 से 8 उम्र के बच्चों को 1 से 2 माइक्रोग्राम और 9 से 13 साल के बच्चों को 1 से 8 माइक्रोग्राम और 14 से 18 साल के इंसान को 2.4 माइक्रोग्राम विटामिन B12 की जरूरत होती है, और उनसे बड़ों की अगर बात की जाए तो 2.4। विटामिन बी की कमी एक आम बात तो है, उसकी वजह यह कि बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता कि हमारे जिस्म में कमी हो रही है। जब जांच कराई जाती है, खून की जांच होती है, तब पता चलता है।

0: है कि विटामिन बी की कमी हमारे जिस्म में हो रही है। विटामिन बी की कमी से क्या क्या परेशानियां होती हैं, जिससे आपको ये अंदाजा लगा सकते हैं कि विटामिन बी 12 जो है हमारे जिस्म में कम हो रहा है। कई बार होता है किसी हिस्से का सुन हो जाना, हसासियत कम हो जाती है, पता नहीं चलता, और आपके जो अजलात हैं, मसल्स हैं, वो कमजोर पड़ने लगते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपको किसी चीज का जायका, उसका एहसास नहीं होता, या फिर कम एहसास होता है, टेंशन में आप रहते हैं। कई बार किस तरह की परेशानियां आपको आती हैं कि आप थोड़ा सा तवाजुन भी आपका गड़बड़ जाता है। और विटामिन बी 12 की कमी की वजह से और इसके अलावा और कई परेशानियां होती है। एक तो बहुत ज्यादा थकान आपको महसूस होती है, कमजोरी भी महसूस होती है, कई बार मतली या उल्टी या फिर पेट गड़बड़ हो जाता है, हाथ पैरों में सुन्न या फिर झंझनाहट से होती है, और मुंह के अंदर कई बार आपकी जबान में छाले भी निकल आते हैं, और ऐसा जो फर्द है वो उदास रहता है, और वजन में कमी हो जाती है, कई बार बीनाई में भी कमजोरी आती है, और स्किन जो है आपकी जिल्द जो है वो पीली दिखाई देती है। और क्या करना चाहिए, देखिए अब यूं तो इसकी दवाइयां भी मौजूद हैं, इंजेक्शन भी मौजूद हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह के बाद आप जांच कराते हैं, कमी महसूस होती है, डॉक्टर कहते हैं कि इंजेक्शन लीजिए, टैबलेट खाइए या फिर कैप्सूल खाइए, तो वो एक अलग चीज है। और इसके लिए होना ही चाहिए कि ग़िज़ा जो है वो अच्छी लेनी चाहिए। अब जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन का इस्तेमाल करते हैं, फिश का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर रेड मीट भी ले सकते हैं, और दूध लीजिए, पनीर लीजिए, और हरे पत्ते वाली सब्जियां लीजिए। ये इस तरह की चीज़ों का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो विटामिन बी की जो कमी है वो दूर हो सकती है, और बहुत ज़्यादा अगर कमी है तो फिर डॉक्टर से रुजू करें और जो वो बताएं उसके मुताबिक आप उसका इलाज कीजिए। ये थी चंद वो बातें जो विटामिन बी की कमी के बायस आपके लिए दुश्वारी पैदा कर सकती हैं, आपकी सेहत को कम कर सकती हैं। तो आज के सेगमेंट में बस इतना ही। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, मीडियम वेव से 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर हम आपसे मुखातिब हैं। और ये जब समाप्त कीजिए नातिया मुशायरा।
1: मोहतरम सामईन, ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की जानिब से आज के इस खुसूसी नातिया महफिल में आप सबका खैर मकदम है। मुनासिब मालूम होता है कि शुरू में उनके अस्माए ग्रामी आपके गोश गुजार कर दूं। जनाब SMA कैसर अजीज, जनाब सलीम अमरोहवी, जनाब MR कासमी, आइए अब इस मुबारक महफिल को बाकायदा आगे बढ़ाते हैं। मैं सबसे पहले जनाब SMA कैसर अजीज से गुजारिश करता हूं कि वो अपनी नात से इस महफिल का आगाज करें। जनाब कैसर अजीज,
2: अस्सलामु अलैकुम।
3: वालेकुम सलाम।
2: इरशाद गिरामी, नात का मतलब पेश करता हूं।
1: इरशाद,

0: जिस राह से भी गुजरे हैं सर कारे दो जहां,
1: जिस राह से भी गुजरे हैं सरकारे दो जहां।

0: हुआ हुआ हुआ, क्या कहने हैं साहब।
1: सामईन, अभी जनाब एस एम ए कैसर अजीज ने अपने कलाम से इस नूरानी महफिल का आगाज कर दिया। अब इसके बाद मुनासिब मालूम होता है कि

0: हजरत मुझे मुस्तफा
1: हर एक फूल ने फल ने कलमा पढ़ा गए बाग जन्नत में जब मुस्तफा।

ये नाट्य कलाम आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाजों में फिल्म पैगाम से। राजा मेहती अली खान ने इस कलाम को कलमबंद किया और मौसिकी थी एआर कुरैशी की, माफ कीजिए जीएस कोहली की दरअसल मौसिकी थी। इस नाट्य कलाम को आप तमाम सामने

पसंद फरमाया, उनके नाम शामिल करना चाहेंगे। गंज जुनवार से शमसुल कमर रही शाहिन फातिमा और अदनान खान। थोड़ा सा अपडेट करते हैं उसके बाद फिर शामिल करते हैं। सांगली चत शहर से अल्ताफ उजे सैफुल्ला और सबाहत की फरमाइश भी थी और आप हैं। उबरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज सरफराज अब्बासी, आठवीं दीवान एमपी से रामलाल चंद्रवंशी, कृष्ण चंद्रवंशी और काजल मीनाक्षी की फरमाइश भी थी और आप हैं। नाजमंजिल मैसौल सीतामढ़ी बिहार से अक्रम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, मुसात में रुबीना वसीम, सुनील पाठक, कमल पाठक, गव्या मल्होत्रा, अनारकली बाजार जगराओं से आपकी फरमाइश हमें मौसूल हुई। और कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर, अनिल शर्मा की फरमाइश भी थी और आप हैं। मधुसूदन भट्ट, आरती भट्ट और साथ में जैस्मीन भट्ट, सुखविंदर सिंह जौड़ा सीटी दीवाना की फरमाइश, कृष्णा पाठ दिल्ली से मौसूल हुई और आप हैं सतीश अनेजा और साथ में विमला निजा चंडीगढ़ सिटी से। और बबलेश पवार, डैनी पवार, मास्टर मनीष की फरमाइश थी गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से। और अगला ईमेल मौसूल हुआ है अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी और निवेश कुमार का, बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, साथ में है बिट्टा बजाज, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, लक्ष्मण लच्छनपुर से छत्तीसगढ़ से हैं विश्वनाथ साहू, पंकज साहू और तृप्ति साहू, करनाल से बलविंदर सिंह सोढ़ी और ही फरमाइशी मेल मौसूल हुआ। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से इंद्रजीत छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा और रविंदर छाबड़ा की जानिब से और आप हैं। सिद्धेश्वर अगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा और शव्या रामटेके, आसेगांव बाजार से करण रंजीत पुनकर की फरमाइश भी थी। पिंजौर से चंद्रमोहन और इंद्रमोहन भी सुनना चाहते थे इसी कलाम को। राजू माठे, गजानन माठे, संजय माठे की फरमाइश आसलगांव बुल्डाना महाराष्ट्र से मिली और आप हैं। मल्लापुर दाखा से राजेश जैन, बिट्टू जैन और साथ में उनके संजीव जैन और ये फरमाइश ईमेल मौसूल हुआ। साधु शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़ का। और अगला ईमेल रिपीट है, इसको करते हैं साइड लाइन। शेरवानी स्कूल गंज डुंडवार से आफ्ताब अहमद अंसारी, रियाज अहमद अंसारी और अहले खाना की फरमाइश भी थी। और अब सुनवाते हैं प्रोग्राम की अगली पेशकश आप तमाम सामीन को। मोहम्मद रफी, जानी बाबू कव्वाल और साथियों की आवाजों में है ये पेशकश सन ऑफ हातिम ताई फिल्म से। बुलुस ईरानी की है मौसिकी और सुनने के मुंतजिर आप तमाम सामीन। जुबैर अली खान, सबिया जुबैर, अंजुमन खान की फरमाइश किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से मौसूल हुई। और भाटापारा से बशकमल, डॉ बसंत भिरगू, मोतीलाल यादव, मुकेश भत्ता, नीलम भत्ता, वंश की फरमाइश कनेरा मोहल्ला पटियाला से मिली है। और अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबीहा और रेहान और उनके अहले खाना। बड़ी रेवी चौराहा वाराणसी से अरुण कुमार मालवीय दल, साथ में सरिता मालवीय और गांधी ग्राम गुजरात से इसे सुनना चाहते हैं प्रवीण सोनी, कलावती सोनी और प्रथम सोनी। मुरादाबाद दुलापुर गांव यूपी से फरमाइश है मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान की और आप हैं। बाबू सिंह धीमाल, बलजीदा कौन धीमान, रवनीत निशो और आपने नामदेव नगर मुक्तसर पंजाब से ये फरमाइश हमें भेजी है। और दुर्गाई सेलू से हैं चंदू कुलकर्णी, हेमलता और अहले खाना। बड़े दिनों के बाद आपका नाम दिखाई दिया है, यूं तो पता चल रहा है कि आपने पहले भी शमूलियत इख्तियार की है। हमारे बहुत पुराने सामीन में से आप हैं, हम जानते हैं, चलिए जनाब खुश आमदीद कहते हैं आपको। और फातिमा मंसूरी के साथ में फहीम मंसूरी हैं बांदा यूपी से, इसी की फरमाइश राजधानी रायपुर से की है नीलू मेघ नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार और बिट्टू कुमार ने। अगली पेशकश को आप भी सुनना चाहते हैं पुरानी बागपत से इलियास मुस्कान कुरेशी, रानी कुरेशी और बाबा जैद कुरेशी, तंबरम चेन्नई से शाहिद अली,

एक और नातिया कलाम पेश करेंगे मुबारक बेगम और हमनवा फिल्म है परवीन और मौसीकी एआर कुरैशी की कलाम राजा मेहदी अली खां का सुनना चाहते हैं। संभल से छोटे अंसारी और आज अकेले ही इन्होंने ईमेल भी इरसाल किया है, बाकी नाम गायब है। ये फरमाइश ईमेल मिला है नेहरू पार्क निजामाबाद तेलंगाना से अजीज भाई मतीन भाई और शेख चांद फारूक की जानिब से। निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया हैं, धनौरी तेलवाला से सुनने के मुंतजर अगले नकमे को। और इसी नकमे की फरमाइश की है बिशनपुर के डी झारखंड से इम्तियाज इमाम आतिश, ताहिरा परवीन आतिश और डॉक्टर मोहम्मद आसिफ रजा ने। और अगला ईमेल है गांवपुरा कोठी साउथ बिहार से आलमारा और इंतजार अंजुम और इसी नकमे को सुनना चाहते हैं। टावरचा गुमला झारखंड से एसएम जावेद, शगुफ्ता अंजुम और अगला ईमेल रिपीट है, इसको करते हैं साइड लाइन। ये फरमाइशी ईमेल मौसूल हुआ है नाला मछरट्टा फरुखाबाद यूपी से संजू चौरसिया, श्रेष्ठ चौरसिया और साथ में कुशाग्र चौरसिया। इसी नकमे को सुनने के मुंतजर हैं पुरानी भिलाई 3/14 छत्तीसगढ़ से डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीदुन सिद्दीकी, साथ में जिशान अहमद सिद्दीकी और सलोनी चौरसिया, सुबोध चौरसिया। पूजा पिंकी की फरमाइश है फरुखाबाद यूपी से। सलीम अख्तर के साथ में रेशमा बेगम अलीगढ़ से और इसी नाते कलाम को सुनने के मुंतजर हैं दमदम एयरपोर्ट कोलकाता से रेखा बसंत कुमार सिन्हा, अजय कुमार गुप्ता, बेबी अन्विका तनुश्री गुप्ता। और अगला ईमेल बहुत जल्दी रिपीट हो गया, इसको भी साइड लाइन करना पड़ेगा। बहुत से दोस्तों ने बार बार ईमेल रिपीटेशन का सिलसिला उनकी जानिब से होता है तो वक्त जाया होता है दोस्तों, और कोई बात नहीं है। धांगी नांदूरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे, साथ में अमूल्या बाठे और अब्दुल गफार डावर, अब्दुल हक डावर, जिया उलहक डावर, नागचुन रोड, संजय कॉलोनी से आपकी फरमाइश है। वैष्णव कॉलोनी से नवासी मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शादाब खत्री, अफजाल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू तसीम, बरका काना से। और ये फरमाइश ईमेल मिला है काटा रोड वाशी महाराष्ट्र से मास्टर विट्ठल सुरेशे, सुषमा सुरेशे और मायरा सुरेशे का। और मच्छिंद्रा पाटिल, कल्पना पाटिल, बुरे नगर चौबदा महाराष्ट्र से सुनने के मुंतजर ताम्रशाद प्रोग्राम की अगली पेशकश। प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा से आनंद जोशी, तनुजा जोशी, साथ में फाल्गुनी जोशी। और ये फरमाइश ईमेल मिला है मोहम्मद कलीम अंसारी, जहरा बेगम अंसारी, मोहम्मद एयान अंसारी का इस्लामाबाद कंजोटन द्वारा से। और सहसपुर लोहारा दानिया खुर्द कवर्धा से गुनी राम राजपूत, संतोषी और सूरज।

मुश्किल की इस घड़ी में नेपाल के अपने बहनों और भाइयों के साथ खड़े हैं। वजीर आजम ने कहा कि भारत नेपाल को इंसानी हमदर्दी की हर मुमकिन इमदाद फराहम करने के लिए तैयार है। जनाब मोदी ने कहा कि हमारी टीमें बचाव और राहत कोशिशों में करीबी इश्तराक के साथ तालमेल कायम कर रही हैं। नेपाल के रासुवा खित्ते में भोटे कोशी दरिया में शदीद सैलाब के तनाजुर में उत्तर प्रदेश के सरहदी जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में निगरानी तेज कर दी गई है। नेपाल में सैलाब आने की वजह से दोनों जिलों में गंडक और नारायणी दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा हो सकता है। इधर उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने नेपाल में शदीद सैलाब से होने वाले नुकसान को बहुत बायसे तशवीश करार दिया है। उन्होंने महाराजगंज और कुशीनगर में जिला इंतजामिया को हिदायत दी है कि वह सभी जरूरी तैयारियों के इकदाम को यकीनी बनाए। वजीर आला ने मकामी इंतजामिया को यह हिदायत दी है कि वह सख्त चौकसी बरकरार रखें और दरियाओं में पानी की सतह पर करीबी नजर रखें। कुदरती आफात की सूरत में काम करने वाली कौमी फोर्स एनडीआरएफ ने नेपाल में अचानक सैलाब आने के तनाजुर में सूरत हाल से निपटने की खातिर बिहार में 9 टीमें और उत्तर प्रदेश में 11 टीमें मुतयन की हैं। नई दिल्ली में नामानिगारों से बात करते हुए एनडीआरएफ के कमांडेंट ज्ञानेश्वर सिंह ने बताया कि बिहार में 9 टीमों में से 2 टीमों को गंडक दरिया के तास के इलाके मगरबी चंपारण और मुजफ्फरपुर में तैनात किया गया है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में जो 11 टीमें मुतयन की गई हैं उनमें से एक टीम को कुशीनगर में तैनात किया गया है। जनाब ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा कि नेपाल में अचानक सैलाब आने के वाकये के तनाजुर में गंडक दरिया में सैलाब आने के इम्कान के मद्देनजर एनडीआरएफ सख्त चौकसी बरत रही है। हिमालयाई मुल्क नेपाल में आए जबरदस्त सैलाब और गंडक दरिया में पानी की सतह में अचानक बढ़ोतरी के खदशे के पेश नजर बिहार में सूरतहाल से निपटने के लिए तैयारियों में तेजी आ गई है। गंडक के करीब वाके 6 जिलों मगरबी चंपारण, मशरकी चंपारण, गोपालगंज, सारंग, मुजफ्फरपुर और वैशाली को हाई अलर्ट पर रखा गया है। वजीर आला सम्राट चौधरी ने बताया कि सूरतहाल पर कड़ी नजर रखने और राहत नीज तैयारियों के इकदाम के लिए तालमेल करने की गर्ज से आला सतह की एक कमेटी तश्कील दी गई है। सीतामढ़ी, शिवहर और दीगर जिलों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हिदायत दी गई है कि वह सूरतहाल पर कड़ी और मुस्तकिल नजर रखें। मगरबी चंपारण के बगहा और वैशाली जिले के नशीबी इलाकों में रहने वाले लोगों से जोर देकर कहा जाता है कि वह जल्द से जल्द महफूज मकाम की जानिब पेशरफ्त करें। इधर नायब वजीर आला और आबी वसाइल के वजीर विजय कुमार चौधरी ने कहा कि गंडक दरिया में पानी की मौजूदा सतह निस्बतन कम है, जो कि एक मुस्बत पहलू है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज पड़ोसी मुल्क में सैलाब की सूरतहाल के तनाजुर में फोन पर वजीर आला सम्राट चौधरी से बातचीत की। जनाब शाह ने रियासती सरकार को पैदा होने वाली सूरतहाल से निपटने के लिए हर मुमकिन तआवुन फराहम करने की यकीन दहानी कराई। उन्होंने मजीद कहा कि कुदरती आफात की सूरत में बंदोबस्त करने वाली फोर्स को सूरतहाल से निपटने के लिए वहां भेजा जा रहा है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत और चीन ने सरहदी इलाकों में अमन और सुकून को बरकरार रखने और बाहमी ताल्लुकात को सेहतमंद और मुस्तकिल पेशरफ्त फराहम करने का एक माहौल कायम करने के अपने अज़्म की तौसीक की है। सरहद के सवाल पर भारत और चीन के खसूसी नुमाइंदों के दरमियान मुज़ाकरात का 25वां दौर कल बीजिंग में मुनक़िद हुआ। चीन के खसूसी नुमाइंदे सीपीसी सेंट्रल कमेटी के पॉलिटिकल ब्यूरो के मेंबर और गैर मुल्की उमूर के मरकजी कमीशन के दफ्तर में डायरेक्टर वांग यी और भारत की जानिब से खसूसी नुमाइंदे और कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने भारत चीन सरहद के सवाल पर खुशगवार और इंतहाई अमीक तबादले ख्याल किया और 8 नुकाती नतायज और इतफाक राय तक रसाई हासिल की। दोनों मुल्कों ने सरहद के सवाल के हल के लिए एक खाके पर मुजाकरात में पेशरफ्त करने के अपने अज़्म को उजागर किया। आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पैगम्बर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत ईद मिलादुन्नबी मजहबी अकीदत के साथ मनाया गया। इस मौके पर मिलाद महफिलों और सीरत नबी के जलसों का एहतमाम किया गया, जिसमें उलमाए इकराम ने पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा और तालीमात के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया। इस मौके पर मिलाद के जुलूस भी निकाले गए। सदर जमहूरिया, नायब सदर और वजीर आजम ने ओनम और ईद मिलादुन्नबी के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी। उधर कश्मीर वादी में भी ईद मिलादुन्नबी पूरे जोशो खरोश के साथ मनाई गई।
कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच में आज चौथे दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 6 विकेट पर 229 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने श्रीलंका की पूरी टीम को पहले इनिंग्स में 290 रन के स्कोर पर आउट करने के बाद फॉलो ऑन कराया। भारत की तरफ से

डिवाइन गॉड फिल्म का नगमा सुन रहे थे मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, मन्ना डे, तलत महमूद, बलबीर और साथियों की आवाजों में। नगमा निगार थे खुमार बाराबंकी और मौसीकी तरतीब दी थी नौशाद ने। सुनने के ख्वाहिशमंद थे राजकोट से रश्मि जरना और भरत कुमार। उस्तू भागलपुर बिहार से प्रदीप कुमार मंडल, आशीष मंडल, कुंदन की फरमाइश भी थी। और आप हैं जीत भावसार, प्रेमला भावसार, भावेश भावसार, फिरमगाम गुजरात से। और ये फरमाइशी मेल मौसूल हुआ मुबारकपुर उचिता किया आजमगढ़ यूपी से दिलशाद हुसैन और फातिमा सुगरा की जानिब से। और प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी की फरमाइश थी छत्तीसगढ़ पलारी से। दिलावर खाना सीनाबानो, अलीजा नैब की फरमाइश रघुवीर नगर से मौसूल हुई। और आप हैं कस्बा अग्रवाल, मंडी, बागपत यूपी से आसिफ अली खान, मुस्कान आसिफ और शारिक अली खान। आरा नगर कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंगेल, मोरस जंगेल और अजीत कुमार की फरमाइश थी। और इसी नगमे को सुनना चाहते थे हिरामन शिंडे, शीला देवी शिंडे और अहले खाना। और आप हैं लच्छनपुर से रामजी साहू और जीवन लाल रजक। और अगला मेल रिपीट है, इसको करते हैं साइडलाइन। एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर से डॉक्टर तस्सीम कौसर, डॉक्टर इशिता साहनी, डॉक्टर प्रियंका मोदी की फरमाइश भी थी। और आप हैं दिग्रस जिला यवतमाल महाराष्ट्र से किरण शिंदे, हनुमान और हनुमान दास साहू और उनके साथी इरशाद अहमद अंसारी, कामरान निषाद, हजरत तबस्सुम की फरमाइश मदरसा गेट भावपुर मड़ियाहू जौनपुर से मिली। और ये फरमाइशी मेले नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन और कृष्णा देवांगन का पलारी छत्तीसगढ़ से। बोधराज खोरवाल, कमला रानी और भानु प्रकाश की फरमाइश उत्तम नगर दिल्ली से मिली। और आप हैं मनोज सेन, दीपक सेन सौम्या, पूनम सेन, सिटी सेंटर खंडवा से। और इसी नगमे को सुन रहे थे उमारी से अनूप कुमार और उद्धव पाटिल। और ये फरमाइश आई है योगेश्वरी साहू, कुमकुम साहू और हर्ष साहू की जानिब से नयागंज वार्ड भाटापारा छत्तीसगढ़ से। और अब अगली पेशकश है पालकी फिल्म की कव्वाली, मन्ना डे, मोहम्मद रफी, आशा भोसले साथियों की गाई हुई। शकील बदायूनी का कलाम है, मौसीकी नौशाद साहब की है। और सुनना चाहते हैं आप सब नरेंद्र मिर्गे, प्रियदर्शन मिर्गे, डॉक्टर प्रियंका कालपांडे, साईनगर आरवी महाराष्ट्र से, ऊंचेगांव नांदेड़ से है देवानंद शिंदे पाटिल। और अगला ही मेल रिपीट हो गया, इसको करते हैं साइडलाइन। और सैयद मसूद, शाहीन हसन, नाजिया इब्राहिम की फरमाइश है कुमार हेड़ा सहारनपुर से। और इसी नगमे को सुनना चाहते हैं अनवर साबरी, शनु साबरी, मुदस्सिर साबरी, दाऊद सराय सहारनपुर से, राजनगर कांति निकेतन से, कुशेश्वर कांति गुप्ता, दादा ठाकुर और रुद्र गुप्ता, बगबुआ पथरिया छत्तीसगढ़ से, नरेन नेताम, कुसुम नेताम। और ये फरमाइश मिली है मनोवर लल्ला पीरजादा, नासिर मिजार, बादशाहवास की, पश्चिम थोक गंज टंडवार से, विष्णु साहू, पूरब साहू, वीरा साहू है भाटापारा छत्तीसगढ़ से। और गुरमीत सिंह मीता है साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली से। और ये फरमाइश मेल मिला है अनुपम कुमारी, साथ में है अपूर सिंह और राकेश कुमार, जमशेदपुर से आपकी फरमाइश हमें मिली है। शुगर फैक्ट्री गेवराय से दिनकर सालवे, गंगा सालवे और रंजीत थोराट। तो आइए सुनते हैं प्रोग्राम का अगला नगमा।

दोस्तों वक्त कम है तो बेहतर है कि इस वंडर प्ले करके आपका नाम शामिल कर लीजिए। आप कवाली भी सुनते रहिए और नाम भी शामिल कर लेते हैं। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया और संप्रीत पंचोलिया, और ये फरमाइश मिली है शब्बीर हुसैन, शहजाद हुसैन मुच्चू बाबा की सब्जी मंडी बुलडाना से। राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, बुल्के वाली फलनाजा, गोकुल चौक गंग जिला सहरसा से। विनोद मुड़क, नेहा जैन, दीपक मुड़क, बोरखेड़ा उज्जैन से। और अलिका डबाली से बसंत सिंह जन, राजकुमार और कुलदीप गांधी की फरमाइश भी है। और कर्नाटक के गुलबर्गा से फरमाइश की मोहम्मद रुकन मठाल, शब्बीर बनट्टी, आसिफ इकबाल ने। और शिव कुमार चौहान, संक्रांत की उत्कर्ष की फरमाइश है बाबा कुटी रायगढ़ से। और इसी कवाली को सुन रहे हैं सौरभ निषाद, प्रकाश कुमार, बलवीर निषाद, जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। और अगला ईमेल मिला है उन दोस्तों का जिनके नाम शामिल हो चुके हैं। छिपा कलोनी खंडवा से मोहम्मद यूनुस खत्री, सादिक खत्री और साथ में अयूब खत्री, कुमकुम सुरलकर, रतमाला और विजय सुरलकर की फरमाइश मोटाला से है। और आप हैं दिग्रस जिला यवतमाल महाराष्ट्र से, वो तो जो शामिल हो चुके हैं तो साइड लाइन करना पड़ेगा इस ईमेल को। डॉक्टर सुरेश यादव, अनीता यादव, स्वरूप प्रसाद यादव की फरमाइश नेहरू चौक बैठर से मिली है। और विनायक बिंडे, मंगला बिंडे, शुभम एयरपोर्ट से। और ये फरमाइश ईमेल मिला है मशु कटीरा दिल्ली से, कमल बालूजा, मधु बालूजा और सागर बालूजा का। सुभाष योगी, राजू मिगलानी, बब्बू डब्बू, कृष्णा कॉलोनी हाँसी से। हेमंत कुमार भारशंकर, प्रिया भारशंकर, ओम भारशंकर बलारपुर चंद्रनगर से हैं। राहुल मनोहर सरला और साथ में उनके बेबी प्रियांशी शाहनगर यवतमाल से। मंगलन वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, बटेना पाटन दुर्ग से आपकी फरमाइश हमें मिली है। एनुद्दीन बनट्टी, मुमताज बनट्टी, रियाज बनट्टी, गढ़ मोहल्ला मालिमपुर से। और सैयद यूनुस, सैयद उमान, तनवीर मसरत, आशीष जालना से हैं। और प्रशांत शिंदे, यशराज शिंदे, सुनीता शिंदे, रोहिदास चौक पंधारपुटी पंधारपुर सिटी से। और अगला ईमेल रिपीट हो गया, इसको करना पड़ेगा। उन्हेल जिला उज्जैन एमपी से भेरूलाल वाकतरिया धाकर, भोला वाकतरिया और साथ में प्रवीण वाकतरिया। और ये फरमाइश ईमेल बाटापारा छत्तीसगढ़ के दोस्तों है जिनके नाम शामिल हो चुके हैं और कहते हैं आज आवाज बदली बदली लग रही है। बिल्कुल जनाब, थोड़ी सी तबीयत नासाज है लेकिन आपकी मोहब्बतें खींच लाती हैं और तबीयत तो वह ठीक हो जाती है। कुमको नारायणपुर बापट्टी बलिया से ओम प्रकाश अवशर है और अमित कुमार राय है। और ये अगला ईमेल फिर रिपीट हो गया, इसको भी करना पड़ेगा साइड लाइन। और अब शामिल हो रहे हैं ईमेल के जरिए पुराना तालाब टुंडा से असमान अंसारी, वलीउल्लाह अंसारी, मोहम्मद सुल्तान अंसारी, जोहित यादव, विपिन, आयुष और उनके साथी हैं अलगी डांड कोरबा छत्तीसगढ़ से। और अगला ईमेल भी रिपीट हो गया, इसको भी ड्रॉप कर देते हैं। विजेंद्र कुमार जयजान, कांता रानी, साहिल और उनके बहुत सारे साथी हैं भोला कॉलोनी घरौंदा करनाल से। और रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, कस्बा बराड़ा, अम्बाला हरियाणा से। वसीम अकरम, सालिया खातून, गुड़िया खातून है न्यू मार्केट पटना बिहार से। और बरगद बेल हुबली कर्नाटक से हैं फैज अहमद, शाकिर मुल्ला जी और साबिर मुल्ला जी, सुशांत प्रिया, मास्टर निवेश कुमार, लड्डू कुमारी, टिम्बर मार्केट, कीर्ति नगर, नई दिल्ली से आपकी फरमाइश हमें मिली है। और कैलाश पुरवाली, दीपक पुरवाली, वेदिका है अहमदपुर के गांव खंडवा से। और ये फरमाइश मिली है गजन कुमार, पद्मावती कुमार, मधुरा की अकोला महाराष्ट्र से। और अगला ही मेल रिपीट हो गया, इसको भी ड्रॉप कर देते हैं। अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल कुमार वर्मा है सदर बाजार।

और ये है बरसात की रात फिल्म के कवाली मोहम्मद रफी, मन्ना डे, बातिश सुधा मल्होत्रा और साथियों की गायी हुई, साहिर लुधियानवी की लिखी हुई और मौसीकी है रोशन की।

इसे पसंद किया रामगंज खंडवा से विजय मोबिया, कविता मोबिया और पेंटर बाबू ने। आप उस्मान शेख फौजी, सायरा बानो करिश्मा शेख हिपर सोगा लातूर से, उत्तम कुमार भगत श्वेता भगत किशुताशु पाकुर झारखंड से, और ये फरमाइश मिली है जामानी गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल और दीपक की। और आप हैं तंगोरी मोहाली पंजाब से गुरप्रीत तंगोरी, जसबीर कौर और सहजप्रीत कौर, और इस कवाली को सुन रहे हैं डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया आरजू पटेल नगर मलोट से, और कल्पना मदन झा मानव बैंक की फरमाइश मिली सिलवासा दादरा और नगर हवेली से, और ये फरमाइश ईमेल है छोटी बल्लेकर मुंबई से अहमद भाई फूल वाले नूराइशा अहमद का, और वेद मिट्टा अलका मिट्टा नाईवाला हनुमानगढ़ राजस्थान से, एम ए वहीद रुमानी डॉक्टर मोहम्मद जमीर मोहम्मद फसीह तेलंगाना के फलौंगाबाद से, और झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटे रीटा भाटे रजत और उनके कुछ और साथी, वरुण जोनका से महेंद्र सरकटे विजय सरकटे साथ में मिलिंद सरकटे, और गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत संगीता कंवर तुषार सिंह और उनके कुछ और साथी, मोहम्मद रफीक पवार बेनजीर कौशल मोहम्मद हसैन पवार हैं ताजमंद से लक्कड़ बाजार खंडवा से, और ये फरमाइश मिली इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम मुखार निशाजीम और माहिरा अजीम की।

रामरतन टॉकीज कुंडलवाड़ी से गंगाधर सावनकर विजय लक्ष्मी सावनकर खेड से अभिजीत गोहनकर रही सरिता गोहनकर और अर्जुन गोहनकर टुक टुक अगले मेल रिपीट है इसको भी ड्रॉप करते हैं। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल नारायणी सिंगरौल और वान्या और के कुछ और साथी और ये फरमाइश मेल मिला है। दसवारा चौक मलकापुर से संजय पाटिल उषा पाटिल और संजय कुमार चौहान की जानिब से और आप हैं मोहम्मद उस्मान अंसारी मोहम्मद कली अंसारी शम अगला नाम जो है वो शामिल हो चुका है तो इसलिए साइड लाइन करना पड़ेगा। अब ये देखिए कलीम अंसारी साहब कई नाम है पहले भी हमने कहा है कि ये मामला क्या थोड़ा सा बताएं कि कन्फ्यूजन हो जाता है। बहर कैफ आगे बढ़ते हैं और बाजार फैल शेगांव महाराष्ट्र से मोहम्मद अनीस पाल मोहम्मद दानिश पाल मोहम्मद यहाँ भी एक नाम में गड़बड़ है जो शामिल हो चुका है। अब ऐसे ईमेल्स को लगता है कि ड्रॉप करना पड़ेगा तभी बेहतर रहेगा। करण हाउस हो चुके हैं जैसे बठिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जोड़ा मंजीत कौर और करणवीर करण और भंडारा रोड क्रू माला महाराष्ट्र से हर्षल पाटिल और मंदाकिनी और ये फरमाइश मिली है। टोरवाल नवाशहर से गगनदीप थांडी प्रियंका थांडी और साथ में डॉक्टर प्रियम थांडी और कुछ और साथी और अगला ईमेल व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से है भारत भूषण साथ में है अंजू श्रीवास्तव और ये फरमाइश ईमेल हो गया है रिपीट इसको भी हमने कर दिया है साइड लाइन।

महेश कुमार निषाद, रामभारानी निषाद, निखिल कुमार निषाद है मोहला मानपुर छत्तीसगढ़ से, और नागपुर से रजा खान, शमतुल खान और शमा खान, उनके कुछ और साथी सल्लर पहलगाम कश्मीर से पीरजादा मिराजुद्दीन, नजमुद्दीन और कैसर उद्दीन, और ये फरमाइश ईमेल मिला है मुडगान छत्तीसगढ़ से राम दुलारी प्रजापति, रामशरण प्रजापति और चंद्रेश कुमार का, और आप हैं अनिल मोहन, उषा मोहन, टेलू नायक, बाड़गंज मुल्तानी ढांडा से, और सामरा नगर अमरावती से रेखा संगर और संजय संगर, उनके कुछ और साथी गुलाब दास मानीपुरी, और साथ में उनके कुछ और नाम भी हैं उनको भी शामिल कर लेते हैं, राजा दास मानीपुरी, रानी मानीपुरी, लेवाई छत्तीसगढ़ से, और भाटापारा से हरविंदर चावला, सोहन जोशी, शिव कुमार शर्मा, उनके कुछ और साथी, और ये फरमाइश मिली है बुंदी चक भागलपुर से दिलीप कुमार सोनी की, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मिराज जहां लक्सर हरिद्वार से, और पंचकुला सेक्टर 9 से आशीष चुक, अश्विनी चुक, साथ में गोविंद चुक, और चंपालाल दुबे, और दर्शित दर्शिका दर्शित की फरमाइश है भोपाल से, और जॉन टिकेस्टो, रोजरी टिकेस्टो, विलिस टिकेस्टो, जनकपुरी, सहारनपुर से फरमाइश आपने भेजी है। मोहन प्रकाश गौतम, सरिता गौतम, एटा रोड गंज डुंडवारा से, और शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबे शेख, शेख रहीमुल्ला, तेलंगाना निजामाबाद से।

रजत कांग्रेस ने सुरक्षा जो को एमपी से मनमोहन राजावत राजमोहन राजावत राशि रक्षित और ये फरमाइश पूरी है भोपाल राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा कपिल छिपा और ईशान छिपा की और जींद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा जितेंद्र कौर करमजीत कौर और उनके कुछ और साथी और अगला ईमेल मिला है मोहनपुर कमालगंज फरुखाबाद से तस्कीन अहमद फारूकी और उनकी शरीक हयात का नाम आज नहीं लिखा है अगला ईमेल है कलनौर से नरेंद्र शर्मा किरण शर्मा नितिन और उनके कुछ और साथी और जैन मंदिर वाली कली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी साथ में उनके आस्कर अंसारी मोहम्मद कैफ अंसारी और ये फरमाइश ईमेल राजू टुटेजा खुशदी और मेरा टुटेजा शिव शेट्टी करणपुरी का गोविंदगढ़ माछी वाला श्री राजस्थान से आपने ये फरमाइश हमें साथ

0: और मॉडल टाउन करना से सुधीर नूतन, किरण ठाकुर, आशा किरण की फरमाइश भी थी और अनिल जैन, संयम जैन, साथ में मास्टर जीवम जैन, मल्यान सरधना मेरठ से और लक्ष्मी वाड़ी राजकोट से राजदीप जोशी, रंजन बेन जोशी, दिनकर भाई जोशी की फरमाइश भी थी और आप हैं इशरत खान, सायरा बेगम, साथ में हैं इनके और कौन, बस दो ही नाम है, गंगुला दातागंज जिला बदायूं से आपने फरमाइश शमीर साल की, काटर और वाशिम से मास्टर विठल सरोशिया, सुषमा सरोशिया, मायरा सरोशिया की फरमाइश भी थी इसी कव्वाली के लिए और राहटगांव के अमरावती से श्याम केटे और वंदना केटे और उनके कुछ और साथी और ये फरमाइशी ईमेल पश्चिमपुरी दिल्ली से मिला उत्तम सिंह जुनेजा, भूपेंद्र जुनेजा और सीमा जुनेजा की जानिब से और अगला ईमेल मुझे लगता है ये हम शामिल कर चुके हैं। गार्डन और पैठण से बाबा साहेब सरगर, ज्योति सरगर, शुभम और मनोज जेठवा, अर्चा जेठवा, बुराव के नगर से इनकी फरमाइश हमें मौसूल होती है और अगला ईमेल किसका है ये देख लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे इजाजत लेनी है। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, रॉबिन राणा और यही कवाली थी आज के तमिल शाद प्रोग्राम की आखिरी पेशकश। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।
1: सुर्खियों में आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रगति, सुशासन और बुनियादी ढांचे के क्रियान्वयन में हो रहे बदलावों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर, कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 53वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की जिसमें 6 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की समीक्षा शामिल थी। कुल मिलाकर 30,000 करोड़ रूपये से अधिक लागत वाली ये परियोजनाएं रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्रों से जुड़ी हैं और 9 राज्यों में चल रही हैं। आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में आज हम इस बैठक के महत्व, नागरिकों के लिए इसकी प्रासंगिकता और इससे जुड़े अन्य मुद्दों को समझेंगे और इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर। प्रफुल्ल जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: नमस्ते
2: प्रफुल्ल जी, कल की बैठक में चर्चा जिन विषयों पर, जिन मुद्दों पर हुई उन पर बात करने से पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रगति प्लेटफॉर्म असल में है क्या और इसका क्या महत्व है।
3: एक अनूठा प्रयास है कि जो भी विकास की परियोजनाएं बनती है, बहुत बार ऐसा होता है कि विकास की परियोजनाएं बनती तो जरूर है लेकिन उसका यदि ठीक से रिव्यू नहीं हुआ, उसका फॉलोअप नहीं हुआ तो बहुत बार योजना अच्छी होने के बाद भी उसका प्रत्यक्ष परिणाम नहीं दिखता है। इसलिए प्रगति, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, ये प्लेटफॉर्म, आईसीटी बेस्ड प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मार्च 2015 में इसको लॉन्च किया था। ये मल्टी मॉडल सिस्टम है, एक साथ बहुत सारे चीजों को आप दिखा सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में भी जा सकते हैं और खास करके जो डिलेड प्रोजेक्ट्स थे उस समय के, उसमें बहुत सारा उसको फास्ट ट्रैक करने के लिए इसका उपयोग किया गया और उसी का नतीजा है कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स डैम से रिलेटेड, रोड से रिलेटेड जो लिंगरिंग ऑन थे अनेक वर्षों से, दशकों से, उनको इस माध्यम से, तो ये बेसिकली डिजिटल डेटा मैनेजमेंट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी, इन सब का एक तरीके से इंटीग्रेशन है। इसमें स्टेट के सेक्रेटरी, यूनियन गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के संबंधित अधिकारी, ये सब उसमें जुड़ सकते हैं। तो समन्वय की एक भूमिका और समय समय पर विकास की परियोजनाओं को एक तरीके से एड्रेस करने के लिए प्रगति, प्रोग्रेस जिसको अंग्रेजी में इस एब्रिविएशन को ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो उस प्रोग्रेस को इवैल्यूएट करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म, इस रूप में हम इसको देख सकते हैं।
2: इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को लागू करने में अक्सर एक आम शिकायत उनके पूरा होने में देरी की रही है और जब हम प्रोजेक्ट्स को तेजी से आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो कभी कभी उनमें गुणवत्ता से समझौता हो जाता है और शायद यही वजह है कि कल जो बैठक हुई उसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि रफ्तार और गुणवत्ता दोनों साथ साथ चलनी चाहिए। इसे आप कैसे देखते हैं?
3: हमने सरदार सरोवर डैम से लेकर बहुत सारी परियोजनाओं में देखा, प्रधानमंत्री जी का अपना खुद का इसमें अनुभव है, कि अनेक कारणों से इस तरीके का डिले हो जाता है और वो डिले उस योजना के मूल उद्देश्य को प्राप्त करने में देरी होती है। केवल उतना नहीं, उसकी कॉस्ट भी मल्टीफोल्ड बढ़ जाती है और वो अल्टीमेटली तो लोगों पर, क्योंकि सरकार उस योजना के लिए पैसे जो खर्च करती है वो तो टैक्स कलेक्शन से ही आते हैं। और जब हमको ये दिखता है कि कोई योजना जो एक्स अमाउंट में हो रही थी उसके सडनली 3x या कभी कभी तो 10x तक उसका कॉस्टिंग बढ़ जाता है क्योंकि वो इतनी डिले हो जाती है, तो मुझे लगता है कि ये जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है, प्लानिंग के समय ही उसके आगे के जो सीढ़िया है उनको निश्चित करना, उसके गुणवत्ता के भी मानक निश्चित करना, तो क्वालिटी एंड क्वांटिटी, उसका स्पीड और उसके गुणवत्ता के आधार पर जो पैमाने हैं, उसके पैरामीटर्स हैं, उन दोनों को इंटीग्रेट करने के लिए भी प्रगति प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत उपयुक्त साबित होता है इसी कारण से।
2: समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जोर दिया कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं हैं उनको अलग अलग हिस्सों या पैकेजेस की तरह नहीं देखना चाहिए बल्कि एकीकृत इकाई के तौर पर देखना चाहिए और उसी तरह से उनकी निगरानी की जानी चाहिए, उनकी समीक्षा की जानी चाहिए। ये क्यों जरूरी है?
3: देखिए, बहुत सारी योजनाएं बनते हुए क्लियरेंसेस के इश्यूज होते हैं और उसमें बहुत सारी मिनिस्ट्रीज का भी रोल होता है। मतलब योजना रेलवे की है लेकिन उसमें एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का भी क्लियरेंस है, कभी NHAI का भी, मतलब रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का भी आता है। यदि हम इस सारी योजना को प्लानिंग के स्टेज पर ही इंटीग्रेटेड अप्रोच में एकात्म दृष्टि से देखें तो क्या होगा? दो चीजें होंगी, एक टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, जो है आर्थिक और जो तकनीकी दोनों विषयों पर उस फिजिबिलिटी को हम इंटर डिपार्टमेंटल कोऑपरेशन से वर्कआउट कर पाएंगे। दूसरा, जैसे हम बहुत बार देखते हैं कि मान लीजिए रोड का काम हो गया और रोड का काम होने के बाद ध्यान में आता है अरे यहाँ से तो बाद में कोई मेजर अंडरग्राउंड केबलिंग का काम होना था या ड्रेनेज का काम होना था, फिर वो रोड जो है वो उसका नुकसान होता है। यदि इंटीग्रेटेड अप्रोच से प्लानिंग रही और उसका एग्जीक्यूशन रहा तो अपने आप ही उसकी कॉस्ट भी कम हो जाती है और लोगों को उसका, उस योजना का पूरा लाभ भी मिल सकता है। तो एक तरफ टेक्निकल इकोनॉमिक फिजिबिलिटी का एस्पेक्ट है, दूसरा इसकी टाइम पर डिलीवरी और उस योजना के संपूर्ण उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए ये एकात्म दृष्टि बहुत आवश्यक है।
2: हम जब इस एकीकृत इकाई की तरह देखने की बात करते हैं तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं होती हैं उनके लिए जब एकीकृत पहल अपनाते हैं तो उसके लिए अलग अलग मंत्रालयों का, विभागों का और केंद्र और राज्य सरकारों के बीच तालमेल होना भी चाहिए। ये तालमेल कितना जरूरी और कितना चुनौतीपूर्ण होता है?
3: मुश्किल जरूर होता है और इसके अनेक कारण हो सकते हैं। जैसे एक तो स्वाभाविक रूप से लोगों को दिखता है वो राजनीतिक कारण होता है, किसी राज्य स्तर पर किसी एक की सरकार है दूसरी तरफ दूसरी, लेकिन समान राजनीतिक दल की सरकार होने के बाद भी या केंद्र सरकार के भी विभिन्न, मुझे शुरू में याद है जब फास्ट ट्रैक पर रेलवे के प्रोजेक्ट बनाने की बात हुई थी तो उसमें बहुत सारे जमीन के मामले जो है वो एनवायरमेंट के विषय में फंस जाते थे
2: जी।
3: और वो क्लियरेंस मिलते मिलते देर हो जाती थी, इसमें रेलवे की कॉस्ट बढ़ जाती थी। ये दूसरा विषय होता है। तीसरा, हर डिपार्टमेंट का अपना एक वर्क कल्चर और एक अपनी काम करने की पद्धति विकसित होती है, उसके बारे में वो प्रेसिडेंस के आधार पर चलता है। गवर्नमेंट की अपनी एक मेमोरी होती है, वो डिपार्टमेंट की मेमोरी होती है, उसमें वो बहुत बड़ा बदलाव करना नहीं चाहते क्योंकि उसमें नियमों में और इसमें भी कहीं उनको बदलाव करने पड़ते हैं। तो ये तीसरा महत्वपूर्ण कारण होता है। चौथा कारण ये होता है कि अभी बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं जो इस प्रोसेस में इंटरवीन करते हैं, तो कभी एनवायरमेंट के नाम पर, कभी सोशल जस्टिस के नाम पर, कभी और अनेक विषयों के नाम पर एक्टिविज्म जब शुरू होता है या लीगल प्रोसेसेस में उसमें हस्तक्षेप किया जाता है तो ये समन्वय और भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो लीगैलिटीज भी फिर इंटर डिपार्टमेंटल कॉम्प्लेक्सिटीज को बढ़ा देती है। तो इस कारण से ये बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन है और ये जो एकीकृत अप्रोच है किसी भी परियोजना के प्लानिंग में ही उसको इंटीग्रेटेड अप्रोच में देखने का, उसके कारण मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारा विषय सेक्रेटरीज के लेवल पर वहीं पे एड्रेस हो जाता है और उसको फिर एक्चुअल एग्जीक्यूशन के लेवल पर बहुत सारे वो विषय स्मूदनिंग वे में हैंडल हो सकते हैं जो पहले शायद प्लानिंग के लेवल पर नहीं आते थे, एग्जीक्यूशन के लेवल पर आ जाते थे।
2: जी, अभी हम बात कर रहे थे, आपने जैसा कहा कि जब भी ये परियोजनाएं बनती हैं या जब ये लागू होती हैं तो देरी होने की वजह से इसकी जो कीमत होती है, इसकी जो लागत होती है वो काफी बढ़ जाती है। जो इसका असर होता है वो अंतिम उपयोगकर्ता यानी कि हम एंड यूजर जिनको कहते हैं, आम आदमी, व्यवसायों और आखिरकार अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। तो इससे निपटने के लिए प्रगति प्लेटफॉर्म की कितनी अहम भूमिका है?
3: बहुत बड़ी भूमिका है। कल की बैठक में प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा कि हमको एंड टू एंड अप्रोच इसमें लेना चाहिए और जो क्रिटिकल गैप्स है उनको फिलअप करने के लिए हमको कमीशनिंग के समय और डिलीवरी के समय हम किन उद्देश्यों से इस प्रोजेक्ट को शुरू करना चाह रहे हैं और वो उद्देश्य हम सफलतापूर्वक लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं या नहीं। तो गुणवत्ता का एक पैरामीटर तो ये भी है ना कि जिनके लिए बना रहे हैं उन तक वो योजना पहुंच रही है नहीं, या उसके कारण उनका जैसे ईज ऑफ लिविंग की बात आजकल आती है तो उनका सही में उसके कारण जीवन मान जो है वो सहज हो रहा है या नहीं। मुझे लगता है कि प्रगति जैसे टेक्नोलॉजी, मल्टी मॉडल टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए, इंटर डिपार्टमेंटल डायलॉग का उपयोग करते हुए इन योजनाओं के बारे में पहले नियोजन और फिर कार्यान्वयन होना, उसका एक तरीके से अनुवर्तन होना, फॉलोअप होना, ये सारी चीजें मुझे लगता है कि प्रगति प्लेटफॉर्म ने सहज की है और उसका निश्चित इस संदर्भ में उपयोग है।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने एक बात और कही इस बैठक में कि उन्होंने कहा कि बड़े परिवहन और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की प्लानिंग करते वक्त ढांचागत सेवाओं यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज के लिए कॉमन यूटिलिटी कॉरिडोर की संभावना तलाशनी चाहिए। तो ये यूटिलिटी कॉरिडोर जिनकी बात प्रधानमंत्री कर रहे थे वो लागत कम करने और लागू करने में, जो भी परियोजनाएं हैं उनको लागू करने में आने वाली रुकावटों को दूर करने में क्या भूमिका निभा सकते हैं और कितने जरूरी हैं?
3: बिल्कुल जरूरी है। देखिए, अभी जैसे मान लीजिए कि फ्राइट कॉरिडोर बन रहा है और रेलवे ने इस पर बहुत बड़ा प्रगति की है, तो क्या ऐसी संभावना ही नहीं हो सकती कि

0: जहां पे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के लिए भी उस कॉरिडोर का कुछ ना कुछ, क्योंकि बहुत सारे संसाधन हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक केवल रेलवे के माध्यम से नहीं पहुंचाए जाते, तो कॉस्ट जो किसी भी चीज की जो बढ़ती है वो ट्रांसपोर्टेशन के कारण बहुत ज्यादा कॉस्ट बढ़ती है। हम कॉरिडोर क्रिएट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज के लिए जहां पे भी संभव हो, तो हम इसमें ना केवल कॉस्ट इफेक्टिव इन सारे ट्रांसपोर्टेशन की एक्टिविटी को कर पाएंगे, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी बहुत ज्यादा फिजिबल हो जाएंगे। तीसरा, हम बहुत सारे संसाधनों का कॉमन यूटिलाइजेशन अलग अलग मिनिस्ट्रीज के प्रोजेक्ट्स में कर पाएंगे, और उसके कारण जो कम स्थान पर अधिक यूटिलाइजेशन उस प्रोजेक्ट का हो सकता है। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि एविएशन सेक्टर के लिए अलग इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर में कुछ फैसिलिटी, अभी तो मैं केवल कार्गो के संदर्भ में बोल रहा हूँ, रेलवे के लिए अलग है, लेकिन वो है एक ही स्थान से।
1: बिल्कुल,
0: तो वो अलग अलग जगह पर क्यों हो, फिर वो कॉमन हो सकती है, उसमें स्पेस शेयरिंग हो सकता है, प्राइवेट इंडस्ट्री वैसे करती है, तो ये गवर्नमेंट इसमें भी हो सकता है।
1: डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत एग्री स्टैक और कृषि डेटा से ज्यादा फायदा उठाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के इस्तेमाल पर भी इस बैठक में चर्चा हुई। किसानों के लिए ये कितना जरूरी देखते हैं आप?
0: ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। एग्री स्टैक के माध्यम से एक बार किसान इसमें इस पोर्टल पर रजिस्टर हो जाएगा तो डिजिटल टेक्नोलॉजी का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, सारा ही एग्रीकल्चर डेटा कि किस तरीके की फसल आने की संभावना है, किस तरीके का उसको रिटर्न मिलने की संभावना है, उसकी सरकार खरीद करेगी तो उसके लिए उसको क्या मिलने की संभावना है, ये तीनों चीजों का इंटीग्रेशन ही एग्री स्टैक के माध्यम से संभव होगा। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी जो दिक्कत ग्राउंड पर अभी आ रही है, क्योंकि भारत का किसान इस तकनीक के बारे में बहुत ज्यादा उसको ट्रेन नहीं किया गया है, तो अभी कुछ स्थानों पर इसका, जिसको हम कह सकते हैं कि ओरिएंटेशन या प्रशिक्षण, तो मुझे लगता है कि डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन में ये जो किसानों के अलग अलग कोऑपरेटिव्स बने हैं, संगठन बने हैं, इस प्रशिक्षण योजना में उपयोग होता है, तो एग्री स्टैक ये लॉन्ग टर्म में हमारी फूड सिक्योरिटी और उसके साथ साथ हमारा जो असेसमेंट है सारा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का, उसके प्रोसेसिंग का, उसके परचेसिंग का, इसमें एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होगा।
1: प्रगति, हम जैसे बात कर रहे थे इसको शुरू हुए एक दशक से ज्यादा हो चुका है, तो भारत में गवर्नेंस को ज्यादा बेहतर बनाने और जवाबदेह बनाने में अब तक ये किस तरह की भूमिका निभा चुका और आगे आप इसके लिए क्या देखते हैं, आने वाले सालों में ये कितनी और महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है?
0: देखिए, हम पिछले 10-12 साल में, खास करके प्रगति का ये आने के बाद, जिस तरीके का हम सारा ये देख रहे हैं कि कितने गति से प्रोजेक्ट्स कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स तो बिफोर टाइम डिलीवर हुए हैं। प्रधानमंत्री अपने खास करके राजनीतिक भाषणों में हमेशा कहते हैं कि जिसका हम भूमि पूजन करते हैं उसी का फीता हम ही काटते हैं, तो ये एक सेंटेंस ये दिखाता है कि इसके कारण प्रोजेक्ट डिलीवरी की कितनी एफिशिएंसी बढ़ गई है। लेकिन इसके साथ साथ जो कॉस्ट एस्केलेशन होता था उसमें कटौती हुई है, इंटर डिपार्टमेंटल इंटीग्रेशन इसमें बढ़ा है, और सबसे महत्वपूर्ण इस सारे काम में टेक्नोलॉजी का यूज इंटीग्रेशन में वो बढ़ा है, और मुझे लगता है इसके कारण ईज ऑफ लिविंग में एक बहुत बड़ा अंतर आया है। हमने एंड टू एंड डिलीवरी में बहुत बड़ी छलांग लगाई है, हमारी बहुत सारी कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन की इसके कारण घटी है, तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा अचीवमेंट गवर्नेंस के डिलीवरी के संबंध में हमने प्राप्त किया है।
1: प्रफुल्ल केतकर जी, आपने आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में भाग लिया और हमारे साथ इस विषय पर चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रगति, सुशासन और बुनियादी ढांचे के क्रियान्वयन में हो रहे बदलावों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी अनुभा रोहतगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में,
4: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत चंद कवालियां, फनकार हैं इरशाद रहमत कवाल और हमनवा।

अभी आप कवालियों से लुत्फंदोज हो रहे थे, फनकार थे इरशाद रहमत कवाल और हमनवा। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, मीडियम वेव 1031।

0: क्रिकेट में कोलंबो टेस्ट में भारत ने अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली है। फॉलो ऑन के बाद चौथे दिन का खेल खत्म होने तक मेजबान श्रीलंका ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 6 विकेट पर 229 रन बना लिए थे। इसी के साथ आलमी खबरों का यह बुलेटिन अब खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस। क्लासिकी मौसीकी में लीजिए आप सुनिए जिया मोहिद्दीन डागर का सरस्वती वीणा पर बजाय राग तोड़ी और राग

की मौत हो गई है और 133 भारतीय नागरिकों समेत 750 से अधिक लोग लापता हैं। चीन में पेचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों में हाल में आई अचानक बाढ़ से आसपास फंसे भारतीय नागरिक हेल्पलाइन नंबरों से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मदद के लिए भारतीय नागरिक दूतावास से 0086-185-1428-4905 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर भी संपर्क किया जा सकता है। उस क्षेत्र में मौजूद चीनी अधिकारियों से 0086-139-899-0012 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। काठमांडू में भारतीय दूतावास के हेल्पलाइन नंबर 977-985-131-6807 और 977-970-910-7500 हैं। इन दोनों नंबरों पर व्हाट्सएप पर भी संपर्क किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत इस कठिन घड़ी में नेपाल के साथ है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में बचाव और राहत कार्यों के लिए हर संभव मानवीय सहायता की पेशकश और एकजुटता की भावना व्यक्त करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। श्री मोदी के फोन कॉल और गहरी संवेदनाओं पर आभार जताते हुए श्री बालेन्द्र शाह ने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में कहा कि हम इस मुश्किल समय में नेपाल के प्रति आपके एकजुटता भरे शब्दों और सहायता की उदार पेशकश की अत्यंत सराहना करते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर कहा कि उन्होंने इस प्राकृतिक आपदा पर नेपाल के प्रधानमंत्री श्री बालेन्द्र शाह से बात की और वहां बाढ़ से हुई जनहानि पर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने संदेश में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने को तत्पर है और भारतीय टीमें बचाव और राहत कार्यों में मिलकर मदद मुहैया करा रही हैं। भारत ने नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में मदद के लिए 10 टन मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री, अस्थायी आश्रय के लिए तंबू, कंबल, स्वच्छता किट, सोलर लैंप और दवाइयां C-30J विमान से भेजी हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि इस संकट की घड़ी में भारत नेपाल और वहां के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। विश्व बैंक ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को बचाव, राहत और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए 25 अरब नेपाली रुपए की आपातकालीन आर्थिक सहायता की पेशकश की है। नेपाल के लिए विश्व बैंक के कंट्री डायरेक्टर डेविड सिस्लेन ने नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले को बताया कि बाढ़ की खबर मिलने के तुरंत बाद आपातकालीन सहायता के तौर पर अलग अलग स्रोत से 25 अरब नेपाली रुपए जुटाने का काम शुरू किया गया। भारत ने नेपाल सरकार को तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री उपलब्ध कराई है। नेपाल के वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि चीन ने भी नेपाल को तुरंत आर्थिक मदद देने का वादा किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने बिहार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से नेपाल में आई बाढ़ के बारे में बात की। श्री शाह ने कहा कि जिन सीमावर्ती इलाकों में बाढ़ का असर हो सकता है वहां स्थानीय प्रशासन और राहत तथा बचाव टीमों के साथ ही राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मिजोरम में 6 सड़कों के निर्माण के लिए 256,70,00,000 रूपये मंजूर किए जाने की घोषणा की है। श्री गडकरी ने बताया कि इन सड़कों की कुल लंबाई 82.89 किलोमीटर होगी और इनका निर्माण केंद्रीय सड़क अवसंरचना योजना के अंतर्गत किया जाएगा। भारत और अमेरिका ने द्विपक्षीय नागरिक परमाणु सहयोग में हुए विकास और इस क्षेत्र में संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की समुद्र में उपयोग के लिए लाइसेंस प्राप्त परमाणु प्रौद्योगिकी पहल के शुभारंभ से पहले परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष अजीत कुमार मोहंती ने वाशिंगटन में अमरीकी ऊर्जा सचिव क्रिस राइट से मुलाकात की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आपने सुना ये गीत दिल अपना और प्रीत पराई से लता मंगेशकर की आवाज में। अगला गीत आइए सुनवाते हैं, मोहम्मद रफी का स्वर है।

गीत सुनहरे कार्यक्रम में अगला गीत आपके लिए आ रहा है, फिल्म वो कौन थी। जी हाँ, आपने सही समझा कि कौन सा गीत आप तक आने वाला है। सुरों की कोकिला लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत है, मदन मोहन ने संगीत से पिरोया है और बोल राजा मेहदी अली खान के हैं।

0: बरसों बाद मैं खुदने निकली हूं। ऐसा लगता है कि वो किसी और शब्द की बात थी।
1: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
0: पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।
1: एक काम करें, जब तक तुम यहां हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे। कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारी शॉल कहाँ है?
0: भूल गई। ना ना,
1: तुम नहीं बदलोगी।

0: सुनार जी, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे
1: कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।

0: बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

अब आइए आपको अगला गीत सुनवाते हैं, फिल्म मेरे जीवन साथी से किशोर कुमार की आवाज है, बोल मजरूह सुल्तानपुरी के हैं और संगीत से पिरोया है आरडी बर्मन ने।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुनहरे और पुराने फिल्मी नगमों का सफर जारी है। तो चलिए अगला गीत सुनवाने जा रहे हैं फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा से, किशोर कुमार की आवाज है।

गीत सुनहरे कार्यक्रम में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं इस कार्यक्रम का आखिरी गीत। फिल्म कटी पतंग से ये आ रहा है किशोर कुमार की आवाज में।

0: इसी गीत के साथ गीत सुनहरे कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अपनी दोस्त कीर्ति को दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत। अब समय है समाचारों का।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अभिनय सक्सेना। नेपाल तिब्बत सीमा के भोटे कोशी नदी में अचानक आई बाढ़ से मध्य नेपाल में कई कस्बे और गांव तबाह हो गए हैं, पुल बह गए हैं और दर्जनों जल विद्युत परियोजनाएं ठप हो गई हैं। इस विनाशकारी बाढ़ में लगभग 100 लोगों की मौत हो गई है और 133 भारतीय नागरिकों समेत 750 से अधिक लोग लापता हैं। राहत और बचाव कार्य जारी हैं। चीन में पेचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों में हाल में अचानक बाढ़ आई से फंसे भारतीयों नागरिक हेल्पलाइन नंबरों से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मदद के लिए भारतीय नागरिक दूतावास से 0086-185-1428-4905 पर संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर भी संपर्क किया जा सकता है। उस क्षेत्र में मौजूद चीनी अधिकारियों से 0086-139-8999-0012 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। काठमांडू में भारतीय

0: आवास के हेल्पलाइन नंबर 9779851318007 और 9779701705000 है। इन दोनों नंबरों पर व्हाट्सएप पर भी संपर्क किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत इस कठिन घड़ी में नेपाल के साथ है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि उन्होंने इस प्राकृतिक आपदा पर नेपाल के प्रधानमंत्री श्री बालेन्द्र शाह से बात की और वहां बाढ़ से हुई जनहानि पर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने संदेश में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने को तत्पर है और भारतीय टीमें बचाव और राहत कार्यों में मिलकर सहायता उपलब्ध करा रही हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में बचाव और राहत कार्यों के लिए हर संभव मानवीय सहायता की पेशकश की और एकजुटता की भावना व्यक्त करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। श्री मोदी के फोन कॉल और गहरी संवेदनाओं पर आभार जताते हुए श्री बालेन्द्र शाह ने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में कहा कि हम इस मुश्किल समय में नेपाल के प्रति आपके एकजुटता भरे शब्दों और सहायता की उदार पेशकश की अत्यंत सराहना करते हैं। इस बीच भारत ने नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में मदद के लिए 10 टन मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री, अस्थायी आश्रय के लिए तंबू, कंबल, स्वच्छता किट, सोलर लैंप और दवाइयां C-130J विमान से भेजी हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि संकट की इस घड़ी में भारत नेपाल और वहां के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। विश्व बैंक ने बाढ़ से प्रभावित नेपाल को बचाव, राहत और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए 25 अरब नेपाली रुपए की आपातकालीन आर्थिक सहायता की पेशकश की है। नेपाल के लिए विश्व बैंक के कंट्री डायरेक्टर डेविड सिस्लेन ने नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम बागले को बताया कि बाढ़ की खबर मिलने के तुरंत बाद आपातकालीन सहायता के तौर पर अलग अलग स्रोत से 25 अरब नेपाली रुपए जुटाने का काम शुरू किया गया। भारत ने नेपाल सरकार को तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री उपलब्ध कराई है। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि वैश्विक स्तर पर प्रासंगिक बने रहने में भारत के लिए कौशल के साथ साथ बौद्धिक क्षमता निर्माण भी उतना ही आवश्यक है। उन्होंने नई दिल्ली में क्षमता निर्माण पर आयोजित एक गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि तेजी से बदलते तकनीकी और वैश्विक परिवेश का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए क्षमता निर्माण को व्यक्तिगत कौशल आधारित दृष्टिकोण से विकसित होकर एक सामूहिक और समग्र समाज के प्रयास में तब्दील होना चाहिए। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जारी निर्देशों पर हुई प्रगति का जायजा लिया गया और चल रही पहलों के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। श्री जोशी ने समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने और प्रभावी ढंग से आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने की जरूरत पर बल दिया। सरकार ने आगामी महीनों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी कीमतों के दबाव नियंत्रित करने के लिए बफर स्टॉक से प्याज चरणबद्ध और लक्षित तरीके से जारी करना शुरू कर दिया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक मंत्रालय ने 2025-26 के लिए प्याज का अनुमानित उत्पादन 3 लाख मीट्रिक टन रहने की बात कही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. A massive flash flood swept through the northern part of Nepal near the border with Tibet, claiming 46 lives so far and leaving 500 people missing, including over 100 Indians. The flood surged through the Bhote Koshi River yesterday from the direction of Tibet. Preliminary reports suggest that the flash flood may have been triggered by an earthquake that caused an avalanche, sending large quantities of melted snow into the Bhote Koshi River. Rescue and relief operations have been intensified, with the Nepal Army deploying helicopters and disaster response teams to support search operations. Security officials said 93 people have been rescued from different parts of the affected areas. According to the Nepal Tourism Board, NTB, those reported missing include foreign nationals and Nepalese citizens. Among the foreign nationals, 105 are Indians, while 37 are NRIs, most of whom were travelling to Tibet for the Kailash Mansarovar Yatra. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan,

आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एयर लाइव न्यूज 24x7 चैनल पर। रात्रि के 2:10 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत बहार। मैं हूं आपकी दोस्त कीर्ति आपके साथ, और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक, और बिल्कुल फेहरिस्त तैयार है। इन गीतों के सफर पर चलने के लिए आप और हम भी तैयार हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ।

0: आप सुन रहे थे नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक का कार्यक्रम गीत बहार, और इसी गीत के साथ अब इस कार्यक्रम को संपन्न करने की मैं आपसे चाहूंगी इजाजत। आपकी दोस्त कीर्ति थी आपके साथ। फिलहाल रात्रि के 3 बजने वाले हैं, कुछ ही देर में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। नेपाल तिब्बत सीमा के भोटे कोशी नदी में अचानक आई बाढ़ से मध्य नेपाल में कई कस्बे और गांव तबाह हो गए हैं। पुल बह गए हैं और दर्जनों जल विद्युत परियोजनाएं ठप हो गई हैं। इस विनाशकारी बाढ़ में लगभग 100 लोगों की मौत हो गई है और 133 भारतीय नागरिकों समेत 750 से अधिक लोग लापता हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। चीन में पेचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों में हाल में आई अचानक बाढ़ में फंसे भारतीय नागरिक हेल्पलाइन नंबरों से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मदद के लिए भारतीय नागरिक दूतावास से 0086-185-1428-4905 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर भी संपर्क किया जा सकता है। उस क्षेत्र में मौजूद चीनी अधिकारियों से 0086-139-899-0012 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। काठमांडू में भारतीय दूतावास के हेल्पलाइन नंबर 977-985-131-6807 और 977-970-910-7500 हैं। इन दोनों नंबरों पर व्हाट्सएप पर भी संपर्क किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत इस कठिन घड़ी में नेपाल के साथ है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि उन्होंने इस प्राकृतिक आपदा पर नेपाल के

0: प्रधानमंत्री श्री बालेन्द्र शाह से बात की और वहां बाढ़ से हुई जनहानि पर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने संदेश में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने को तत्पर है और भारतीय टीमें बचाव और राहत कार्यों में मिलकर सहायता उपलब्ध करा रही हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में बचाव और राहत कार्यों के लिए हर संभव मानवीय सहायता की पेशकश और एकजुटता की भावना व्यक्त करने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद दिया है। श्री मोदी ने फोन कॉल और गहरी संवेदनाओं का आभार व्यक्त करते हुए श्री बालेन्द्र शाह ने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में कहा कि हम मुश्किल समय में नेपाल के प्रति आपके इस एकजुटता भरे शब्दों और सहायता की उदार पेशकश की अत्यंत सराहना करते हैं। इस बीच भारत ने नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में मदद के लिए 10 टन मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री, अस्थायी आश्रय के लिए तंबू, कंबल, स्वच्छता किट, सोलर लैंप और दवाइयां C-130J विमान से भेजी हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि इस संकट की घड़ी में भारत नेपाल और वहां के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। गृहमंत्री अमित शाह ने बिहार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से नेपाल में आई बाढ़ के बारे में बात की। श्री शाह ने कहा कि जिन सीमावर्ती इलाकों में बाढ़ का असर हो सकता है वहां स्थानीय प्रशासन और राहत तथा बचाव टीमों के साथ ही राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। विश्व बैंक ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को बचाव, राहत और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए 25 अरब नेपाली रूपये की आपातकालीन आर्थिक सहायता की पेशकश की है। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने तथा द्विपक्षीय संबंधों के स्वस्थ और स्थिर विकास के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। सीमा के मुद्दे पर भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच वार्ता का 25वां दौर पेचिंग में आयोजित किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि व्यस्ततम रेल लाइनों को 4 लेन में बदलने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि देश में 7 व्यस्ततम रेल मार्ग हैं जो तकरीबन 11,000 किलोमीटर तक फैले हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली हावड़ा, हावड़ा चेन्नई, चेन्नई मुंबई, मुंबई दिल्ली, दिल्ली चेन्नई, मुंबई हावड़ा और दिल्ली गुवाहाटी 7 व्यस्ततम रेल मार्ग हैं। भारतीय चिकित्सा संघ IMA ने इन्फ्लुएंजा AH1N1 के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। IMA ने कहा कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। मेघालय मंत्रिमंडल ने चक्रवात के अलावा आंधी तूफान और तेज हवाओं को राज्य में स्थानीय आपदा घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस घोषणा का उद्देश्य प्रशासनिक स्पष्टता देना और सुनिश्चित करना है कि ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित समुदायों को समय पर राहत मिल सके। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। A massive flash flood swept through the northern part of Nepal near the border with Tibet, claiming 46 lives so far and leaving 500 people missing, including over 100 Indians. The flood surged through the Bhote Koshi River yesterday from the direction of Tibet. Preliminary reports suggest that the flash flood may have been triggered by an earthquake that caused an avalanche, sending large quantities of melted snow into the Bhote Koshi River. Rescue and relief operations have been intensified, with the Nepal Army deploying helicopters and disaster response teams to support search operations. Security officials said 93 people have been rescued from different parts of the affected areas. According to the Nepal Tourism Board, NTB, those reported missing include foreign nationals and Nepalese citizens. Among the foreign nationals, 105 are Indians, while 37 are NRIs, most of whom were travelling to Tibet for the Kailash Mansarovar Yatra. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi expressed grief at the loss of lives in the neighbouring country. Mr. Modi spoke to his Nepalese counterpart Balendra Shah and conveyed his condolences. In a social media post, the Prime Minister said India is ready to provide all possible humanitarian assistance to Nepal. Prime Minister of Nepal Balendra Shah thanked Prime Minister Narendra Modi for his warm words of solidarity and offering all possible humanitarian assistance to the flood-hit country for the rescue and relief operations. Meanwhile, India has dispatched 10 tons of humanitarian assistance and disaster relief and essential medicines to support the people of Nepal. The Indian Embassy in Kathmandu has issued emergency numbers for assistance and information regarding Indian nationals affected by flash floods in Nepal. The embassy said that people requiring assistance can contact the embassy on helpline plus 977-985-131-6807 plus 977-970-910-7500 and plus 977-981-032-6117. These emergency contact numbers can also be contacted through WhatsApp. Bihar has stepped up preparedness following flash floods in the Himalayan nation and the possibility of a sudden rise in the water level of the Gandak River. Heightened vigilance is being maintained in six districts of Bihar: West Champaran, East Champaran, Gopalganj, Saran, Muzaffarpur and Vaishali. Chief Minister Samrat Chaudhary said that a high-level team has been constituted to closely monitor the situation. Union Home Minister Amit Shah spoke to Chief Minister Samrat Chaudhary over the phone in view of the flood situation in neighbouring country. Mr. Shah assured the state government of providing all possible assistance to deal with the emerging situation. In Uttar Pradesh as well, vigilance has been intensified in the districts of Maharajganj and Kushinagar near the Nepal border. Chief Minister Yogi Adityanath has directed the local administration to take all necessary precautionary measures and maintain strict vigil. NDRF Commandant Ganeshwar Singh said, "The National Disaster Response Force NDRF has deployed 9 teams in Bihar and 11 teams in Uttar Pradesh to deal with the emerging situation following the flash floods in Nepal." The World Bank has offered 25 billion Nepalese rupees in emergency financial assistance to flood-hit Nepal for the rescue, relief and reconstruction of affected areas. The World Bank's country director for Nepal, David Suzlan, informed Finance Minister Swarnim Wakle that soon after news of the flood spread, up to 25 billion Nepalese rupees could be mobilized from various sources as emergency assistance. Union Minister of Railways Ashwini Vaishnaw has said that Indian Railways is moving towards four-laning the entire high-density railway routes. In a social media post, Mr. Vaishnaw said there are 7 high-density routes spread over nearly 11,000 kilometers and carry a major share of the country's rail traffic. The 7 high-density routes are Delhi-Howrah, Howrah-Chennai, Chennai-Mumbai, Mumbai-Delhi, Delhi-Chennai, Mumbai-Howrah and Delhi-Guwahati. And that is the end of this news bulletin.

ये आकाशवाणी दिल्ली का ये लाइव न्यूज 24x7 चैनल है और स्टूडियो की घड़ी में रात के 3:10:15 हुए हैं। श्रोताओं, ये वक्त है कार्यक्रम गीतों और गजलों का। आज के गीत गजल कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी अपनी सरिता। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज करते हैं मिताली की खूबसूरत आवाज के साथ।

मुझे सुनते हैं अगली पेशकश एक बार फिर मिताली की आवाज में ही। आप सुन रहे हैं गीतों और गजलों का कार्यक्रम अपनी दोस्त सरिता के साथ।

जनाब अब्दुल हमीद अदम साहब का एक मशहूर कता पेश कर रहा हूं। बहुत ही खूबसूरत कता है जिसमें अदम साहब ने रंग खुशबू और नाज की एक खूबसूरत तस्वीर पेश की है। इसी अंदाज की एक नई गजल, एक ताजा तरीन गजल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। पहले कतार से

0: श्रोताओं, गीतों और गजलों का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अपनी दोस्त सरिता को दीजिए जाने की इजाजत। नमस्कार। यह आकाशवाणी दिल्ली का एआई लाइव न्यूज 24x7 चैनल है और स्टूडियो की घड़ी में प्रातः 4 बजे हैं। लीजिए सुनते हैं अगला कार्यक्रम।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

ऋषि व पुरोहित से सुप्रभातम सुनिए। रचना ज्ञानानंद सरस्वती की है, स्वर दिया है पारसाला पुन्नमल ने।

0: इसी के साथ अर्चना कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का एयर लाइव न्यूज 24x7 चैनल है और समय हुआ है रात 4:20। लीजिए सुनते हैं कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म। आज के कार्यक्रम में आप सुनेंगे SR जानकी रमन का गायन। वायलिन पर आपका साथ दिया है सुश्री लक्ष्मी नारायण शास्त्री ने।

अभी आप सुन रहे थे कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म। आज के कार्यक्रम में आपने सुना SR जानकी रमन का गायन। आपके साथ वायलिन पर थी लक्ष्मी नारायण शास्त्री। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। आज बृहस्पतिवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की पांचवी तिथि, तदनुसार 27 अगस्त 2026। सुबह के 4:53 और 55 सेकेंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से अवगत करा देते हैं। अब से थोड़ी ही देर में ठीक 5:10 पर सुनेंगे आप कार्यक्रम आओ योग करें। आज के कार्यक्रम में आप सुनेंगे उज्जायी प्राणायाम और वृक्षासन के बारे में। देशभक्ति गीतों का वक्त रहेगा प्रातः 5:20। 5:30 पर आप सुन सकते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी। छह बजकर 10 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वंदना। प्रातः 6:40 का वक्त रहेगा चिंतन कार्यक्रम का। आज के चिंतन कार्यक्रम में आप सुनेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में। प्रातः 6:45 का वक्त है श्री रामचरितमानस से पाठ का। आज इसके अंतर्गत आप सुनेंगे

अयोध्या कांड का भाग 30। मैं 7:10 पर आप सुन सकते हैं संगीतिका गीतों भरी गुड मॉर्निंग। इस कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं आप आज सुबह 7:30 पर। 8:45 का वक्त है भारतीय शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वरगंगा का। नौ बजकर 15 मिनट पर होगा कार्यक्रम उद्योग पत्रिका मिट्टी दी महक। इसका वक्त रहेगा 9:30 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद, इसका आनंद ले सकते हैं आप 10:10 पर। और 11:10 पर सुनेंगे आप कार्यक्रम स्वरांजलि। तो ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। प्रातः 5 बजने वाले हैं। अब समाचार होंगे।

जगत उधारन नाम सतगुर तुठे पायो अब

अहनिस सहज सुपाय दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख जाय होवै सिह तख संबि नूर अरसों कुरसों चटिया बिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पातशाह सिरशां दशा जिस पा

ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰਸ਼ਾਹ ਦਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠੇ

जो किश करे सो भला कर मानिया, हिकमत हुकम चुकाइया।

ਤਿਲੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਇਆਨੜੀਏ ਮਾਨੜਾ ਕਾਏ ਕਰੇ ਆਪਣੜੈ ਘਰ ਹਾਰੇ

0: द्वापर तपे का सत अगर थवा हो काल जुग रथ गन का कूड़ अगर थवा हो हला पहला
1: शाम कहे स्कंदर स्वामी सच में आचे सच रहे सब को सच सुनावे कह रहे आपर तू राम नाम देवा वसु नायला तच जाय नान काम कंतर पा दुज में जा चली चंद्रा विकांत चंद्र

बोलो जी वाहे गुरु।

जन पंत की जीता श्री साहिब जी सहाय खालस जी के बोल बल्ले बोलो जी वाहे गुरु बोला।